0: जी
1: प्रातःकालीन लालिमा उसकी झलक थी और उसका बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ घूम रही थी। उन्हें पास ही उच्च श्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। वह घोड़ा अश्व रत्न अमृत मंथन से उत्पन्न हुआ था। असमस्त अश्वों में श्रेष्ठ बलवान विजयी सुंदर अजर दिव्य और सब शुभ शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में वर्णन करने लगी, देवताओं के अमृत मंथन ने किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च श्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उच्च श्रवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाकिनी को उखाड़ने की चेष्टा की। वे पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वश्रेष्ठ देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथे हैं। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुँह की और असुर और पूछ की और देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। इसी समय श्वेत वर्ण का उच्च श्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च सवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर जी ने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल में घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। चंद्राचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
0: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेखा दासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला। और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी,
1: उस सवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। वनिता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जल में देकर सर्प अग्नि जल कर भस्म हो जाओगे। कद्रु और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कद्रु और वनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल है, परंतु पूंछ काली है। ये देखकर वनिता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे से बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाशों को मेघ

कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़, यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता, मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। विनीता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसे खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु है। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपनी धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, और इतने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक, धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं, और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। गरुड़ को देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा, कहीं सहसा साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष की शाखा छोड़ दिया। तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वे शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान, एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्ले ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत न ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए।

0: अभी धूल से ढककर मुंह से बन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से करुण तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धसकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहसों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया। चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त है। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिया। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांगो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा। और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बदल चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगी, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षी राज में जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ मुझसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ। स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुश पवित्र माना जाने लगा अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा। हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने, ये भी हमने जाना। और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षुक, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधू जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधू से विवाह हो सके, इसलिए।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे। और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए। हाँ। और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपत्ति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से। तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनियों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे, उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो। मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति कारण कि गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या,
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि
1: यह अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत हैं, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो को ही
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है।
1: हाँ। तो बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़यो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नता। सुवेशा अलंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्व सौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त्य मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई,
0: आज भी लीना जी इनको माता की गंगा माता, यमुना मैया माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपने माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने
1: रूप में
0: सब पधारे होंगे,
1: पधारे।
0: जी,
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है, देवालय, मंदराचल, अस्ताचल, अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहां से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा सुगंधित हवा बहती है वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए, भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम। क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ, केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब वो बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं,
2: देख रहे हैं वो
1: तो है। जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से आने पर, नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
0: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
1: धन्यवाद
0: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानव शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे, या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान,
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, ये किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ

0: लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है. तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है. जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है. और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है. जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार. संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है. और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर. नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है. और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है. और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र. अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी.
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है. और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है. और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है. उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है. और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती.
1: बिल्कुल.
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं. फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं. अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वहीं कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है. तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं. तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है. इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं. तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे. अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है. हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा. हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं. और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना. व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों. तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो. तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका

0: एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता है, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है, उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं। तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है, और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है, और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है, और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है। और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली हैं। और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसी ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं। 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे 3rd अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
3: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
4: गुड मॉर्निंग, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं आने की आरजे साक्षी आज आती हूँ आपके पास लेके अपना प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ देखिए बहुत सारी बातें तो लेकर के आई हूँ आज, और आज है सैटरडे का दिन और मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 7 से 9। हम बहुत सारी बातें करते हैं और आज भी कमाल की रेसिपीज है मेरे पास आपके लिए। जी हाँ, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि मैं ना आपके लिए खास रेसिपी बताने वाली हूँ। हाँ, ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके पास भी कोई यूनिक अलग टेस्टी रेसिपी है जरूर हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, इस पर आप व्हाट्सएप द्वारा अपनी रेसिपी भेज सकते हैं। लिखना मत भूलिएगा कि आपका नाम क्या है, रेसिपी का नाम क्या है, इंग्रेडिएंट्स और कैसे ये रेसिपी बनेगी, और भेज देना है 8010781078 पर। फिलहाल गई मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ। मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें, और आज है सैटरडे का दिन और मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। अच्छा, सुबह का ये जो टाइम होता है ना, मन करता है कुछ अलग सा खाने का। सैटरडे संडे हो, वीकेंड का टाइम हो, तो लगता है कुछ अलग होना चाहिए, कुछ तीखा तो कुछ खट्टा, और ऐसे ही कुछ अलग रेसिपी लेकर के मैं आ जाती हूँ। कभी तीखी तक भी मीठी, कभी खट्टी रेसिपी लेकर के आती हूँ। ऑप्शंस आपको कई सारे मिल जाते हैं ताकि आप बना सकें। अब इंडिया में देखिए, वैसे तो अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स हैं, और जिस जिस स्टेट में हम कदम रखते रहते हैं वहाँ पर ट्रेडिशन चेंज हो जाते हैं, कल्चर्स चेंज हो जाते हैं, खाना पीना चेंज हो जाता है, भाषा बदल जाती है। तो आज ना मैं आपको देखिए स्टेट की बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ कहूँगी, ऐसा कुछ बताऊँगी जो कि फ्यूजन है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट है, और आज ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, बड़े टाइम से ना मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव में थी, और उसमें मैंने देखा कि एक बड़ी खास चीज जो है वो चल रही है, और वो है ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, बाहर हम खाते हैं तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिल पाती है, बड़ा महंगा होता है, घर पर कैसे बना सकते हैं, तो चलिए आज आपको ये बताऊंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना आपको फ्यूजन फूड के बारे में बता रही हूँ। फ्यूजन फूड की अगर हम बात करें तो हमें लगता है ना कि कोई मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पर बिल्कुल नहीं। हमारे देश में सदियों से अलग अलग कल्चर्स आते रहे और हमारा खाना इवॉल्व होता रहा। पिज्जा तो ओरिजिनली अगर बात करें तो इटली का है, पर जब वो इंडिया आया तो हमने उसे अपना देसी ट्विस्ट दे ही दिया। आजकल बच्चों की छोटी मोटी भूख मिटाने को शाम को चाय के साथ कुछ मजेदार खाने का मन तो होता है, और यह अचानक घर पे मेहमान आ जाना तो कुछ होना चाहिए। और ऐसे में ब्रेड, पिज्जा, पॉकेट हर मौके के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। झटपट तैयार भी हो जाता है और बड़ा क्रिस्पी है, और अंदर से एकदम मेल्टेड चीज, चटपटे इसमें फ्लेवर्स हैं और बहुत स्वाद लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें आसानी से तवे पर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब बात आती है कैसे, तो वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बड़ी जल्दी से तैयार होने वाली टेस्टी रेसिपी, ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स की। बहुत ही मजेदार है, जल्दी से सामग्री इंग्रीडियंट्स इसके नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस चाहिए आपको 8 से 10, व्हाइट ब्रेड ये होनी चाहिए। वैसे अगर आटा ब्रेड भी होगी चलेगी, लेकिन व्हाइट ब्रेड में टेस्ट इसका अच्छा आता है। इसके साथ मोजरेला चीज लेनी है आपको 1 कप, और उसे ग्रेट कर लीजिएगा यानी कि कद्दूकस कर लीजिएगा। बारीक कटी सब्जियां 1 कप, शिमला मिर्च, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, प्याज और गाजर आपको लेनी है। इसके साथ पिज्जा सॉस लेनी है 3 से 4 बड़े चम्मच, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लेना है स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, मैदे का घोल लेना है 2 चम्मच, और मैदा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इस घोल को बना लीजिएगा। इसके साथ ब्रेड क्रम्स लेने हैं आपको 1/2 कप, कोटिंग के लिए होने चाहिए, और तलने के लिए आप तेल या मक्खन ले सकते हैं। तलने या सेकने के लिए इन सभी चीजों का बैलेंस ही इस डिश की जान है, पर इसको सील करना और इसको क्रिस्पी बनाना ही बहुत बड़ा राज इसमें छुपा हुआ है, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्या राज है। चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें लेकर के आई हूँ आज टेस्टी रेसिपी, और वो है पिज्ज़ा ब्रेड की और क्रिस्पी जो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। जी हाँ, पिज्ज़ा पॉकेट्स तो बहुत लोग बनाते हैं पर वो बाहर के तरह जैसे होता है ना कि जैसे बाहर से सॉगी हो जाते हैं और अंदर से जो है वो तो नरम होते हैं लेकिन बाहर से भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। आज देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप इसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं और वो भी बाहर से क्रिस्पी रहेंगे अंदर से नरम। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में आपको इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जो है वो डाल देनी है और उसके बाद कद्दूकस किया हुआ चीज, पिज्जा सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, काली मिर्च और हल्का सा नमक आपको डाल के मिला लेना है। ध्यान रहे कि सॉस और चीज में भी नमक जो है होता है तो इसीलिए नमक थोड़ा सा संभाल कर डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। आपकी पिज्ज़ा स्टफिंग तैयार है। अब ब्रेड स्लाइस में आपको क्या करना है और उनके चारों तरफ आपको चाकू की मदद से इसे जो साइड्स हैं उसको काट लेना है और बेलन की मदद से ब्रेड को एकदम फ्लैट कर लेना है, हल्का सा बेल लेना है ताकि वो पतला और फ्लैट हो जाए। और इसके बाद अब क्या करना है आपको, बेली हुई जो ब्रेड है इसके किनारों पर चारों तरफ मैदे का आधा जो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको घोल लगा देना है और उसके बाद अब ब्रेड

के बीच में आपको चम्मच से तैयार स्टफिंग रखनी है। ब्रेड को आपको बीच से मोड़कर एक रेक्टेंगल शेप देनी है। उंगलियों या कांटे की मदद से आपको किनारों पर थोड़ा दबाव बनाना है, स्टफिंग के जो है इससे बाहर नहीं निकलेगी और अच्छा एक डिजाइन बन जाएगा। अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आपको जो तैयार आपके पिज्जा पॉकेट्स है वो जो है वो एक बार पतला बेल कर उसे घोल में आपको डुबोना है और फिर ब्रेड क्रम्स आपको जो है वो लगाने हैं, लपेटने हैं और इससे बिल्कुल बाजार जैसा कुरकुरा ये बना सकता है। अब एक कढ़ाई में आपको तेल गरम करना है और मध्यम आंच पर जो पॉकेट्स हैं उनको सुनहरा होने तक आपको डालना है और अच्छे से सेकना है। गरम गरम आपको इसके बाद परोसना है। आपके ब्रेड जो है पॉकेट्स, पिज्जा ब्रेड पॉकेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और बहुत टेस्टी ये बनेंगे। तो चलिए अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए सुंदरी रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: धीरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ, बात कर रही हूँ। आज सैटरडे का दिन है, कमाल की रेसिपीज लेकर आती हूँ और चीजी और क्रिस्पी पिज्जा पॉकेट्स का मजा तो हो गया। पर अब देखिए, जैसे जैसे दूसरी रेसिपी के पास आपको लिए चलती हूँ, और ये जो टेस्टी रेसिपी है भाई, वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि गर्मियों का ना मौसम चल रहा है, और गर्मियों के मौसम में अगर आप कुछ ऐसा तला वाला खाते हैं तो मन करता है ना कि कुछ रिफ्रेशिंग भी हो जाए। तो लंच का अगर टाइम अगर देखिए आपका हो जाता है, जब लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है, लेकिन लंच में प्रेफरेबली मैं ज़्यादा कहूँगी जब लंच टाइम हो, तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर बनानी है जो कि बहुत टेस्टी है, और वो है शाही जीरा रायता। ये जो रायता है ये सुपर टेस्टी है और बहुत ही कूल रहेगा और रिफ्रेश भी करेगा। इनफैक्ट ये आपके पाचन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्पून आपके पेट को सुकून ये दे सकती है। तो आज आपको बताऊंगी कैसे आप इसे बनाएंगे, शाही जीरा को, आप ये जो शाही जीरा रायता है ये बनाएंगे, क्योंकि शादियों में इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है जब हम खाते हैं। लेकिन घर पर कैसे बनाएं वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें इसी के साथ। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि रायता जो है हमारे खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और ऐसा क्यों है? तो इसके लिए ना थोड़ा सा इतिहास खंगालना होगा। इतिहास के पन्नों में और खासकर आयुर्वेद में दही को अग्नि और पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बताया गया है। रायता शब्द संस्कृत के राज का यानी कि राय और टिक्का का मिलाकर बना है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा ढेर सारे मसालेदार खाना खाते थे तो पेट की गर्मी को शांत करने के लिए जो बावर्ची थे, जो लोग थे, जो कुक्स थे, दही में जीरा, राई और पुदीना मिलाकर सर्व किया करते थे। शाही जीरा रायता उन्हीं शाही रसोइयों से निकल कर आया है, आज हमारे घरों तक पहुंच गया है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। पर लोग अक्सर दही को सही तरीके से ब्लेंड नहीं करते हैं और इसकी वजह से एक परफेक्ट रायता नहीं बन पाता है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि शाही जीरा रायता की रेसिपी क्या है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं आपको बता रही हूँ शाही जीरा रायता रेसिपी के बारे में, कैसे बनना है। तो सबसे पहले फ्रेश दही लेनी है आपको 2 कप, ठंडी होनी चाहिए। भुना जीरा लेना है आपको 1 बड़ा चम्मच, साबुत जीरा लेना है 1 छोटा चम्मच तड़के के लिए, काला नमक और सेंधा नमक लेना है स्वाद अनुसार, बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना लेना है 1/4 कप। इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है, ये ऑप्शनल है भाई, मुझे तो बड़ी पसंद है तो ले लीजिएगा या मन है आपका। इसके साथ घी लेना है 1 छोटा चम्मच। अब बताती हूँ इसकी विधि क्या है, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ और आज है सैटरडे का दिन, आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आई हूँ। और आज की हमारी रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको, शाही जीरा रायता की। सबसे पहले दही को एक बड़े बोल में आपको लेना है और उसके बाद इसमें डालकर आपको अच्छे से विस्कर की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लेना है, पतले कपड़े से छान लेना है इसके बाद, और बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी इसको बना लेना है। दही में लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस स्मूथ दही में आपको काला नमक, सेंधा नमक और इसमें थोड़ा सा सादा नमक डाल सकते हैं, लेकिन सब कुछ एकदम क्वांटिटी बहुत कम कम होनी चाहिए, नहीं तो ये बैलेंस हो जाएगा। और भुना जीरा पाउडर आपको डालना है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप मिला सकते हैं, और इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिए, पुदीने के पत्ते डाल दीजिए, और पुदीने का जो देखिए थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, अच्छे से जो फ्रेश पत्तियां होती हैं उसको हल्के से कट करके हल्के से उसमें फ्रेशनेस के लिए ये दे सकते हैं आप, डाल सकते हैं, फ्रेशनेस अच्छी आती है। अब आता है शाही स्टेप, द रॉयल तड़का जैसे मैं कहूँगी। एक छोटे पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी गरम करना है, इसमें साबुत जीरा डालना है। जब जीरा चटकने लगे आपको हल्का सा इसे ब्राउन होने देना है, और इसके बाद गरम गरम तड़के को दही के ऊपर डाल दीजिए और तुरंत 2 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए, ताकि घी और जीरे का जो खुशबू है, जो अरोमा है, वो रायते के अंदर लॉक हो जाए और आपका शाही जीरा रायता तैयार हो जाए। और ये है रेसिपी शाही जीरे जो रायता है इसकी। चलिए इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैरव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ रायते की मैं बात कर रही हूँ, बड़ी टेस्टी रायता। वैसे तो पता ही गर्मियों के टाइम में ना अलग अलग रायते खाने का बड़ा मन करता है। अब देखिए हमारे देश में ना बड़े अलग अलग रायते अलग अलग तरीके से बनते हुए हैं। किसी को बूंदी का पसंद होता है रायता, तो किसी को खीरे का, और कुछ लोग जो हैं वो फ्रूट रायता भी, यानी कि पाइनएप्पल रायता या मिक्स फ्रूट रायता भी पसंद करते हैं। आलू का रायता, इसके भी लोग दीवाने हैं। अब मुझे वही पसंद है घीये का रायता, बड़ा टेस्टी लगता है। तो अगर आप भी कोई रायता पसंद करते हैं, आपको कौन सा रायता पसंद है ज़रूर मुझे बताइएगा। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, और ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ ही साथ देखिए मैं ना आपके लिए कुछ हैक्स भी लेकर के आई हूँ, और ये जो हैक्स है इसलिए लेकर के आई हूँ, अभी ना हमारे पास एक सवाल आया है कि ये सवाल जो है सुनीता जी की ओर से आया है। इन्होंने लिखा है कि जब भी ये ब्रेड पिज्ज़ा पॉकेट बनाती हैं तो अक्सर होता ये है कि जो तलते टाइम जो ब्रेड है वो फट जाती है और सारी चीज़ निकल जाती है, तो इसके लिए क्या करना सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी सवाल है और ये अक्सर हमारे साथ होता है, तो बताऊँगी इसका हैक क्या है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइफ।

आते हैं अपने आप ही। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो जरूर मैं आपको बताऊंगी। अक्सर जब ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई करते हैं ना, तो ब्रेड जैसे ही आप उसे तलेंगे तो वो फट जाती है और सारी चीज बाहर निकल जाती है। इससे बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है, हमेशा फ्रेश और सॉफ्ट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखी जो हार्ड ब्रेड होती है उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर ब्रेड थोड़ी पुरानी है तो बेलने से वो पहले जैसी अगर हल्की और वो अगर वो नहीं हो रही है तो हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं। उससे 5 सेकेंड में अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ी सी स्टीम दे दीजिए, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इससे ब्रेड जो है वो काफ़ी इलास्टिक जो है वो हो जाएगी, मुड़ते ही मुड़ते वक्त वो टूटेगी नहीं और अच्छे से किनारों से वो अच्छी तरह से जो है वो लग जाएगी और बिल्कुल सील हो जाएगी। तो ये एक आप तरीका जो है मैं ज़रूर कहूँगी, अगर आप भी जाते हैं तो ब्रेड का इस्तेमाल फ्रिज से डायरेक्ट ब्रेड को निकाल के मत कीजिएगा, क्योंकि वो ब्रेड टूटेगी, पुरानी ब्रेड टूटेगी। और अगर पुरानी ब्रेड 1 या 2 दिन भी पुरानी है तो उसे बाहर निकालिए फ्रिज से, उसको हल्का बेलिए, उस पर आपको थोड़ा सा पानी छिड़कना है, 5 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए, उसको स्टीम कर दीजिए हल्का सा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद उसका ब्रेड पॉकेट पिज्जा बनाइए तो वो बिल्कुल अच्छे बनेंगे और चीज बाहर नहीं निकलेगी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. आज है सैटरडे का दिन, रेसिपीज आपके लिए कमाल की टेस्टी लेकर के आ गई हूं. अच्छा बात करिए दूसरे हैक की, जल्दी से बता देती हूं. गर्मियों में दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है. अगर आप सुबह रायता बनाकर रख देते हैं तो दोपहर तक वो खाना काफी मुश्किल हो जाता है. हैक ये है कि रायता बनाते वक्त उसमें नमक तभी आपको मिलाना है जब आप उसे सर्व करें. उससे पहले नमक ना डालें. दही जो है, नमक जो है, जब दही में डलता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो तेज हो जाती है और जिससे वो जल्दी खट्टी हो जाती है. अगर आपको पहले से बनाकर ये रखनी है तो दही में आप सारे मसाले और तड़का लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद खाते वक्त नमक उसमें डाल सकते हैं. आपका रायता हमेशा फ्रेश आपको लगेगा और काफी अच्छा लगेगा. इसके साथ देखिए, हमारे किचन के ना मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, उन्हें देखिए उनके पीछे बहुत पुरानी साइंस भी है. जीरा जो है वो हमने आज रायते में ढेर सारा डाला और वो नेचुरल डाइजेस्टिव एलिमेंट है. इसमें जो है देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा जो पाचन है ये हो जाता है, डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और आप जो है ऐसे जो खाएंगे ना तो आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा है. तो इस खीरे रायते को भी बनाइएगा. तो दोनों चीज़ आज मैंने आपको बता दी है और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो हमारे रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत. कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले एक और भी तो प्रोग्राम लेकर के आपके पास आती हूँ ना, क्योंकि आज शनिवार का दिन है. तो थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगी आपके पास. आज सैटरडे का दिन है तो सफरनामा लेकर के आती हूँ. तो आप कहीं मत जाइए, क्योंकि प्रोग्राम सफरनामा ये इस प्रोग्राम में आज हम बहुत ही खूबसूरत सी जगह जाने वाले हैं. तो सुबह 11 से 1 आपके पास फिर से आऊंगी. तो आप कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रेशा 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

0: रेडियो मानव रचना 107.8, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा विषय है जो आपकी, हमारी, हम सभी संसार में रह रहे लोगों के जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है ग्रीन ग्रह और ये खास तौर पर से आपके लिए लाया गया है ताकि आप अपने पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बना सकें। वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़े कुछ खास एपिसोड्स हम इस सीरीज में ला रहे हैं आपके लिए और ग्रीन ग्रह कार्यक्रम को सपोर्ट किया है PTC फाइनेंस ने इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एंड इको क्लब। और रेडियो मानव रचना इसमें आपको हर हफ्ते मुलाकात कराएगा एक खास एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट आपको समझाएंगे कि कचरा प्रबंधन या फिर कचरे को सही से डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका होता है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए अगर कचरा प्रबंधन सही प्रकार से ना किया जाए तो कितना खतरनाक होता है और अपने पर्यावरण को, अपनी इस धरती को हम वापस बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए आज के हमारे इस एपिसोड में स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निधि डिडवानिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। डॉक्टर निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा, मुझे बहुत खुशी है आज आपके साथ में वेस्ट या किसी से भी रिलेटेड आपसे बात करने के लिए।
0: जी, सो डॉक्टर निधि, हम वेस्ट सेग्रीगेशन पे आज बात करने वाले हैं और वेस्ट ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में है। आप ऑफिस में भी कुछ घंटों बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खा रहे हैं या कोई कागज़ फाड़ रहे हैं तो वो डस्टबिन में ही जाता है। लेकिन एक समस्या आती है आजकल कि हम जिस कचरे को घर से निकालना चाहते हैं हमें उस कचरे को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना नहीं आता। ज़्यादातर हाउस होल्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो घर में एक बड़ा डस्टबिन होता है जो किचन के या कॉरिडोर में या बालकनी में कहीं रखा होता है। हर एक चीज़ उसी कचरे के डब्बे में चली जाती है। ये भी ध्यान नहीं दिया जाता कि वो चीज़ आखिर है क्या, वो कांच के टुकड़े हैं, वो दवाइयाँ हैं या वो किसी चीज़ के छिलके हैं। वो सारी चीज़ें एक आम इंसान को भी डिटेल में इतने ज़्यादा अवेयरनेस के बाद भी नहीं पता है। तो आज आप हमारी एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वेस्ट बेसिकली ये जो कचरा होता है ये कैसे सेग्रीगेट किया जाए, अलग अलग कैसे रखा जाए, कैसे इसको फेंका जाए, किस तरीके से एक आम इंसान को इसके प्रति भी सचेत होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, देखिए वेस्ट जो है उसका सेग्रीगेशन बहुत बड़ी कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है और एक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल है, एक हैबिट है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन की इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए और बहुत ही क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसमें डिफरेंट कलर कोड्स बनाए गए हैं और उन कलर कोड्स के चलते आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कचरा किस कलर के डस्टबिन में आपको डालना चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में डस्टबिन एक नहीं, चार होने चाहिए।
0: चार डस्टबिन होने चाहिए हर घर में?
1: जी बिल्कुल, और इसके बहुत फायदे हैं, आपको पता चलेगा कैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि 62 मिलियन टन्स जो हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं उसका आधे से ज्यादा कचरा हम लैंडफिल में भेज रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखते हैं ना
0: कचरे के।
1: जी,
0: जो दूर से लगता है
1: हुआ, आपका बंधवारी हुआ, तो ये सब जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो सब हमारी जो डेली छोटी छोटी गलतियां हैं वही पहाड़ बन के दिख रहे हैं।
0: जी जी, जनरली ये जमीन के नीचे होने चाहिए।
1: जी,
0: लैंडफिल्स जिसको कहा जाता है, लेकिन ये जमीन से कई 100 फीट ऊपर पहुंच चुके हैं क्योंकि हमने इसमें थैलियाँ, पॉलिथीन, कागज, कपड़ा, हर एक चीज डाल रखा है जो कि जमीन के अंदर जाकर गलता भी नहीं है।
1: जी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितना भी वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं हमारे घर में उसमें से 80-90% तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसा वेस्ट है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे सही तरीके से स्टोर करके आप एक ऑथराइज्ड वेंडर या डीलर को दे सकते हैं। तो अगर हम कलर कोड की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपका ग्रीन डस्टबिन है तो ग्रीन कलर कोड दिखाता है कि जो आपका वेट वेस्ट है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है,
0: खाने पीने की चीजों का,
1: जी जी, पील्स हुए आपके, छिलके हुए आपके, यहाँ तक कि आपके जो ये छोटे छोटे एग शेल्स आपके टुकड़े होते हैं वो हुए आपके, इन सबको आप एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये आपका वही कंपोस्ट, आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट के लिए तैयार हो जाएगा जो गार्डन में आप यूज कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं अपने गार्डन में तो आप पार्क में यूज कर सकते हैं।
0: ओके,
1: ठीक है, तो ये वेस्ट तो आपका यूं कह लीजिए कि ये गोल्ड है। ठीक है, तो वो एक तो आपका ये ग्रीन वेस्ट हो गया, ग्रीन कलर कोड। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लू ब्लू कोड की,
0: ब्लू जी,
1: तो जो ब्लू कोड है आपका वो होता है ड्राई वेस्ट. अब ड्राई वेस्ट में आप क्या डालेंगे, आपका प्लास्टिक हुआ, आपका पेपर हुआ, कार्डबोर्ड्स हुए, ये सब चीज़ें आपके ड्राई वेस्ट में आती
0: जो बेसिकली सूखा है
1: जी,
0: जिसके रॉट होने के या ख़राब होने के चांसेस नहीं होते. बहुत सारे लोग जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कागज़ वेस्ट होते हैं, बुक्स के कवर्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये सारी हम मरोड़ के जैसे फेंक देते हैं. सो उनको आप इस ब्लू वाले बॉक्स में डालें.
1: अब हम बात करेंगे बैटरीज की, आपके ई वेस्ट की.
0: बिल्कुल, और ये बात करनी ज़रूरी है क्योंकि बचपन से सबके घरों में घड़ियों से लेकर रिमोट तक हर जगह सेल यूज़ हो रहे हैं, बैटरीज यूज़ हो रही हैं. और अब तो खिलौनों में भी इतनी यूज़ होती हैं कि आपके पास रोज़ रोज़ नए सेल इकट्ठा होते हैं और वेस्ट भी होते हैं.
1: और वही हाल आपके वायर्स का है, इतने सारे वायर्स आपके पास होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, पुराने मोबाइल फोन्स भी आप क्या करते हैं, घर में डंप रखते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है वो आपका होना चाहिए कलर कोड येलो.
0: ओके,
1: क्योंकि ये आपका रिसोर्स है फॉर द इंडस्ट्रीज. बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज की तारीख में बैटरी से लेड रिकवरी करते हैं, बहुत सारे मेटल्स रिकवर करते हैं, एल्यूमिनियम हो, आपके कॉपर हो, इन सबको रिकवर किया जाता है. क्योंकि आपको भी पता है चिप में भी आपका गोल्ड होता है. है ना,
0: बिल्कुल.
1: तो लेकिन आप अपने लेवल पे ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे उसको सेग्रीगेशन में रख सकते हैं, तो ताकि आप उसको एज अ रिसोर्स आप सोसाइटी को वापस दे सकें.
0: बिल्कुल.
1: और आखिरी जो आपका कलर कोड है जो सबसे खतरनाक है, दैट इज हजार्डस वेस्ट, जो आपका रेड कलर कोड दिखाता है.
0: रेड हमेशा डेंजर का साइन होता है, तो उसको बस आपको समझना है कि यहाँ पर हजार्डस वेस्ट आएगा जो सभी के लिए बहुत हानिकारक और जानलेवा होता है.
1: बिल्कुल. और उसमें आपको पता ही है हमारे घरों में पूरा मेडिसिन बॉक्स बना रहता है. ठीक है, हमें पता नहीं है कि कब क्या जरूरत पड़ेगी, हम पूरा उसको
0: भर करके रखते हैं.
1: इतनी एक्सपायर्ड मेडिसिन है, निडल्स है, घरों में इंसुलिन इंजेक्शन यूज होते हैं, इतने निडल्स हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लास के टुकड़े हैं, ये सब चीज़ें. और आपके सैनिटरी पैड्स हो गए, डाइपर्स हो गए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप उनको मिक्स कर सकते हैं किसी के भी साथ. बिल्कुल भी नहीं. सैनिटरीज एंड डाइपर्स और आपके ये सब मेडिसिन और बायोमेडिकल जो भी वेस्ट है, ये सब आपका बिल्कुल सेपरेटेड हैजार्डस यानी कि एक डेंजरस कैटेगरी, रेड कैटेगरी में होना चाहिए.
0: ओके, यानी जो रेड वाला डस्टबिन है उसमें आप अपना जितना भी मेडिकल वेस्ट है, जैसे चोट लगी तो कॉटन या बैंडेजेस जो होती हैं वो इसमें डालें. आपने कहा कि यूज्ड पैड्स और डायपर्स भी जो होते हैं वो भी इसी में डालने चाहिए.
1: जी,
0: तो जैसा कि निधि जी आपने बताया चार कलर्स, अब ये चार कलर आप फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रेडियो ऑन किया होगा तो उनको शायद रेड वाला या येलो वाला ही सुनाई दिया होगा, तो बाकी चारों कलर एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर दीजिए.
1: हाँ बिल्कुल. तो ग्रीन हो गया आपका वेट वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट, देन आपका ब्लू आता है जिसमें ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक्स और पेपर्स वगैरह, उसके बाद येलो वेस्ट है जिसे हम ई वेस्ट बोलते हैं, आपके वायर्स, मोबाइल्स, एंड द लास्ट कैटेगरी इज हैजार्डस वेस्ट जिसको आप रेड कलर से दिखाते हो, जिसमें आपका बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी एंड डायपर्स आते हैं.
0: तो ये चार कलर हैं जिनको आप हमेशा याद रखें. अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी धरती जो है वो बची रहे और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हम आज की तारीख में फेस कर रहे हैं, थोड़े से कदम आपको उठाने पड़ेंगे. हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हमेशा सरकारें कुछ करें, हमें भी एक आम नागरिक की तरह थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. और ये सबसे आसान कोशिश है चार अलग अलग बॉक्सेस जिनको आप डस्टबिन के तौर पर यूज़ करें. इनमें एक प्रॉपर तरीके का जो मार्केट में मिलता है बैग, जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों में लगाइए और इसमें चारों कैटेगरी के जो वेस्ट होते हैं उसको डालिए, जो निधि जी ने बताया है कि ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड, ये चार कलर के मीडियम साइज़ के डस्टबिन की जगह आपको घर में बना लेनी चाहिए, ताकि जब भी आपको कहीं पर कूड़ा या वेस्ट जो आपसे लिया जाता है हर रोज़, जो कचरे वाले आते हैं वो लेके जाते हैं, तो आपको इन चार तरीके की अलग अलग जो बैग्स हैं वो उनको देने हैं. तो निधि जी ये तो बात हो गई कलर कोडिंग की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा जो सेग्रीगेशन है ये हमने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा है या फिर हमने किसी ऐसी जगह पर देखा है जहाँ पर हेल्थ का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, क्लिनिक्स में आपने देखा होगा या फिर डायग्नोस्टिक लैब्स में देखा होगा. लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमने ये सेग्रीगेट नहीं किया, जो कि हम सालों से नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे देश में लोग या फिर मैं कहूँ कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, सो अगर सेग्रीगेशन नहीं किया तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
1: तो दीक्षा, सबसे पहले तो ना हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमें लगता है कि हमारे घर से कचरा बाहर गया यानी कि अब वो गायब हो गया हमारे लिए, है ना, डिसअपीयर है। हमें ये नहीं पता कि वो कचरा लौट करके फिर हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी करता है। तो वो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं एज अ हाउस होल्ड, ठीक है। और दूसरे बहुत बड़ी चीज़ जो है, जो अभी गाजीपुर वाला एक्सीडेंट हमें थोड़े टाइम पहले हमें याद है क्या हुआ था, कि वो जो ब्लास्ट था उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं था। उसमें आपके ऑर्गेनिक वेस्ट भी था और प्लास्टिक वेस्ट भी था। और ये जब दोनों चीज़ें मिलती है तो आपका जो है बहुत सारे मीथेन गैस, मीथेन हमें पता है ग्रीन हाउस गैस है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: राइट। तो वो जो मीथेन गैस है वो वहाँ से रिलीज हुई या ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से कितना नुकसान सहना पड़ा। अब हमारे घर को नहीं लेकिन जिन लोगों को सहना पड़ा उनके भी तो हाउस होल्ड होंगे। तो वेस्ट सेग्रीगेशन एक घर अगर कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सब लोगों के लिए बन रही है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको उसकी परेशानी झेलनी पड़े।
2: बिल्कुल।
1: और वही एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, आज आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, टेम्परेचर 46-47 तक पहुंचने लगा है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें मई में तो इट वाज 44 मैक्सिमम,
2: मतलब हर साल 1-2 डिग्री बढ़ रहा है।
1: तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया मिथेन, ऐसे ही जब आप कंप्लीट बर्निंग नहीं करते हो, जैसे आप कूड़ा जला देते हो कहीं पर भी, तो क्या होता है कि धीरे धीरे बर्निंग जो होती है कई बार पूरी तरह से नहीं हो पाती। और जब अधूरे में जो धुआं आपको स्मोक जो दिखता है वो क्या होता है असल में, वो कार्बन मोनोक्साइड होता है। और कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसी गैस है, जहरीली गैस है मैं कहूँगी, जब सांस के थ्रू हमारे अंदर जाती है शरीर में तो हमारा जो ऑक्सीजन जो पूरी शरीर में फैल रहा है उसकी उसको वो रिड्यूस कर देती है, उसको रोक देती है, उसको धीरे कर देती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें बॉडी में तो फिर क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे और बहुत सारी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी।
2: बिल्कुल।
1: तो ये तो दो एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सैनिटरी वेस्ट को अगर मिला दिया आपने तो अमोनिया, आपको जो बहुत गंदी सी स्मेल आती है कई बार कूड़े में से, तो उसका रीजन यही है कि या तो आपने वहाँ पे सैनिटरी पैड्स डाइपर्स वो मिक्स हो गए हैं, या फिर आपका प्रोटीन रिलेटेड वेस्ट जो होता है जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, आपके घी हो गया, इस टाइप से जब हम क्लीन करके नहीं डालते हैं, आप दूध लेते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो धो करके उस प्लास्टिक की पॉलिथीन को वेस्ट में डालते हैं। तो जब मिल्क लगा हुआ है उसके अंदर तो मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन है वहाँ पर, और जब प्रोटीन के बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे माइक्रोब्स जब उस पर काम करना शुरू करते हैं और बाकी वेस्ट के साथ मिक्स होता है, प्लास्टिक वेस्ट और अदर वॉलेटाइल वेस्ट के साथ, तो वो अमोनिया रिलीज करता है। और अमोनिया फिर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपका जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके साथ मिलकर H2S गैस होती है। तो ये और कार्बन्स हैं, फ्यूरेंस हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल वॉलेटाइल गैसेस हैं जो सब टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं हमारे लिए। तो ओवरऑल वो पूरे एनवायरनमेंट को और हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचा रही है। तो वो हमें सोचना है क्या हम ये चाहते हैं, या हम बहुत ही जो छोटा सा स्टेप है जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं वो करना हमारे लिए आसान है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। यानी कोशिश तो देखो सबसे पहले हमें ही करनी पड़ेगी। हम कितनी भी बात कर लें कि यूनाइटेड नेशंस की कोई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे कोप हो या कोई और हो, इसमें बड़े बड़े बातें होती हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स डिस्कस होते हैं, कुछ हद तक काम होता भी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही जो है बातचीत के बाद ख़त्म हो जाती हैं, काम होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप इन सब बड़े बड़ी चीज़ों की बात ना करें, सिर्फ अपने रोज़ के कचरे को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा स्टेप होगा आपकी चीज़ों को बेहतर करने का, आपकी धरती को एक बेहतर रूप देने का।
1: जी
2: निधि जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में गार्डन्स हैं। अब गार्डन्स में क्या होता है कि आपने किचन गार्डन बना लिया, आपने अपना बाहर थोड़ा सा एरिया जो है उसमें गार्डन बना लिया, बहुत सारे प्लांट्स लगाने का आजकल लोगों को बहुत शौक है। और अब तो इंस्टाग्राम रील्स को देख के लोग मतलब बहुत खुश हो जाते हैं घर में ग्रीनरी दिखा के कि हमने बहुत ध्यान रखा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी आता है कि जो सूखे पत्ते होते हैं
1: जी,
2: वो आप माली को देते हैं इकट्ठे करके, आपका माली खुद इकट्ठा करता है, आप उसे बोलते हैं वहाँ नीचे जाके जला देना। और ये एक ऐसी मुझे लगता है कि आदत है जो प्रैक्टिस आप डेली कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं
1: जी।
2: आप अगर 10 किलोमीटर के दायरे में जाते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं तो 3-4 जगह ऐसे कूड़ा या पत्ते जलते हुए मिल जाएंगे, खासतौर पर से जहाँ ग्रीन बेल्ट होती है उसके आसपास भी
1: जी।
2: सो इसका क्या नुकसान है, क्योंकि ये भी एक वेस्ट ही है लेकिन इसको सेग्रीगेट करने का तरीका किसी को नहीं पता
1: जी। देखिए वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये, मैं कहूंगी आपको, अगर पत्ते हैं सूखे तो वो तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो एक रिसोर्स है।
2: आपकी खाद बनाने का बहुत बड़ा रिसोर्स होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खाद बनाने का बहुत बड़ा रिसोर्स है और उसमें आपके कोई भी केमिकल्स नहीं है जब तक आपने उसे जलाया नहीं, कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा वो एनवायरनमेंट को जब तक आपने उसे जलाया नहीं। जैसे हम पराली की बात करते हैं, पराली भी वही चीज है कि आप सूखे पत्ते जला रहे हैं वहां पे, आप जो फील्ड में आपका रह गया स्ट्रॉ या जो गेहूं या सब काटने के बाद उसको आप जला रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप डिकम्पोज कर लें, डिकम्पोज करना मतलब उसको आप खाद में कन्वर्ट करें, वो किस तरह से कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आपके पास में गड्ढा खोद के आप डालना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन ग्राउंड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और आप छोटी जगह में रहते हैं तो एक ड्रम लेकर के और उस ड्रम में अगर आप उन पत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा पेपर और कार्डबोर्ड मिला दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए,
2: तो अच्छा
1: अपने आप ही वो आपको, और उसमें एरेशन के लिए मतलब हवा जाए ताकि बदबू ना हो उसके लिए आप छेद कर दीजिए, उतना ही काफी है उन पत्तों के लिए, आपको जलाने की जरूरत ही नहीं है। और जलाने से मैंने अभी आपको बताया कार्बन मोनोक्साइड अगर वहाँ पे जनरेट हो रही है तो आप जिन पार्कों को और अपने घर को जो सेफ मानते हैं वो सबसे डेंजरस जगह हो जाएगी आपके लिए।
2: और मैंने निधि जी बहुत सारे ऐसे पार्क्स देखे हैं जहाँ पर सफाई बहुत अच्छी होती है, कोने में कहीं पत्तों का एक ढेर जला दिया जाता है और खुद ही मैंने देखा है उन लोगों को जो पार्क को क्लीन करने में बिलीव करते हैं वही पत्तों को जलवा देते हैं और उसकी इतनी फाउल स्मेल, सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे आप वॉक कर रहे हो आपको वो फील होती है और आपका मन करता है कि यहाँ से आप भाग जाए कहीं
1: जी।
2: सो फायदा नहीं हुआ ना उस पार्क को साफ रखने का जब आपने इतनी ज़्यादा जहरीली हवा जो है उस पूरे एनवायरनमेंट में क्रिएट कर दी। तो आपके कहने का मतलब है ये सूखे पत्ते जो हैं वो गोल्ड की तरह है और उसको आप एक नीले ड्रम में डालिए। आप एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को बताइए कि क्या क्या करना है अगर आपके घर में सूखे पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं, तो निधि जी बता रही हैं कि आप इससे खाद कैसे बना सकते हैं।
1: जी देखिए बहुत तरीके हैं, चाहे ड्रम हो, चाहे कई बार हम यूज्ड मटके होते हैं आपके घर में है ना, वो भी नहीं है तो कोई कंटेनर भी हो सकता है, वो भी नहीं है तो जाली आती है, सिर्फ आप एक छोटी जगह मरी अपने मिट्टी के वहीं पर आप जाली से एक वो बना दीजिए घेरा, हाँ एक घेरा बना दीजिए, सारे सूखे पत्ते आप उसमें डाल दीजिए और बीच बीच के अंदर उसके अंदर थोड़े कागज, थोड़े कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर्स कुछ भी डाल सकते हैं जो वेस्ट है आपका। ये इसलिए जरूरी है कि देखो एक कार्बन होता है एक नाइट्रोजन होता है, तो इसका रेशियो जब परफेक्ट होता है तो आपकी खाद अच्छी बनती है।
2: ओके
1: तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें फिर थोड़ी आप मिट्टी डाल दीजिए क्योंकि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं और वो आपकी मिट्टी में आसानी से मिलते हैं, और वो मिट्टी आप थोड़ा डाल दीजिए और थोड़ा मॉइस्चर आपको उसमें ध्यान रखना होता है, पानी का लेवल एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, एकदम गीला नहीं होना चाहिए। देखिए सूखा होगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगी, कोई भी मतलब माइक्रोब्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत गीला कर दोगे तो दूसरे तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत गीले में काम करते हैं तो वो नहीं काम कर पाएंगे वहाँ पर जो करने चाहिए माइक्रोब्स, तो वो भी आपको ध्यान रखना,
2: मतलब थोड़ा बैलेंस जो है वो बना के रखना।
1: लेकिन बहुत आसान है ये, आप करने लगो तो थोड़ा सा हिलाना जरूरी है उसको ताकि उसमें हवा ऊपर नीचे आप पलट सको उनको पत्तों को। तो ये मुझे लगता है जैसे जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और एक हैबिट बना लें कि मॉर्निंग में सुबह एक बार ऐसे कर देना, हिला देना उनको, उतना काफी है। या आप अपने माली को ही बोल दीजिए, क्योंकि देखो ये नॉलेज बहुतों के पास है लेकिन एक से दूसरे को बताना और दूसरे से तीसरे को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें अगर आपको खाद बनने में 40 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगेगा
2: और वो कितनी सारी खाद फ्री की बन जाएगी आपके,
1: और इसी में आप सूखे पत्तों में आप किचन वेस्ट डाल दीजिए अपना, जो आपके छिलके हैं सब्जियों के फ्रूट्स के वो डाल दीजिए उसके अंदर, तो आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो और थोड़े थोड़े दिन में आप देखोगे वो धीरे धीरे जो है वॉल्यूम कम होता जाएगा, उसका जो घेरने का जो जगह है वो कम होती जाएगी,
2: जितना वो फूला हुआ था पत्तों से भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि वो प्रॉपरली खाद बन रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, खाद बन रहा है और वो खाद जो होती है वो थोड़ी भारी होती है।
1: बिल्कुल, और इसी से आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने जो कितना कचरा था उसका वॉल्यूम कितना कम कर दिया, और यही वॉल्यूम जाकर के जब बड़े बड़े कचरों के ढेरों में चला जाता है यही वेस्ट, तो वहां पर जाके वो नुकसान करता है और यहाँ पे आप फायदा कर रहे हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये आप आसानी से कर सकते हो। आपको लगता है बारिश आ रही है थोड़ा कवर कर दीजिए, धूप तेज है तो थोड़ा पानी का ध्यान रख लीजिए, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे ना हल्की हल्की हीट जनरेट होती है, कंपोस्ट जब आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आप राइट डायरेक्शन में हो, आप सही कर रहे हो,
2: गर्माहट आएगी उसमें,
1: बिल्कुल गर्माहट। लेकिन अगर वो नहीं भी आ रहा है तब भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी खाद ही बनेगी और कुछ
2: और
1: नहीं
2: बन नहीं सकता। हाँ। जी बिल्कुल, यानी खाद बनाने का इससे सिंपल प्रोसेस मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी होता है। आपके पास सूखे पत्ते हैं जो आपके पेड़ों से झड़ चुके हैं, और आज के सीज़न में अगर मैं देखूं तो इतने सारे हवा चलते ही, जो गर्म हवा चलती है, नॉर्मल हवा चलती है, इतने पत्ते गिरे होते हैं सड़कों पे। अगर उन सबको उठा के ऐसे ही कुछ पिट्स बना दें या फिर कुछ ऐसी जगह बना दें जहां पर खाद बनाई जाए, सो इससे बढ़िया मुझे तरीका लगता नहीं है कोई इसका सेग्रीगेशन का।
1: इससे अच्छा आसान तरीका नहीं है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है खाद बनेगी नहीं बनेगी, आप बेफिक्र होके ये प्रोसेस करें। गलती भी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा फाउल स्मेल आने लगेगी, तो आप मिट्टी डाल दीजिए और सूखे पत्ते डाल दीजिए। आपको लग रहा है कि थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा हो गया है, आप फिर पत्तों से कवर कर दीजिए। आपको लग रहा है सूखा हो गया है तो पानी डाल दीजिए। कितने ऑप्शंस हैं, आप कुछ नहीं खो रहे हैं इसमें, सिर्फ पा ही रहे हैं।
2: एंड इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल, सो नो रिस्क ऑफ हजार्डस थिंग्स कि ऐसा कुछ दिक्कत आएगी। निधि जी, अब बहुत सारी बातें आपने बता दी हैं और चलते चलते मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम ये चार बॉक्सेस आपने शुरुआत में बात करी कचरे के डब्बे, जो ग्रीन ब्लू येलो एंड रेड है, अब इसमें जब हम कूड़े वाले को देते हैं तो उसको हमें बता के देना चाहिए ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा उसको दे दिया, अब वो सेग्रीगेट कैसे करेगा।
1: जी,
2: सो किस तरीके से हम कूड़े वाले को दें, कचरे वाले को दें, जो कलेक्ट करने आ रही है गाड़ी उनको क्या बताएं कि इसमें मेडिकल वेस्ट है, इसमें बैटरीज है।
1: जी बिल्कुल, जो भी वेंडर MCF या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आते हैं या आपके खुद के कलेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, तो ऑब्वियसली उनको भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा, आपकी जानकारी से काफ़ी नहीं है, आप जितने लोगों को जानकारी दोगे उतना अच्छा है, तो आपको पहले बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पर भी लग रहा है कि ई वेस्ट वो नहीं लेने को तैयार है, तो मैं आपको बताऊँ, ई वेस्ट तो आपके लिए एक मतलब जनरेशन का भी जरिया है, आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं। ई वेस्ट बहुत सारे सेलर्स आजकल लेते हैं, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स लेते हैं ई वेस्ट, तो आप उनसे कनेक्ट करिए डायरेक्ट, वो ज्यादा अच्छा है। या फिर आजकल बहुत ऐसा है, जैसे HP का आपके पास में कोई सामान है या आपके पास में मोबाइल्स हैं आपके सैमसंग के, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ई वेस्ट कलेक्टर ऑथराइज्ड जो डीलर है उससे कनेक्ट करे, तो आप सीधा वहाँ कनेक्ट करिए। आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो वेस्ट देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको बता के दीजिए, लेकिन बेटर यही है कि जैसे बहुत सारे कई बार रद्दी होती है आपके यहाँ पे, पेपर्स और ये सब चीज़ें आप क्यों वेस्ट में डाल रहे हैं, दे आर नॉट वेस्ट, उनको आप अलग से किसी और को दे दीजिए।
2: जी जी,
1: है ना, तो कोई और यूटिलाइज कर लेगा। या आप, बहुत सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज में टीम मेंबर्स होते हैं, तो कोई आप आवाज़ उठाइए वहाँ पर, वहाँ पे किसी पर्सन को डेजिग्नेट कीजिए जो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके अलग किसी वेंडर को दे। आज हम अपने इंस्टीट्यूशन में भी प्लास्टिक वेस्ट अलग से कलेक्ट करके उस स्टार्टअप को देते हैं जो उससे बहुत सारे चेयर्स और बहुत सारे अदर आर्टिकल्स बनाता है। तो हम एज एन हाउस होल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं ये चीज़?
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे थोड़े समय पहले, उन्होंने जितने भी मेडल्स बनाए थे, और ये बहुत हाईलाइट भी हुआ था ये मैटर कोविड के बाद, अचानक से जब पोस्टपोन होने के बाद जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो लोग हैरान हो गए थे कि उन्होंने जितने भी मेडल्स बनाए थे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के, वो सारे ई वेस्ट से बने थे। और जितना भी जो मेटल इकट्ठा हुआ था फोन्स की बैटरीज में से या फोन्स में से, जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई थी उनके पार्ट से, वो सारा मेडल्स में इस्तेमाल किया गया था। और मुझे लगता है कि वो एक सबसे अच्छा तरीका था दुनिया के सामने मिसाल रखने का, और ये सिर्फ जापान कर सकता है फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत उन्होंने करी है, और सोच देखिए इसके लिए कि इतना बड़ा आपका आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारे देश आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और आपने ई वेस्ट से वो चीज़ बनाई जो कभी कोई इंसान अपने घर से बाहर फेंक ही नहीं सकता, कभी नहीं निकाल सकता। ओलंपिक मेडल जिसके घर जाएगा वो उसे अपने दिल से लगा के रखेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: और इसमें गोल्ड भी होता है, इसमें ब्रॉन्ज भी है, इसमें सिल्वर भी है, सो वो एक अलग ही मिसाल थी। सो ऐसे ही आपको मेडल नहीं बनाने, आपको सिर्फ ई वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, अपने आसपास के दुकानदार या फिर कुछ हद तक कबाड़ी जो होते हैं आजकल ऑनलाइन, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा वेस्ट ले जाते हैं, आप अपने लोकल कबाड़ी से भी बात कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन जो बहुत सारी ऐप्स हैं आजकल वो भी ऐसा सामान ले लेती है, तो इनको थोड़ा सा रिसर्च करिए और फिर उसके बाद इसको ज़रूर इस तरीके से आप मैनेज कीजिए और इसको सेग्रीगेट करिए। निधि जी, बहुत अच्छा लगा हमने आपसे बातचीत करी और इतने सारे आइडियाज़, इतनी सारी बातें जो हम जनरली देखते हैं, ये चार कलर के डस्टबिन रखे हुए हमने बहुत हॉस्पिटल्स में देखे हैं, लेकिन दो तो पता है ग्रीन और ब्लू जो मार्केट्स में भी लगे होते हैं, पर येलो और रेड के बारे में डिटेल में जानकारी जो आपने दी है उससे उम्मीद है कि लोग अपने जीवन को और अपनी इस धरती को बेहतर बना पाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो बहुत सारी बातें दोस्तों आज हमने करी प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपनी बातें, अपने विचार जरूर लिख के भेजिएगा 8010781078 पर। और अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए iOS स्टोर प्ले स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में आप जाकर इस खास कार्यक्रम की पूरी सीरीज के अलग अलग इंटरव्यूज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें सपोर्ट किया PTC फाइनेंस इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एंड इको क्लब। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और रखिए अपनी इस पृथ्वी का ख्याल। ग्रीन ग्रह प्रोग्राम में आज बस इतना ही।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान यानी बॉडी डोनेशन और उतक दान टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज ऑर्गन इंडिया की सीईओ सुनैना सिंह बात करेंगी एक चमत्कार के बारे में और एक व्यक्ति से जो इस चमत्कार के द्वारा एक दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, हम हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के प्रत्यारोपण के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल का प्रत्यारोपण अपने में ही एक चमत्कार है। लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 15 साल तक नए दिल के साथ जी सकते हैं। आज सुनैना सिंह बात कर रही हैं श्री अमित दुआ जी से, जिन्हें 2 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट मिल चुका है किसी ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने मरने के बाद अपने अंगों को दान कर दिया। सुनैना उन्हीं के साथ है, चलिए उनकी बातें सुनते हैं।
1: आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार। मैं सुनैना सिंह हूं और हम बात कर रहे थे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। अब हमारे साथ हैं श्री अमित दुआ, जिनको मार्च 2017 में सचमुच एक अनमोल उपहार मिला था, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट। अमित जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अपनी नई जिंदगी का 2रा साल मुबारक हो।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: मैं अपने सुनने वाले को बता दूं कि मेरी पहली मुलाकात अमित जी से उनके हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले हुई थी, जब वो हमारे ऑफिस आए थे हार्ट ट्रांसप्लांट की जानकारी लेने, और वो हमारे पराशर फाउंडेशन की स्वर्गीय चेयरपर्सन मिसेस कीर्ति पराशर, जिनका खुद का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उनकी राय लेने आए थे। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, दिल की गंभीर बीमारी से हार्ट ट्रांसप्लांट होने तक। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और बात हार्ट ट्रांसप्लांट तक कैसे पहुँची?
2: ये सफ़र मेरे बचपन से ही शुरू हुआ। मुझे बाय बर्थ हार्ट ट्रबल थी, विच जब 6 महीने का था तो पता लगा था। मेरा पहला ऑपरेशन 2000 में एम्स पे हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि ही कैन पुल ऑन फॉर 15 ईयर्स और ज़्यादा, अगर जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ही विल नीड एन अदर सर्जरी, पर कब और कैसे वो हालात देखेंगे। पर 2015-16 से मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, जिसके बाद वो लगातार खराब होती रही। तब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम सेकंड सर्जरी नहीं कर सकते, बट ट्रांसप्लांट वुड बी, दिस वाज दी ओनली चॉइस फॉर मी। अगर मेरे को ठीक आगे लेना रहना है तो ट्रांसप्लांट ही एक जरिया था। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने फिर मेरे को ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया कि आप ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, और जो शुरू की प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद मेरे को ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया गया चेन्नई में डॉक्टर बाला के पास, जो कि लास्ट 2017 में हुआ मार्च में।
1: तो इस वक्त जब आपको पता चला कि मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए होगा, आपको अजीब लगा या कि आपको अपना हार्ट निकाल के किसी और का हार्ट डालना है, और ये पूरी प्रक्रिया आसान थी पता करने के लिए कि अस्पताल कौन सा है, डॉक्टर कौन सा है, क्या होगा, कैसे होगा।
2: वैसे तो दिल की बीमारी सारी गंभीर होती हैं और उनसे गुजरना कोई आसान बात नहीं है, पर चूंकि मैं एक दिल का मरीज शुरू से था तो मेरे लिए थोड़ा सा ये सहना आसान था। पर एक नया किसी और इंसान का दिल जो मेरे दिल में धड़कता, एक मुश्किल काम था जिसके लिए मुझे मेरे डॉक्टर्स ने समझाया कि ये एक जरूरी है, इसके बिना अब आगे जाना मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे समझाया और मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर बाला, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपके केस में स्पेशली ही इज द ओनली सर्जन हु कैन हेल्प यू आउट, उन्होंने मेरे को वहाँ चेन्नई के लिए सजेस्ट किया। शुरुआती टेस्ट और जो मेरी शुरुआती फाइंडिंग्स थी, डायग्नोसिस थे, वो सब मैंने दिल्ली में करवाया, बट सर्जरी के लिए मैं फिर चेन्नई गया।
1: तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको और कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मतलब अक्सर हम देखते हैं कि चुनौती सिर्फ इस बात की नहीं है कि हार्ट कहाँ से मिलेगा, चुनौती ये होती है कि परिवार का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और नौकरी का क्या होगा। आपको ऑब्वियसली चेन्नई में वहाँ पे जाके रहना पड़ा था, तो इन सब चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया?
2: दिल मिलने के बाद जिंदगी एक नई शुरुआत लेती है। आपका परिवार आपके लिए बहुत कुछ करता है। सबसे बड़ी सपोर्ट आपके परिवार की होती है, जो आपके साथ 24 घंटे हर पल हमेशा रहता है। मेरे परिवार ने भी मेरी पूरी सपोर्ट करी, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, जो सपोर्ट मेरा परिवार कर सकता था उन्होंने की। दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑर्गन मिलने में या दिल मिलने में, बिकॉज हिंदुस्तान में अवेयरनेस नहीं है। मिलने में ही मुझे 3 महीने का इंतज़ार चेन्नई में करना पड़ा, जिसके साथ मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती गई। हालांकि मेरा अरेंजमेंट मेरे ऑफिस के साथ था कि मैं 3-4 महीने में वापस आ जाऊंगा और वो मुझे नौकरी पर रख लेंगे, बट वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, पैसे भी जेब से देने पड़े, और इट वॉज अ ट्रिपल स्ट्रेस, फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल।

0: फर्क महसूस होगा कि जो आपकी जिंदगी पहले थी और जो अब है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा।
1: तो पहले आपकी आप पे क्या रिस्ट्रिक्शंस थी जो अब नहीं है?
0: पहले रिस्ट्रिक्शंस जो मेरे पे थे, मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं था, मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती थी, मेरे को ब्लू बेबी सिंड्रोम था तो मैं नीला पड़ जाता था, जो चीज़ें अब नहीं है। नाउ आई कैन लाइक रियली प्ले आउट विद माई डॉटर, जो एक बहुत बड़ा एहसास है जो मैं मिस कर रहा था उसके बड़े होने पे। अब मैं उसके साथ एक समय क्वालिटी समय व्यतीत कर सकता हूँ जो पहले मैं अपनी फैमिली को नहीं दे पाता था। अब मैं उनके साथ कहीं पे भी कैसे भी समय व्यतीत कर सकता हूँ जो पहले नहीं था।
1: हम बात कर रहे हैं अमित दुआ जी से, जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में मरीजों के परिवार वालों पर क्या गुजरती है? अमित जी, आपकी एक छोटी सी बच्ची है, आपकी वाइफ भी है। पेशेंट्स के लिए जिंदगी तो मुश्किल होती ही है, लेकिन उनके आसपास वालों पर भी बीमारी का बहुत असर या प्रेशर पड़ता है। आपकी फैमिली ने ये कैसे हैंडल किया, ये कैसे संभाला?
0: फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं हो तो आदमी इस मुश्किल दौर से नहीं गुजर सकता। आई वॉज लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आ जाता है। हम लोग चेन्नई में थे तो वाइफ को भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ा, बच्चे का स्कूल लाइफ खराब हुआ, उसका स्कूल का एक साल खराब हुआ, जो कि चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप इस प्रोसेस के लिए जाते हैं। मैं इस में भाग्यशाली था कि मेरा बच्चा छोटा था, वो एक छोटी क्लास में था तो उसका साल खराब होने से बच गया। पर अगर आपका बच्चा बड़ा है या किसी भी और बड़ी क्लास में है तो उसका स्कूल भी खराब होगा, आपकी फैमिली लाइफ भी खराब होगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए 24 घंटे चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शंस ऑपरेशन के बाद हैं उसके लिए तो सपोर्ट और ज़्यादा चाहिए। पहले 6 महीने के दौरान जो आपको सपोर्ट चाहिए वो शायद आपके नज़दीकी घर में जो सदस्य हैं उसके अलावा कोई भी आपको नहीं दे सकता। जो खाने में चाहिए, जो सफाई चाहिए, जो माहौल घर में चाहिए, वो आपका बहुत नज़दीकी, जैसे आपकी वाइफ, आपका बच्चे या आपके पेरेंट्स ही आपको दे सकते हैं। बाहर से कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपको हमदर्दी दे सकता है, सहानुभूति दे सकता है, बट आपके लिए कर कुछ नहीं सकता। सो माई एडवाइस इज, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी तो दिस इज आपकी रिकवरी में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
1: तो अमित जी, ट्रांसप्लांट को 2 साल हो गए हैं। ट्रांसप्लांट के बाद आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, आपको बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंट मेंटेन करना पड़ता है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, आप बीमार ना हो। तो पिछले 2 साल कैसे गुजरे हैं आपके लिए? लोग जानना चाहेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है फिजिकली?
0: क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, इट विल बी अ मार्क इम्प्रूवमेंट। जो आप खुद अगर करवाते हैं ट्रांसप्लांट तो आपको खुद नजर आएगा। ये बात फैक्ट है कि आपको कुछ इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हैं। जितना आप अपने लिए प्रिकॉशंस लेंगे उतना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, आप उतना बीमारी से दूर रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा है। एक बार इन्फेक्शन अगर होता है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक आम इंसान इन्फेक्शन से 3 या 4 दिन में निजात पा सकता है, पर आपका इन्फेक्शन 15 से 20 दिन ले जाएगा, जो आपके लिए उतनी ही मुश्किलें पैदा करेगी।
1: ये इसलिए भी है क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट के बाद आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स। हाँ, तो
0: इम्यूनोसप्रेसेंट से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो इम्यूनिटी ख़त्म होने के बाद आपकी दवाइयाँ जो 10 दिन चलती हैं वो 20 दिन चलेंगी, और उनका जो डोज ऑफ जो एक एंटीबायोटिक्स डोज होगा वो बहुत कम होगा, बहुत ही लो, जिसको कहते हैं इट विल बी अ वेरी लो डोजेज, तो उतना ही टाइम आपका रिकवरी के लिए बढ़ता जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि जितना प्रिकॉशंस आप लेंगे आप उतना सेफ रहेंगे।
1: और ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपका हार्ट रिजेक्ट हो जाएगा,
0: रिजेक्शन चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। आपको अपनी दवाइयों में बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी और उसके साथ रेगुलर होना पड़ेगा। जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल ऑन दोज टाइमिंग्स, यू कैन नॉट मिस ऑन दोज मेडिसिंस।
1: और जो दवाइयाँ आपको जिंदा रख रही हैं वो आपकी इम्यूनिटी भी कम कर रही हैं, सो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा।

0: ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि मरीज तो काफ़ी हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए राज़ी नहीं होते। शायद वो समझते हैं कि मैं अपना हार्ट कैसे निकाल दूँ, किडनी निकाल सकते हैं, लिवर निकाल सकते हैं, लेकिन हार्ट की बात ही कुछ और है। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे उन मरीजों को जिनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना है? क्योंकि हमारे बहुत डॉक्टर हैं जो बोलते हैं, मरीज साफ मना कर देते कि नहीं डॉक्टर साहब आप कुछ भी कर दो लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे।
1: देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं तो वो जरूरी है। कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा रिस्क अपने ऊपर नहीं लेगा। ट्रांसप्लांट आपको एक नया जीवन दे रहा है। कोई भी डॉक्टर आपको जीवन देने के लिए किसी का जीवन या आपका जीवन खत्म नहीं करेगा। इस बात को आपको सोच के चलना चाहिए कि आपको जीवन देने के लिए ही डॉक्टर्स, आपके बेनिफिट के लिए ही डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ेगी। ठीक है, कुछ दवाइयां हैं, एहतियात हैं, बट आपकी लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जितना आप डिले करेंगे प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ेंगी, किसी और के लिए नहीं। तो आई थिंक अगर वो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं गो फॉर ट्रांसप्लांट, आप जितना जल्दी करवाएंगे उतना बेटर है, और जितना लेट करेंगे प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ती जाएंगी, किसी और के लिए नहीं।
0: तो अमित जी, आपको हार्ट मिला है वो किसी डोनर से मिला है। भारत में तो बताते नहीं है कि डोनर कौन है, आपको पता नहीं होगा कि कौन होगा डोनर, लेकिन कैसा लगा कि किसी ने आपके लिए जाते वक्त हार्ट दे दिया?
1: मैं उस फैमिली को और अपने डोनर को हमेशा के लिए शुक्रिया ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो मेरा दोस्त कौन है जिसका दिल मेरे में धड़क रहा है। उसके लिए मैं हमेशा उस फैमिली को और उन सबको, अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, अपनी फैमिली को धन्यवाद कह सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि जिसने भी हार्ट दिया है वो एक नेक काम करके गए हैं, और उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और आगे भी सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना हार्ट डोनेट करें, ताकि मेरी तरह जो लोग हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं, जो कि अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको एक मीनिंगफुल लाइफ मिले आगे, वो जी सके।
0: थैंक यू वेरी मच अमित जी, आप इतनी दूर आए हमारे पास और हमारे श्रोताओं को अपनी पूरी कहानी बताई विस्तार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू सुनैना। यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो हम बात कर रहे थे अमित दुआ जी से, जो कि एक हार्ट ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं। उन्होंने हमें अपने मुश्किल सफर के बारे में बताया तथा कैसे एक परिवार ने अंग दान कर उन्हें एक नया जीवन दिया, ये भी बताया। और इसी के साथ आप सभी के लिए भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी ने एक सुंदर सा मैसेज भेजा है, आइए सुनते हैं। अनूप जी, आप सबको क्या कहना चाहते हैं?
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद।
2: जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
4: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मान एवरेज 107.8 एफएम पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा। और आ गई हूँ मैं लेकर एक बार फिर से आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, यानी कि सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर दुनिया के उन महान व्यक्तियों की हम बात करते हैं, उनकी कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपने पक्के इरादे के दम पर एक इतिहास रचा है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सफलता की कहानी को ही नहीं सुनाना होता है, बल्कि उन अनुभवों को सिखाना होता है, समझाना होता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना कर कुछ अचीव करा हो अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की, जी हाँ, जिनका नाम संघर्ष, साहस और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को माफ करने और एकजुट रहने की ताकत दिखाई। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला सिर्फ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ किसी पद या फिर हासिल करने का नाम नहीं होता, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने सिद्धांतों पर टिककर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गाँव में हुआ था। उनका असली नाम रोहिलाला मंडेला था। बचपन में उनका जीवन बहुत ही की भरा हुआ था। वो एक आम परिवार से आते थे, गांव के दूसरे बच्चों की तरह बड़े भी हुए, लेकिन बचपन से ही उनमें एक सीखने की लगन और एक अलग सी झलक नजर आती थी। मंडेला को शिक्षा का बहुत महत्व समझ में आया। उनका मानना था कि एजुकेशन वो शक्ति होती है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और साथ ही धीरे धीरे समाज में हो रहे भेदभाव और अन्याय के बारे में समझाना शुरू किया। यही वो समय था जब उनके अंदर एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाली थी। एक ऐसी सोच जो समानता, न्याय और आजादी के लिए लड़ने का हौसला देती है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की जिंदगी का असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आगे के सफर में उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। देखा दोस्तों, यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने कुछ अचीव कर रखा होता है। वो जब भी प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम नहीं समझते, उससे ना एक सॉल्यूशन समझते हैं, एक रास्ता समझते हैं कि शायद इस पर चलकर ही मुझे कुछ अचीव होगा। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा, वो भी सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष को देखा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके संघर्ष के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने उनके बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में जाना था थोड़ा बहुत। अब समय है समझने का कि उस समस्या को जिसने नेल्सन मंडेला को एक आम इंसान से दुनिया के महान नेताओं में शामिल कर दिया, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों उस समय साउथ अफ्रीका में एक व्यवस्था थी जिसे एप्रीथेट कहा जाता था। एप्रीथेट का मतलब होता था कि लोगों के साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव करना। काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग नियम थे। काले लोगों को कई बुनियादी अधिकारों से दूर रखा जाता था, उन्हें अच्छी शिक्षा ना देना, रोजगार और आजादी के मौके भी बराबरी से नहीं मिलते थे। नेल्सन मंडेला ने जब इस अन्याय को अपनी आंखों के सामने देखा होते हुए, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वो एक वकील के रूप में काम करना शुरू करा। उन्होंने वकील बनने के बाद उन्हें और ज्यादा गहराई से समझ में आया कि किस तरह से आम लोगों अन्याय का शिकार हो रहे हैं। मंडेला धीरे धीरे अफ्रीकन नेशन कांग्रेस यानी कि ANC से जुड़े। ये एक ऐसा संगठन था जो समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। मंडेला ने शांति और संघर्ष के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो गांव-गांव और शहरों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने लगे। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरकार को मंडेला और उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, उन पर नजर रखी जाने लगी, उनके गतिविधियों को रोकने की कोशिश भी की गई और कई बार उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मंडेला ने डर के सामने झुकने की बजाय अपने इरादों को और ज्यादा मजबूत कर लिया। उनका मानना था कि अगर आप सच और न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, यानी अपनी सोच को दूसरों से अलग बनाना होता है। मंडेला ने हमें सिखाया है कि सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़ा हो। लेकिन दोस्तों मंडेला की इस लड़ाई का एक बड़ा परिणाम सामने आने वाला था। सरकार ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता और आंदोलन को अपने लिए खतरा माना और फिर आया वो मोड़ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। क्या था वो मोड़, बताऊंगी मैं आपको इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला के साथ, नेल्सन मंडेला की प्रेरणादायक जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मंडेला ने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, लेकिन हर बड़े बदलाव की कीमत होती है और मंडेला को अपने फैसलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या थी वो कीमत दोस्तों? जैसे जैसे मंडेला की लोकप्रियता बढ़ रही थी लोगों में, उनका आंदोलन मजबूत होते जा रहा था। साउथ अफ्रीका की सरकार उनसे ज्यादा चिंतित होने लगी। सरकार को लगने लगा कि मंडेला और उनके साथी उनकी नीतियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। इसी वजह से उन पर कई आरोप लगाए गए और उनकी गतिविधियों पर भी सख्त नजर रखी जाने लगी। आखिरकार साल आया 1962, जिसमें नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। जब फैसला सुनाया गया, तब मंडेला जानते थे कि उनकी जिंदगी एक बहुत लंबा हिस्सा जेल की दीवारों के बीच गुजारने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि इतनी बड़ी सजा के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने विचारों और अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। नेल्सन मंडेला का मानना था कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी सोच और सपनों को कभी कैद नहीं किया जा सकता। जेल में जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन था, उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, परिवार से मिलने के मौके बहुत कम मिलते थे और कई बार उन्हें अलग थलग भी रखा गया था। लेकिन मंडेला ने हर मुश्किल को एक सीख की तरह लिया। उन्होंने जेल के समय को गुस्से और नफरत में बर्बाद करने की बजाय खुद पर और ज्यादा मजबूती से काम करना शुरू किया। वो पढ़ते रहे, सीखते रहे और अपने शक्तियों का और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। धीरे धीरे जेल भी उनके लिए क्लासरूम सा बन गया, जहाँ वो धैर्य और अनुशासन की नई परिभाषा लिख रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मंडेला ने हमें दिखाया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और इरादे मजबूत हो, तो मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थिति में भी उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है। लेकिन मंडेला की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जेल के अंदर बिताए गए सालों ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बना दिया। दोस्तों, वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और साथ ही दोस्तों आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके सफर के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना बड़ा नाम बनाने के लिए। दोस्तों जिंदगी के उस दौर को समझ रहे हैं हम जहाँ पर अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मंडेला ने अपनी सबसे बड़ी ताकत वहीं से हासिल की। पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे उन्हें गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब बात करते हैं उन 27 सालों की जो उन्होंने जेल में बिताए थे। ये कोई छोटा समय नहीं होता है, सोचिए लगभग 3 दशक तक आजादी से दूर रहना, अपने परिवार से अलग रहना और हर दिन एक ही तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना करना। ऐसे में बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस समय को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। नेल्सन मंडेला का मानना था कि इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। जेल में रहकर भी उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। वो लगातार पढ़ते रहे, नए विचारों को समझते रहे और अपने आप को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि वो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते थे। जेल में नेल्सन मंडेला ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, वो था धैर्य, पेशेंस, जो कि आजकल लोगों में बहुत कम है। ये अगर आपने रख लिया तो समझ लीजिए कि आपको लाइफ में आधी से ज्यादा चीजें तो खुद ब खुद मिल जाएंगी। आज की दुनिया में ना सब कुछ ऐसा चाहिए हमें कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन मंडेला ने दिखाया है कि बड़े परिवर्तन और बड़ी सफलता के लिए कभी कभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नजर से ओझल नहीं होने दिया और इसमें सबसे प्रेरणादायक बात तो ये थी कि इतने सालों की कैद के बाद भी उनके दिल में कभी नफरत नहीं थी। जिन्होंने उन्हें जेल भेजा उनके प्रति भी नेल्सन मंडेला में कभी बदले की भावना नहीं आई। वो समझ चुके थे कि नफरत सिर्फ इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है, जबकि माफी और समझदारी से इंसान मजबूत बनता है। और बस यही वजह थी कि जेल में रहते हुए भी मंडेला की पहचान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ती गई। लोग उन्हें सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि न्याय और आजादी की आवाज के रूप में देखने लगे। उनका नाम संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन गया। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला की जर्नी के साथ। और आज हम नेल्सन मंडेला की जिंदगी के उस अध्याय पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हाँ, पिछले सेगमेंट पे हमने जाना कि कैसे नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए और हर मुश्किल को अपनी ताकत में बदल दिया। अब बात करते हैं उनकी आजादी और उसके बाद के नेतृत्व की। दोस्तों साल था 1919 में नेल्सन मंडेला को 27 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई थी। लोग सोच रहे थे कि इतने सालों तक अन्याय सहने के बाद शायद उनके दिल में गुस्सा और बदले की भावना होगी, लेकिन मंडेला ने जो किया उसने दुनिया को ही हैरान कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बदला नहीं बल्कि मेल मिलाप का रास्ता चुना। उनका मानना था कि अगर साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाना है तो लोगों को एकजुट होना होगा। नफरत और बदले की भावना सिर्फ देश को और ज्यादा बांट देगी। इसलिए नेल्सन मंडेला ने माफी, संवाद और एकता पर जोर दिया। ये फैसला आसान नहीं था। बहुत से लोग चाहते थे कि पुराने अन्यायों का जवाब दिया जाए, लेकिन मंडेला दूर की सोच रखते थे। वो जानते थे कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो भावनाओं में बहने की बजाय देश के भविष्य के बारे में सोचे। उनकी मेहनत और नेतृत्व का परिणाम ये हुआ कि साल 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। इसी चुनाव में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी बल्कि न्याय और समानता की जीत थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मंडेला ने सत्ता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया बल्कि उनका ध्यान देश को मजबूत बनाना था, लोगों को जोड़ना और एक बेहतर भविष्य तैयार करना था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ शक्ति हासिल करना नहीं होता बल्कि लोगों की सेवा करना और उनको साथ लेकर चलना होता है। दोस्तों मंडेला की आज़ादी के बाद का सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। असली ताकत बदला लेने में नहीं है बल्कि माफ करने और आगे बढ़ने में होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है वही सच में महान बन पाता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जर्नी की। उनके साथ आज हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने कितनी सारी चीजें फेस करी, पर उन्होंने कभी भी अपना मन नहीं बदला, उन्होंने कभी भी अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। उनका मानना था कि सिर्फ शांति और प्रेम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। जरूरी नहीं कि हर बात पर कुछ लड़ाई करना या बदला लेना या किसी को नीचा दिखाना ही हमारे लिए सही होगा, बल्कि लोगों को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जिंदगी से मिलने वाली उन सीखों की, जो हर उम्र में इंसान को सफलता की राह दिखा सकती है। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मंडेला ने जेल से बाहर आकर बदले की बजाय माफी और एकता का रास्ता चुना। अब समय है उनकी सक्सेस मंत्रा को समझने का। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला की जिंदगी का पहला सबसे बड़ा मंत्रा था कभी हार ना मानना। जी हाँ, उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन अपने सपने और लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के सामने टिक कर खड़े रहते हैं। और दूसरा मंत्र था, शिक्षा की ताकत को समझो। मंडेला का मानना था कि एजुकेशन दुनिया को बदलने का सबसे पावरफुल हथियार होता है। उन्होंने हमेशा सीखने और समझने पर जोर दिया। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा मंत्र था, डर को अपनी सीमा मत बनने दो। मंडेला ने एक बार कहा था कि बहादुर वो नहीं होते जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर इंसान को किसी ना किसी बात का डर होता है, लेकिन सफलता वही होती है जो उस डर पर जीत हासिल कर सकती है। और चौथा सबसे खास मंत्र, माफी की ताकत को समझो। इतने सालों तक अन्याय सहने के बाद भी मंडेला ने कभी भी नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी। उन्होंने दिखाया कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। जब हम गुस्से और नफरत को छोड़ देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को बेहतर कामों में लगा सकते हैं। और उनका पांचवा मंत्र था, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना। जी हाँ, मंडेला के सामने कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को कभी नहीं भुलाया। उनका फोकस हमेशा न्याय, समानता और एक बेहतर साउथ अफ्रीका पर रहा। दोस्तों, ये मंत्र सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव है जिसने अपनी पूरी जिंदगी के सिद्धांतों पर चलकर दिखाया है। अगर हम इनमें से कुछ बातों को भी अपनी जिंदगी में अपना ले तो हम अपने लक्ष्य को और ज्यादा करीब से पहचान पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। और आज हम नेल्सन मंडेला की अद्भुत और प्रेरणादायक जिंदगी के सफर को समझ रहे थे। बचपन की सादगी से लेकर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष तक, 27 साल की कैद और फिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने तक, मंडेला की कहानी हमें हिम्मत, धैर्य और इंसानियत की असली ताकत दिखाती है। दोस्तों, अगर आज के युवा नेल्सन मंडेला की जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें सबसे पहली सीख है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने लक्ष्य और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंडेला के पास कई मौके थे जब वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार संघर्ष को चुना और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा। दूसरी बड़ी सीख है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों का नाम नहीं होता है, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी समानता, न्याय और अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। तीसरी बड़ी सीख ये है कि धैर्य और अनुशासन। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर चीज हमें तुरंत चाहिए होती है, लेकिन मंडेला की कहानी हमें बताती है कि सपने पूरे होने में समय लगता है। कभी कभी तो सफलता तक पहुंचने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और शायद उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि नफरत से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। माफी, संवाद और एकता ही वो रास्ता है जो लोगों और समाज को आगे बढ़ाता है। मंडेला ने दुनिया को दिखाया है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। दोस्तों, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और आप सुन रहे थे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। फिर से मिलेंगे एक और महान व्यक्ति की कहानी के साथ, उनकी सफलता और उनकी सूत्रों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरोलंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज मैं एक बड़ी खूबसूरत सी जगह आपको ले जाने वाली हूँ और इस जगह को ना द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट ये कहा जाता है। बादल जब जमीन पर उतर आते हैं तो लगता है जैसे कुदरत हमें गले लगा रही है और आज ऐसी ही जगह आपको ले जाने वाली हूँ जहाँ पर ऐसा एहसास ऐसा महसूस आपको होगा। और ये जो बात है, ये जो एहसास है, ये जो नेचर से जुड़ाव है ना, आपको इसी जगह महसूस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आप ना वो कनेक्शन फील करवाएंगे। आप वो एक अलग दुनिया में जैसे आप आ जाते हैं ना, एक अलग देखिए आपको लगेगा एक अलग यूनिवर्स में आप आ गए हैं। इतना खूबसूरत आपको लगेगा कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। कभी कभी होता है कि भीड़ की इस भागदौड़ से हम कहीं पर बस शांत जगह जाना चाहते हैं। आज जिस जगह की बात करी वो बड़ी बहुत ही कमाल बहुत ही प्यारी सी जगह है। चलिए इस जगह के बारे में आपको बताती हूँ कौन सी है, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज इस प्रोग्राम में ना आपको लेकर के जाने वाली हूँ बड़ी खूबसूरत सी जगह, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये देखिए उन हसीन पहाड़ियों में से है जहाँ बारिश का घर है। आज हम चल रहे हैं शिलांग, बड़ी खूबसूरत जगह है। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा शहर जो हरा भरा है, जहाँ रास्ते घुमावदार हैं और हवा में हमेशा थोड़ी सी नमी रहती है। मैं जब पहली बार शिलांग गई, वहाँ कदम रखा, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई शहर इतना खूबसूरत, इतना साफ, इतना सुंदर कैसे हो सकता है। यहाँ की वाइब बिल्कुल यूरोप जैसी आपको महसूस होगी और इसीलिए इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आज इस प्रोग्राम में, इस जर्नी में आपको शिलांग लेकर के चल रही हूँ। शिलांग के म्यूजिकल गलियों में ले जाऊंगी, वहाँ आपको वाटरफॉल्स आपको महसूस करवाऊंगी, बताऊंगी उसके बारे में, और ये भी कि यहाँ की बारिश भी संगीत जैसी लगती है। चलिए, आपको बस कहीं नहीं जाना है, बस मेरे साथ यूं ही रहना है क्योंकि आज का सफर बहुत ही रिफ्रेशिंग होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, हर मोड़ पर एक नगमा है, हर दिल में रंग, और साथ ही यहाँ हर गलियों में होते हैं राग। शिलोंग की हवाओं में संगीत का वास है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी ना, आप भी इस मतलब इनके जो रम जाएंगे इसके अंदाज़ में, जो शिलोंग की ख़ास बात है उसमें रम जाएंगे। और ये बड़ा ही खूबसूरत एक शहर, और देखिए शिलोंग सिर्फ पहाड़ों का शहर नहीं है, ये इंडिया की रॉक कैपिटल भी इसे कहा जाता है। यहाँ के लोगों के खून में म्यूजिक दौड़ता है। आप किसी भी कैफे में अगर आप जाते हैं या किसी रास्ते से गुजरते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक गिटार की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। और देखिए जब आप वहाँ जाएंगे ना, तो बच्चा बच्चा म्यूज़िक समझता है यहाँ का। यहाँ का लोकल जो यहाँ के बैंड्स हैं इतने टैलेंटेड है कि आप उन्हें सुनते रह जाएंगे। कहते हैं शिलोंग में म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि जीने का तरीका है। और देखिए जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ शाम बिताइए, तो आपको एक देखिए एक अलग वाइब आपको मिलेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखिए जो नॉर्थ ईस्ट भाषा में ही आपको मिलेगा कि वहाँ के लोग गा रहे हैं, हिंदी भाषा इंग्लिश में गाने जो हैं लोग गाते हुए आपको मिल जाएंगे। अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो आप शिलोंग ज़रूर जाइए। और शिलोंग के लिए मतलब देखिए आप जब वहाँ जाएंगे, अगर आप म्यूज़िक से प्यार करते हैं तो आपको जाना ही मैं कहूँगी पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप अभी तक नहीं गए और ये दिमाग में बस ला ही रह गया जाएंगे कभी ना कभी तो जाएंगे, तो बस इस ख्याल को रोक दीजिए और बस अपना बैग पैक कीजिए, आइटनरी तैयार कीजिए और निकल जाइए। चाहे सोलो ट्रिप पे जाइए, शिलोंग जाइए, वहाँ पर आपको एक अलग अंदाज आपको मिलेगा, एक अलग खासियत आपको दिखेगी, आप महसूस कर पाएंगे म्यूजिक को। चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद शिलोंग की और भी बहुत सारी होंगी बातें हैं, कहीं कहीं घूमने भी जाएंगे ना शिलोंग आए तो। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. अच्छा, मैं ना आपको बता रही थी एक बड़े ख़ास जगह के बारे में जिसका नाम है शिलोंग. शिलोंग बड़ा ही खूबसूरत ये शहर है. और साथ ही देखिए, शिलोंग की खूबसूरती के बारे में तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ. अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो बस आपको क्या करना है भाई, अपना एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल फ़ोन लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है उसके, और सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना. जैसे आपको आप दिख जाए डाउनलोड के लिए आप, और आपको डाउनलोड करने के बाद ढेर सारे पॉडकास्ट, एक्सपर्ट एडवाइस, बहुत इकमाल के सुपर ऊपर हिट गाने और साथ ही सफरनामा जो आपको मिल जाएगा. ये पॉडकास्ट सेक्शन में जाके साक्षी यानी कि मैं आरजे साक्षी जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर सफरनामा ये प्रोग्राम जो है ये आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से सुन सकते हैं. चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज मैं बात कर रही हूँ शिलोंग की। देखिए, शिलोंग की बात करूँ तो ये जो शिलोंग है इससे थोड़ा सा दूर निकलते ही आपको मिलेंगे एलिफेंट फॉल्स। इसका नाम सुनकर आपको लगेगा कि शायद यहाँ हाथी होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटिशर्स ने इसे ये नाम दिया था क्योंकि यहाँ एक पत्थर हाथी जैसा दिखता है। ये वाटरफॉल 3 स्टेजेस में नीचे गिरता है और जब आप वहाँ जाएंगे तो सीढ़ियों के नीचे उतरकर पानी की बूंदों को आप अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। और वहाँ पर जब मैं गई थी तो देखिए वो जो सारी थकान होती है ना वो आपकी मिट जाएगी। पानी इतना साफ और इतना ठंडा कि आपका मन करेगा बस वहीं बैठे रहें। एलिफेंट फॉल्स हमें बताते हैं कि रास्ता कितना भी ज़्यादा पथरीला क्यों ना हो, पानी अपनी जगह बना ही लेता है। यही खासियत है, यही बात है शिलोंग की। आपको मन करेगा फिर से जाने का वहाँ पर। देखिए, जब आप जाएंगे ना तो आपको और भी बहुत सारे वहाँ पर व्यू पॉइंट्स हैं, वो भी आपको मिलेंगे। एक और व्यू पॉइंट के बारे में आपको बताती हूँ, शिलोंग पीक जिसे कहते हैं, वो भी आपको बताऊंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और अब ना मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही खूबसूरत एक जगह के बारे में, और वो है शिलोंग। वैसे हर सैटरडे ना मैं आपको अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ। चलिए आज शिलोंग आया है तो शिलोंग की बात तो कर रही हूँ। अब शिलोंग आए हैं और हम यहाँ के पीक पर ना जाएं, यानी कि शिलोंग पीक ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो व्यू है ना टॉप का, वो टॉप क्लास है। देखिए ऊंचाई पर पहुँच कर ही समझ आता है कि शहर कितना छोटा और ख्वाब कितने बड़े हैं। अब चलते हैं शिलोंग की सबसे ऊंची चोटी पर, शिलोंग पीक पर। यहाँ से पूरा शहर एक नन्हे से खिलौने जैसा दिखता है, और जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि बादलों का शहर है ये, और बादलों के ऊपर आप हैं, और वहाँ की हवा इतनी तेज़ और ठंडी होती है कि आपको हमेशा एक जैकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। कहते हैं कि इस पीक पर बैठ कर लोग अपने दुख भूल जाते हैं, क्योंकि ऊपर से सब कुछ बहुत शांत दिखता है। वहाँ एक छोटा सा टेलीस्कोप भी है जहाँ से आप धूप निकलने पर बॉर्डर के उस पार यानी कि बांग्लादेश तक देख सकते हैं। शिलोंग पीक आपको यह एहसास कराता है कि आप बादलों के कितने पास हैं, और ये भी कि बादलों के ऊपर आप जब रहते हैं तो कैसा महसूस होता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप शहर को देखते हैं ना नीचे, क्योंकि बादल जो है वो नीचे होते हैं, बारिश होने के चांसेस बने रहते हैं, तो बारिश की वजह से ना बादलों का जो है वो नीचे हमेशा थोड़ा रहते हैं। जब आप एक चोटी पे पहुंच जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों के ऊपर आ गए हैं, कुछ इस तरह से। चलिए फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें हर शनिवार ये प्रोग्राम लेकर के आती हूँ, जिसमें अलग अलग जगहों पर ना आपको घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ। आज जिस जगह की मैं बात करूँ वो है शिलोंग। भीड़ में भी एक रौनक है, बाजार में भी एक रंग है, ये शहर हर पल जीता है अपने ही संग, और ये शहर है शिलोंग। देखिए शिलोंग की बात करें, यहाँ की हार्ट बीट ऑफ दी सिटी की मैं बात करूँ तो पुलिस बाजार जिसे कहा जाता है, अगर आपको शॉपिंग करनी है या लोकल लाइफ देखनी है तो पुलिस बाजार यानी कि पीबी ज़रूर जाइए। ये शिलोंग का सबसे बिजी और सबसे कूल मार्केट जिसे कहा जाता है वो है। यहाँ आपको लेटेस्ट फैशन से लेकर लोकल हैंडमेड जो बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और जब आप वहाँ जाएंगे तो स्ट्रीट स्टाइल जो फूड स्टॉल होती है, वहाँ के मोमो, वहाँ के जो है जो जादू है वहाँ पर वो है, ये सब आप ले सकते हैं। बहुत ही कमाल लगेगा आपको। और देखिए वहाँ की अगर हम बात करें खास डिश की, तो जादू या के जो एक बात करें तो राइस और मीट से ये बनती है। और पुलिस बाज़ार में घूमते हुए आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और लोकल खासी लोग। वहाँ की जो चहल पहल है ना उसमें भी एक डिसिप्लिन है। पुलिस बाज़ार शहर का वो हिस्सा है जहाँ रात को भी रौनक ख़त्म नहीं होती है। वहाँ की वाइब ही अलग है, बहुत ही एनर्जी है, एक मॉडर्न इंडी पॉप आपको जो वाइब है ना वहाँ मिल जाएगी। तो रात को भी अगर आप चाहते हैं अपने होटल रूम से निकल के वॉक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं। तो ऐसा कोई डर नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, इसलिए ये बात आपके लिए। और देखिए अब मैं आपको यहाँ के लोगों के थोड़े से ट्रेडिशन के में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और अब मैं बात करूँ शिलोंग की। लोगों का व्यवहार ही शहर की असली पहचान होता है, ये बात जब आप शिलोंग जाएंगे ना आप समझ जाएंगे। शिलोंग में रहने वाले लोग ज्यादातर खासी ट्राइब से हैं। और एक और खासी ट्राइब में बात करूँ, यहाँ पर जो है जो मैं कहूँगी जैसे मेल जो एक डोमिनेंट सोसाइटी होती है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ फीमेल जो है इनका बोलबाला तो वही समझ आता है। और मैं कहूँगी कि एक नज़ाकत है, एक प्यार है। और इसी वजह से, क्योंकि जब माँ का प्यार, जो मातृ प्यार है, जो माँ का प्यार है वो ज़्यादा होना, तो देखिए अपने आप ही प्यार बढ़ जाता है। यहाँ पर शिलोंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सोसाइटी है, यानी घर की जो जिम्मेदारी है और प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती है। जैसे नॉर्मली होता है ना कि अगर आपके जो फादर हैं या मदर हैं उनकी प्रॉपर्टी है या उनका कुछ भी है ऐसा बिजनेस है तो वो बेटे को मिलेगा, यहाँ पर फीमेल को मिलता है।

बेटियों को मिलता है। और देखिए अगर आप वहां जाएंगे तो महिलाएं बहुत ही हार्डवर्किंग और कॉन्फिडेंट होती हैं, लोग बहुत पोलाइट हैं और उनका रहने का तरीका बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। उनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस की अगर मैं बात करूं तो जैनसिम बहुत ही सुंदर लगता है, वो कुदरत की बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। और यहाँ देखिए वजह आपको जब आप जाएंगे ना कि आप सोचेंगे कि क्या वजह है, क्यों जाना चाहिए शिलोंग, जब आप वहाँ जाएंगे आप लगेगा बस आ जाना चाहिए शिलोंग ये मैं ज़रूर कहूँगी। और वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, और साथ ही वहाँ के लोग एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अपने कुदरत की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो लोग वहाँ जाते हैं और आप देखिए गंदगी कुछ फैलाते हैं वहाँ पर, आपने पानी पिया बॉटल्स फेंक दी, ऐसा नहीं है, वो शहर बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है, वहाँ कुदरत की रिस्पेक्ट की जाती है। तो आप वहाँ जाएं तो इस प्रगति में उनका साथ दीजिए और वो आपको और ज़्यादा अच्छा महसूस कराएंगे। चलिए फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, मैं बात कर रही हूँ आज शिलोंग की। देखिए, बारिश

ये बूंदें जब मिट्टी पर गिरती हैं ना, तो वही मिट्टी एक नया गीत सुनाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आज का हमारा सफ़र है ना, इस सफ़रनामा में मैं आपको बता दूं कि शिलोंग की मैंने आपसे बात करी है, और शिलोंग की बातें हमारी चल रही हैं। और यहाँ के अगर खाने की बात करें तो यहाँ का खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ का खाना जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, मतलब वो गर्माहट जो है ना वो आपको खाने में मिल जाती है। और खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि किसी शहर की दास्तां समझने के लिए होता है। और शिलोंग अगर आप आ रहे हैं घूमने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ खाना, जब आपको खाना नहीं है आपको ना चखना है, लेकिन उस खाने को जब आप चखेंगे ना तो उसकी रूह तक जरूर जाइएगा और जो एक कनेक्शन है ना वो आप महसूस कर पाएंगे। शिलोंग की ठंडी हवा और हल्की बारिश में जब गर्म गर्म खाने की खुशबू आती है तो भूख अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ का खाना बिल्कुल यहाँ के लोगों जैसा है, सिंपल है, ऑर्गेनिक है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। आज देखिए इस प्रोग्राम में ना मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ और खाने के बारे में भी आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है, और यहाँ पर खासी कुजीन के बारे में भी आपसे बात करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हुई छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूं हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूं और बहुत सारी होती हैं बातें। आज शिलोंग के बारे में आपको बता रही हूँ। शिलोंग आए और कुछ खाएंगे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? किसी शहर जाएंगे तो वहाँ के तो कुछ हम डिशेस टेस्ट करते ही हैं, खाते ही हैं। अगर आप शिलोंग में हैं तो आप जो है देखिए, ज़रूर यहाँ का जो खासी कुजीन है ये आप ज़रूर खाइए। यहाँ का जो जादू है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और देखिए, अगर आपने ये नहीं खाया ना तो आपका सफ़र अधूरा रह जाएगा। जादू का मतलब होता है जा यानी कि राइस और दो यानी कि मीट। जादू ये राइस और पोक का एक बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन है, जैसे लोकल स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ धीरे धीरे पकाया जाता है। इसमें ऑयल बहुत कम होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और आप इसे जो है रोटी के साथ भी जो है इसे खा सकते हैं। वहाँ पर जो अलग अलग डिशेज़ वहाँ पर मिलती हैं वो आप खा सकते हैं। बहुत ही ऑर्गेनिक सा इसका स्वाद है, बहुत ही अच्छा स्वाद है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप पोक नहीं खाते हैं, अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप मटन खाते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और इनफैक्ट यहाँ के जो मोमो मैजिक है तो आप वो भी ज़रूर यहाँ पर आके ट्राई कीजिए। गरम गरम मोमो और तीखी चटनी शिलोंग की ठंडी हवा का सबसे बेहतरीन इलाज है अगर आप यहाँ आते हैं, क्योंकि मोमो जो है शिलोंग में आपको हर मोड़ पर, हर गली में एक मोमो वाला मिल जाएगा। लेकिन ये वो नॉर्मल मोमो नहीं है जो हम शहरों में खाते हैं। यहाँ के मोमो की स्किन एकदम पतली होती है और अंदर की फिलिंग एकदम जूसी। चाहे आप चिकन चूज करें, पोक चूज करें या वेज चूज करें, ये डिपेंड करता है। वही वेज भी मिलता है। और एक सरप्राइज होता है कि वो जो लाल तीखी चटनी है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही टेम्पटिंग होती है। तीखी चटनी है तो मुँह में पानी भी आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी, अगर आप तीखा पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते, चटनी थोड़ी कम लीजिएगा, या फिर उसके साथ आप चीज़ या कुछ और भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा आप खाना पसंद करें। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

का प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उसपे रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: उठता तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। मैं बात कर रही हूँ शिलोंग की, और शिलोंग आए हैं कुछ मीठा ना खाएं। देखिए, खाने के बाद मीठा तो होना ही चाहिए ना, तो मीठे के बिना ना, मतलब मुझे लगता है दावत जो है वो अधूरी है। और पुखले के बिना हर खुशी, सब कुछ मीठा हो जाएगा जब आप इसका टेस्ट करेंगे पुखले का। और शिलोंग में डेजर्ट के नाम पर सबसे ज़्यादा मिलता है पुखले। ये पाउडर्ड राइस और जैगरी यानी कि गुड़ इससे बनता है, जिसे तेल में डीप फ्राई किया जाता है। और ये देखने में थोड़ा सा साउथ इंडियन आदिरसम जैसे आपको ये लगेगा, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और ये जो है काफ़ी लाइट और क्रिस्पी होता है। शाम की चाय के साथ गर्म गर्म पुखले खाना, उफ मज़ा ही आ जाता है अगर आप वहाँ खाते हैं। और यहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसमें काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं मगर स्वाद बहुत लाजवाब होता है। तो चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना मैं आपको घूमने के लिए लेकर के आई शिलोंग। शिलोंग जो कि एक बड़ी खूबसूरत सी ये जगह है जहाँ पर आपको मतलब हर एक रंग मिल जाएगा, बड़ी खासियत है। और म्यूज़िक तो यहाँ के जैसे लोगों के रगों में बसा हुआ है। और देखिए ये जो एक जर्नी रही है हमारी सफ़रनामा की, मिस्टी और म्यूज़िकल सफ़रनामा का जो है वक्त हो गया है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ। आज शिलोंग की बारिश को महसूस किया है, एलिफेंट फॉल्स का एक ठंडा पानी हमने महसूस किया, पुलिस बाजार की रौनक में खो गए। और शिलोंग हमें सिखाता है कि बारिश से डरना नहीं है बल्कि उसके साथ नाचना आपको चाहिए, डांस करना चाहिए। और इस सफ़र में आपको संगीत मिलेगा, इस सफ़र में आपको जो देखिए जो रूह से कनेक्शन है ना वो मिलेगा, जो सोलफुल एक जर्नी है वो रहने वाली है। तो आप भी आइटनरी बनाइए और जाइए, घूम के आइए। और यहाँ जाने के लिए आपको सिर्फ एक या दो दिन नहीं चाहिए, यहाँ जाने के लिए ना एक हफ्ता चाहिए। तो आराम से जाइए क्योंकि आप नेचर को ना महसूस करते हैं, तो वो महसूस ज़रूर कीजिए। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। आप कहीं मत जाइए, ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर के आ जाता है रेडियो मानव रचना। तो चलिए मुझे यानी कि आरजे साक्षी को दीजिए इजाज़त।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं आ चुकी हूँ. मेरा नाम है ब्रांका और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ये मेरी लाइफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है. ये प्रोग्राम जहाँ मैं आप लोगों के साथ में होती हूँ और ये प्रोग्राम 1 से 3 बजे तक का होता है, यानी कि 2 घंटे का ये ख़ास प्रोग्राम जहाँ आपसे ढेर सारी बातें तो होती ही हैं लेकिन उसी के साथ ही 90s के खूबसूरत गाने सुनाने का काम करती हूँ. और हाँ, आपके मैसेज को कैसे भूल सकते हैं भाई, तो आप अपने मैसेज को मुझ तक टाइमली पहुंचवा दीजिए. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए. कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं या कुछ साझा करना चाहते हैं या आप गाना एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमें एक बार फिर से नंबर सुनिए 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए पहले करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ, यानी कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज के प्रोग्राम में. लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो मेरे जहन में है और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो चलिए इंजॉय करते हैं इसी गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में चलिए आपको बताती हूँ कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ. देखिए, स्ट्रेस जो कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, बहुत ही यू नो छोटी छोटी चीज़ों पर भी आजकल हमें स्ट्रेस हो जाता है और इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो हमारे लाइफ स्टाइल पर दिखता है. लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे थॉट्स काम करते हैं स्ट्रेस पर. हमारे जैसे थॉट्स होंगे उसी तरह से हम चीज़ों को ज़्यादा उस तरह से लेंगे, राइट. जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर जाते हैं किसी बात से, तो हमें स्ट्रेस ज़रूर होगा. और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज के प्रोग्राम में मैं यही बताने वाली हूँ. और स्ट्रेस क्योंकि एक ऐसी बीमारी हम इसे कह सकते हैं जो अंदर ही अंदर हमें खोखला करती जाती है, तो इससे बाहर आना है. अपने ओवर थिंक का जो यू नो आपका एक वो तरीका है कि आप छोटी छोटी बातों पर भी ओवर थिंक करने लगते हैं, उससे बाहर आने के तरीके हम इस प्रोग्राम में जानेंगे. और साथ के साथ किस तरह से राइटिंग थेरेपी स्किल्स जो है आपको यू नो इससे बाहर निकाल सकती है, ये आपको मैं बताऊंगी. जी हाँ, इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा. और इसी के साथ ही मैं फूड के बारे में भी बात करूँगी कि आप अपनी फूड की लाइफ को, उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर. इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हमें सिर्फ एक संडे का वक्त मिलता है और उसमें इतने सारे काम के बीच में हम कोशिश करते हैं कि जो सब्जियां हैं, जो फूड हैं, वो भी हम अपने हफ्ते भर का लेकर के आएँ. अब ऐसे में शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो आपको मैं बताने वाली हूँ इस प्रोग्राम में. तो कहीं मत जाइए, इंजॉय कीजिए अगला गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में, चलिए मैं आपको बताती हूं, अगर आपको भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो आप स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं. और देखिए, आज के टाइम पे ये होना बहुत कॉमन है, क्योंकि टेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा है काम को लेके, अपनी फिर पर्सनल चीज़ों को लेकर. तो अब देखो, ये सब हमारे हाथ में होता है कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है. लेकिन सभी हैंडल कर पाते हैं इसकी जो गारंटी है वो किसी के पास भी नहीं है, राइट? क्योंकि हर किसी को थोड़ा बहुत सही, लेकिन स्ट्रेस ज़रूर होता है. तो अगर आप थोड़े बहुत

में है, यानी कि थोड़ा बहुत ही आप स्ट्रेस लेते हैं उसके बाद आप भूल जाते हैं, इट मीन्स आप एक अच्छी लाइफ यू नो जी रहे हैं क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं है. लेकिन यहाँ बात होने वाली है उन लोगों की जो एक बार अगर उनके साथ कुछ ज़रा सा भी यू नो हो जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या हल्का सा झगड़ा हो गया, तो वो फिर ओवर थिंक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है और फिर कई कई हफ्तों महीनों तक आपका दिमाग कुछ भी ना करने के फेवर में रहता है, दिमाग कुछ करना ही नहीं चाहता है क्योंकि सारा जो ध्यान है वो ओवरथिंक करने में लगा हुआ है. शरीर थका हुआ रहता है, भूख नहीं लगती है, नींद भी ठीक से नहीं आती है, या आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक प्यारी सी बात का भी आप चिढ़कर रिप्लाई करते हैं तो वो चिड़चिड़ापन है. और ये सभी जो लक्षण है ना, ये डिप्रेशन की ओर जाते हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यू नो जब हम लेते हैं तो ये सारे सिम्टम्स इसके हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए. और देखो, अच्छी बुरी, गुस्से वाली चीज़, प्यार वाली चीज़, सभी तरह की भावनाएं कागज़ पर उकेर देने से ना बहुत फ़ायदा मिलता है. सभी तरह की भावनाएं कागज़ पर उकेर देनी चाहिए क्योंकि ये वो चीज़ है ना जिसे आप अपने मन को खाली कर सकते हैं. और इसलिए मैं आज के प्रोग्राम में आपसे बात करने वाली हूँ, रोज़मर्रा जो भी आपके साथ में हुआ है, जो भी जिस भी तरह की चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई है, वो जो भी आप नज़रिया रखते हैं उस पर आपको विचार नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है. यकीन मानिए इतना फ़ायदा आपको मिलेगा ना कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं बिना किसी से शेयर किए हुए भी अपनी बातें यू नो वो समझ पा रही हूँ, उसको रख पा रही हूँ क्योंकि आप लिख रहे हैं, राइट. अच्छा, अब इसकी शुरुआत कैसे करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अच्छा, लिखने की आदत तो होनी चाहिए, सब कहते हैं, बट आप इसको शुरू कैसे करें. तो अगर आपका भी सवाल यही है तो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, डायरी लिखने की जो शुरुआत है ना, वो उस पल से आप करें जब आप लिखने बैठे हो, या उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो भी आपको महसूस हो रहा है वो आप लिखना शुरू कीजिए. और मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ जो आपके साथ गलत हुआ है सिर्फ उसी को मत लिखिए. अगर कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ में, मान लीजिए किसी ने आज आपकी तारीफ करी, आपके काम की तारीफ की, या आपको कुछ अच्छा बोला, आपको प्रेज किया, तो वो भी आप उस डायरी में लिखिए. इससे एक फ़ायदा पता है क्या होगा, हमारा ध्यान सारा नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव बातों पर ही नहीं होगा कि हम सिर्फ उसी को लिख रहे हैं, बल्कि जब आप पॉजिटिव चीज़ों को लिखना शुरू करोगे तो आपको अच्छा भी महसूस होगा और आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे और ये अच्छे वाले चेंजेस होंगे. किसी भी घटना या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए यू नो आप फीलिंग्स रखते हैं, या आप उनकी बातों से बहुत प्रेरित हैं, या किसी ने तारीफ़ कर दी, या जो भी है आप उसे लिखिए. इससे आपको एक तो आदत पड़ेगी लिखने की, और दूसरा आपका मन हल्का होगा और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगी. तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि लिखने की आदत ज़रूर होनी चाहिए. और लिखने के साथ साथ जो मैं महसूस करती हूँ वो है कि आप चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें भी. कोई भी आप किसी भी राइटर को पसंद करते हैं, आप उनके बारे में पढ़ें, उनकी कहानियाँ जो लिखी हुई हैं, उनकी लेखनी को आप पढ़ें, जिससे आपको अच्छा भी लगेगा और सोचने विचारने की जो कहीं की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, उसका एरिया वाइड होता है. तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत काम की होती हैं आपको डेफिनेटली करनी चाहिए. अच्छा, इसी के साथ ही क्यों लिखें, कैसे लिखें, ये वाली चीज़ आई नो आपके जहन में अभी तक वो होगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत तो कर दी है लेकिन अब लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ के साथ सुना रही हूँ गाने. तो आइए एंजॉय करते हैं अगला गाना. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ.

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

थका प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: इस इतना तेज जहन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत

कमाल बनाए ऊपर अकील

हीरा बन के हम सन्यासी काम है चलते रहे।

महाराज पधारे, चिंता चरस चिलम और चेले साथ साथ में सारे।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं. मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर हम बात करें. फिलहाल अभी मैं आपको बता रही हूँ कि लिखना क्यों ज़रूरी है और इसकी शुरुआत कैसे करनी है. लिखने से ना केवल आप दिल को खाली करते हैं बल्कि आप अच्छा सोच पाते हैं. आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाते हैं, राइट. और ये आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन यकीन मानिए होगी ज़रूर. अच्छा, अब कई सारे लोगों का सवाल होगा कि क्यों लिखें, है ना. तो क्यों लिखे का जवाब तो मैंने आपको दे ही दिया है. डिप्रेशन से अगर आपको बाहर निकलना है, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, उससे आप बाहर आना चाहते हैं, है ना. और इस टाइम पर जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा थॉट करते हैं, बहुत ज़्यादा विचारों में रहते हैं, वो अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाते हैं, सामने वाले के सामने रख नहीं पाते हैं, या फिर रखने की कोशिश करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, है ना. ऐसे कई सारे लोग होते हैं हमारे आसपास जो बोलना तो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं और ऐसे में वो अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं. तो आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा हो, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ना कि आप उनको चुप कराते हुए उनको समझा रहे हैं. पहले आप उनको सुनिए, क्योंकि सुनना बेहद ज़रूरी होता है. तो कोई भी ऐसा हो, आप पहले पूरी बात सुनो, देन जो आपको ठीक लगता है आप उनको समझाओ. तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको भी डायरी लिखनी चाहिए. इससे उनको अपनी भावनाएं लिखने में, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो लिखने में उनको हेल्प मिलेगी. वो व्यक्त कर पाएंगे चीज़ों को लिख कर, यू नो, अपनी बातें वो रख पाएंगे. डायरी मूड चेंजिंग का काम करती है और इस बात को समझने में हेल्प करती है कि आपके व्यवहार में बदलाव कब और कैसे क्यों आया, राइट. तो इसलिए हमें डायरी लिखनी चाहिए. वहीं अब सवाल है कैसे लिखें.

कैसे मुझे अपनी डायरी को बताना चाहिए, क्योंकि अब हम उसको सब्जेक्ट मान रहे हैं और उससे अब हम शेयर कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगी कि इसको लिखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप को एक पैटर्न पता होना चाहिए कि पहले आप ये लिखें, देन फिर आप वो लिखें, देन फिर आप ऐसे शुरू करें। नहीं, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो लिखें, क्योंकि हमने डायरी इसलिए चूज़ की ना क्योंकि हम किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को अपने मन की बात समझा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, है ना, इसीलिए हमने डायरी को चूज़ किया। लेकिन अब डायरी के साथ भी अगर हम वही थॉट रखेंगे, वही माइंड के साथ में हम उसको लिखेंगे, तो बात फिर बराबर हो गई ना। इसलिए डायरी लिखने का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप यहाँ से शुरू करें, वहाँ से करें। आपको जो मन में आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आप वैसा लिखिए। आपको रोना आ रहा है, आप उसमें लिखिए। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो, और गुस्से में आप क्या महसूस कर रहे हैं वो आप लिखिए। आपको जो भी फील हो रहा है आप वो उसमें लिखिए। इसमें कोई भी सीमा नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे ऐसे शुरू करना है और पैटर्न वाइज नीचे आना है, नहीं। बस आपको मन हल्का करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे क्या होगा, जब आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन लिखेंगे, कुछ दिन लिखेंगे, मान लीजिए आपने 10-12 दिन 15 दिन लिखा, आपको धीरे धीरे धीरे धीरे, अब हो सकता है किसी के साथ बहुत लंबा टाइम लग जाए, किसी के साथ कम लगे, लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी ज़रूर दूंगी कि आप इस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखेंगे और बिना ये सोचे कि मेरे को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप यकीन मानिए धीरे धीरे धीरे धीरे आप में बदलाव होता नज़र आपको खुद आएगा। बट उसके लिए आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी, चाहे आपको जितने भी दिन हो जाए, जितने भी महीने हो जाए, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है, लिखना है अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने गुस्से को, अपनी हर एक एक चीज़ को। डायरी से आपको कुछ नहीं छुपाना है, कुछ भी नहीं, जस्ट लिखना है। यकीन मानिए ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट लेकर के आएगा आपके अंदर। तो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना, और आप, मैं मंडे टू सैटरडे आती हूँ, आप मुझे बीच बीच में बताएं भी कि आप डायरी कितने दिन से लिख रहे हैं और क्या चेंजेस आपके अंदर आए, बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह के बदलाव आते हैं, राइट? तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आपको सुनाती हूँ प्यारे प्यारे से दो गाने। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

Mirip kayak enak.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और ये मेरी लाइफ में मैं डायरी लिखने की आदत आप भी डाल लीजिए। भाई मैं तो यही कहूंगी कि आप अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए और मन से सारे बातों को, सारे शब्द जो आपने अपने मन में बना रखे हैं उसको निकालने के लिए सबसे इजी तरीका, किसी से शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आप डायरी लिखिए। आपको बहुत अपने अंदर चेंजेस महसूस होंगे। अच्छा, अब क्योंकि मैं अब दूसरे टॉपिक पर आ रही हूँ, तो मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो कि मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं और उनको सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर। अच्छा, फूड की जो लाइफ है उसको हमें बढ़ाना आज के टाइम पे, भाई हम सभी चाहते हैं कि फूड की लाइफ बढ़े, है ना, क्योंकि इतने हैक्टिक शेड्यूल में इतना बिजी टाइम होता है कि बाहर से जाकर ग्रॉसरी लेकर आना, सामान को स्टोर करके रखना और उसकी भी शेल्फ लाइफ बढ़े, इस पर ध्यान देना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा हैक्टिक काम है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगर आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फूड की शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताने वाली हूँ, किस किस में कौन कौन सी चीज़ें आपको किचन में रखनी है जिससे आपके फूड की लाइफ बढ़े। तो देखिए, दाल की बात करें तो किस में स्टोर करना है, एयर टाइट कंटेनर या कांच का जार। तो आपको अगर किसी चीज़ में स्टोर नहीं करना है तो वो है प्लास्टिक शीट वाला डब्बा। जी हाँ, देखो दालों को ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। इसे ज़्यादा समय तक अगर आप रखोगे तो दालें ख़राब हो जाएंगी या कीड़े पड़ जाएंगे। तो दालों की जो शेल्फ लाइफ होती है वो होती है 3 महीने के, लेकिन 3 महीने से 4 महीने के लिए भी आप स्टोर करने के लिए इसको आप जो कांच का जार होता है उसमें रखें। कंटेनर को गीले कपड़े से पोंछकर आप सुखा लें और इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर होगा तो दालें जल्दी ख़राब हो जाएंगी। इसलिए जब भी हम दालें लेकर आते हैं और दालों को कंटेनर में डालने से पहले हम उसको वॉश करते हैं, तो वॉश करने की जगह पे अगर आपका जार क्लीन है पूरा और उसके बाद भी आप साफ़ करके उसमें दालें डालना चाहते हैं तो पहले आप गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें और साफ़ करके पहले उसे पूरी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही आप उसमें दाल डालें। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी कांच का जार गीला रह गया और आपने उसमें दालें डाल दी तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, यानी कि 3 महीने भी दालें नहीं टिक पाएंगी आपके पास। इसलिए ध्यान रखना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाल ख़राब हो जाएगी। दूसरा, दालों से भरे जार को गैस के ऊपर या साइड में बने जो शेल्फ होते हैं वहाँ पर ना रखें, क्योंकि दाल ख़राब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि आसपास अगर शेल्फ है तो वहाँ पर आप दालों के जार ना रखें। अच्छा, जार में तेज पत्ता या लौंग रखने से सामान को ज़्यादा समय तक स्टोर आप कर सकते हैं। अगर आप दालों में भी या तो लौंग डाल देते हैं या तेज पत्ता, आपने देखा भी होगा कि दालों में, चावल में तेज पत्ता पड़ा होता है, तो तेज पत्ता सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि सामान को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे भी आप अपने दालों को, खानों को आप स्टोर कर सकते हैं और लंबे टाइम तक उसको, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही गेहूं की अगर बात करें, तो मैंने आपको बताया दाल के बारे में, लेकिन जब गेहूं की बात करते हैं तो किस में स्टोर करना है आपको, तो स्टेनलेस स्टील होता है या एल्यूमिनियम का बड़ा कंटेनर होता है, आप उसमें गेहूं को स्टोर कीजिए। किस में आपको स्टोर नहीं करना चाहिए, तो पीतल या कांच का बड़ा कंटेनर, उसमें आप स्टोर ना करें। अच्छा, गेहूं को सही ढंग से स्टोर किया जाए तो वो 1 साल तक ख़राब नहीं होती, और कई बार इससे भी ज़्यादा टाइम होता है कि वो ख़राब नहीं होती है, लेकिन रख रखाव की बात होती है। सही तरीके से अगर आप कोई चीज़ रखोगे तो डेफिनेटली उसकी शेल्फ लाइफ आगे बढ़ेगी। वहीं कंटेनर से अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लें और गेहूं भरने के बाद कंटेनर को आप ड्राई और कूल जगह पर रखें। लेकिन उससे पहले जब आप कंटेनर में गेहूं डाल रहे हैं उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें और उसको अच्छे से सुखा कर तभी आप उसमें गेहूं डालें। इनफैक्ट ये हर चीज़ पर लागू होती है, अगर किसी भी गीली चीज़ में आप खाने का सामान डालोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है, राइट। तो इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए सही तरीके से स्टोर करना बेहद ज़रूरी है। वहीं कंटेनर में तेज पत्ता या नीम के पत्ते आप डालें, और नीम के पत्ते हैं तो वो डाल दीजिए, नहीं तो तेज पत्ता आप गेहूं के बीच बीच में आप फैला देंगे तो इससे ख़राब नहीं होती है गेहूं। वहीं बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सामान सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे ख़राब होता है, सीलन आ जाती है या फिर मॉइस्चर की वजह से ख़राब होने लगती हैं चीज़ें। तो बरसात के दिनों में गेहूँ के कट्टे को आप दीवारों से सटा कर नहीं रखें, अगर आपने कट्टों में कट्टे होते हैं ना उसमें अगर आपने गेहूँ रखे तो दीवार से सटाकर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बारिश के कारण दीवारों में नमी आती है और गेहूँ इससे जल्दी ख़राब होगी। तो कोशिश करें कि आप इसे कंटेनर में ही रखें, लेकिन अगर कंटेनर नहीं है और आपने बोरियों में रखी हुई है गेहूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन बरसात के दिनों में बस ध्यान रखिए कि जहाँ आपने रखा है उसके नीचे आप फट्टा लगा दीजिए, ताकि ज़मीन से डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्ट ना हो, क्योंकि जो ज़मीन होती है उसकी भी अपनी एक नमी होती है। बाकी दीवार की बात रही तो दीवार से आप सटाकर मत रखिए, गेहूँ को आप अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें नीम या तेज़पत्ता डाल दीजिए। तो बस इस तरह से आप गेहूँ को भी स्टोर करके अच्छे से लंबे टाइम तक रख सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। चलिए इसी बात पर इंजॉय करते हैं एक और गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।
1: ये हुई ना बात।

0: बाबा तो नहीं आया बेटी, पुल पे होगा शायद।
1: मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और किन चीज़ों को यानी कि खाने की चीज़ों को कैसे आपको स्टोर करके रखना है जिससे आपका सामान ख़राब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अब जो मसाले हैं भाई वो भी सील जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, है ना, या कई मसालों में तो वाइट फंगस लग जाती है। तो कहाँ, कब, कैसे, किस में स्टोर करना है और किस में नहीं करना है आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा, किस में आपको स्टोर करना है तो आपको ध्यान रखना है प्लास्टिक और कांच का डिब्बा। और शेल्फ लाइफ की अगर हम बात करें तो मसालों को अगर सही ढंग से रखा जाए तो वो एक साल तक सुरक्षित रहते हैं और इसमें कोई किसी भी तरह की कोई ख़राबी नहीं होती है। लेकिन उनका स्वाद और रंग जो है वो केवल 3 महीने तक ही रहता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी मसाला यूज़ कर रहे हैं तो उसको उतना ही लेकर आएँ जितना आप यूज़ कर पाएँ 2-1 महीनों में। या फिर आप अगर परिवार बड़ा है और ज़्यादा सामान लेकर भी आ रहे तो भी आप ध्यान रखें कि 3-4 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाए, राइट। या फिर उतना ही लाएँ जितना कि यूज़ लायक हो। और उससे भी बड़ी चीज़, अगर आप साबुत मसालों को कुटवाते हैं, उसको आप पिसवा कर मसाले तैयार करते हैं, तो साबुत मसालों को ऐसे ही रहने दीजिए। आप पूरे मसाले को, जैसे ज़्यादा मसाले उन सबको एक साथ मत पिसवाइए, आप उतना पिसवाइए या ख़ुद पीसिए जितनी आपको ज़रूरत है, जितना एक आध महीने में ख़त्म हो जाए। ये सबसे बढ़िया तरीका है इसको सही तरीके से रखने के लिए। अब अगर आप इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए गैस और फ्रिज के आसपास अगर गर्म मसाले उस जगह पर रखे हैं तो आप ना रखें, बल्कि ड्राई और कूल जगह पर आप इसे रखें। कोई ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर सही है आप उस जगह पे मसाले को रखें। किचन में इसलिए हमारे यू नो शेल्फ बने होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, आप उसमें रख दीजिए। वहीं दूसरी चीज़, खाना बनाते समय मसालों को सीधे डिब्बे में न डालकर चम्मच से डालें, वरना भाप से मसाले जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा मसाले में एक छोटा सा स्पून होता है, वो सिर्फ मसालों को नापने के लिए नहीं होता है बल्कि उसको खाने के भाप से बचाने के लिए भी होता है। अगर हम डायरेक्टली डब्बा लेकर के मसाले को खाने में डालेंगे तो वो भाप से मसाला ख़राब होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम डब्बे को साइड में रख के स्पून से लेके तब हम डालते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। और साथ के साथ हमें एक मेजरमेंट पता चल जाएगा कितनी मात्रा में हमें कौन सी चीज़ डालनी है। इसलिए भी वहीं मसाले स्टोर करने से पहले डिब्बे को आप धूप में सुखा लें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। धूप में सुखाने से डब्बे पूरी तरीके से सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद ही आप मसालों को उसमें डालें और उसका यूज़ करें। तो बस यही मैं आपसे कहूँगी। और सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप चीज़ें पिसवा कर ना रखें या ख़रीद कर ना रखें, राइट। क्योंकि हम एक साल वाली चीज़ को 5 साल तक नहीं चला सकते हैं, 4 साल तक नहीं चला सकते, राइट। इसलिए उतना ही मात्रा में आप सामान लाएं जितना आप 1-2-3 महीने के अंदर यूज़ कर लें। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ प्रोग्राम के मेरी लाइफ के ज़रिए से। चलिए एंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में कौन सा सामान कैसे स्टोर करना है, क्या नियम होते हैं और कैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं आपको मैं बता रही हूं इस प्रोग्राम में. ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स के बारे में हम बात करें. ड्राई फ्रूट्स भी ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हमारा रख रखाव अच्छा नहीं होता. तो आपको किस में स्टोर करके रखना है, इसके लिए बेस्ट तरीका है कांच का डिब्बा. कांच के जार में आप रखोगे आपका ड्राई फ्रूट जल्दी से ख़राब नहीं होगा. लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट है वो 3 महीने के बाद उसका टेस्ट अगर आप देखें तो थोड़ा सा अलग सा लगता है. इसलिए आप कोशिश करें कि 3 महीने के अंदर अंदर आप जो ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं वो ख़त्म हो जाएं, आप उसका यूज़ कर लें. और प्लास्टिक के डब्बे में भी आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का डब्बा होना चाहिए. या टीन में भी आप रख सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. अगर आपके पास वो है तभी आप इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो सबसे बढ़िया होता है कांच का डिब्बा. कांच के जो जार होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स रखिए. अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ड्राई फ्रूट को अगर 3 महीने से ज़्यादा समय तक आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उन्हें प्लास्टिक के जिप लॉक पाउच में रखकर फ्रिज में रखें, ना कि फ्रीजर में. तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ड्राई फ्रूट्स आपके थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाएंगे. आप जिप लॉक पाउच में फ्रिज में डाल करके रख दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है. इनका टेस्ट भी वैसा ही रहेगा, तो ये आप कीजिएगा. वहीं फ्रिज में छिलके वाले बादाम 1 साल तक और बिना छिलके वाले बादाम जो हैं वो जैसे काजू और अखरोट, ये 3 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं. तो आप जैसे छिलके वाले बादाम हैं, काजू है, अखरोट है, इनकी शेल्फ लाइफ अलग है. वहीं जो छिलके वाले बादाम हैं वो अलग है ना. तो आप सबको ही अगर जिपलॉक में करके फ्रिज में रख देते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ने में थोड़ा इजी, मतलब हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा, राइट. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा चीज़ लेकर ही ना आएँ. 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक का जो सामान है वो मैक्स टू मैक्स, राइट. तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिया आज के प्रोग्राम में. और कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको और गाने कैसे लगते हैं मुझे आप ज़रूर बताइएगा. नंबर है हमारा 8010781078.

सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका और लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। ये प्रोग्राम जहाँ मैं आप लोगों के पास में होती हूँ। टाइम होता है 1 से 3 और ये टाइम होता है जब भावना चली जाती हैं और प्रियंका आती है और प्रियंका के बाद आते हैं आरजे फहीम, लेकिन उनका टाइम है 3 से 5। अभी फिलहाल मैं आपके साथ में हूँ और मेरा टाइम 1 से 3 बजे तक का है। तो इस टाइम पर आपको कोई 90s का गाना सुनना है या कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आप कोई मैसेज आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको बहुत पसंद है और आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर बहुत ही आसान है 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ जो है बहुत ही प्यारा। तो मैं तो अभी अपनी पसंद का सुना रही हूँ, लेकिन आगे आप अपनी पसंद के सुनिए और एक मैसेज करना है सिर्फ आपको, बाकी का काम मेरा। तो चलिए गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना और इसी के साथ ही लेने वाली हूँ आप लोगों से इजाजत। मेरे चैनल का वक्त हो गया है तो आज का प्रोग्राम यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लिसनर्स का, और मैं आ गई हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त लेकर एक बढ़िया सा प्रोग्राम। आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं आज जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो एक मशहूर संगीत निर्देशक, निर्माता रहे और गायक भी रहे, सुंदर सी आवाज़ के मालिक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत दा की। हेमंत कुमार जी एक नया नाम नहीं आपके और मेरे लिए, कई दशकों तक ये हमारे फिल्मी संगीत जगत पे छाए रहे और बहुत ही सुंदर सुंदर गाने इन्होंने हमको दिए। केवल हिंदी ही नहीं, बंगाली, गुजराती, असमिया, तमिल, पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने बनाए भी और गाए भी, और बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया। ये खुद भी बहुत अच्छे सिंगर थे और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करते रहे। दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले। तो दोस्तों आज का ये सफ़र संगीतकार और सिंगर हेमंत दा के नाम पर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी। आप भी कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ हेमंत कुमार जी के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 FM पे दोस्तों, वहाँ फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, हेमंत कुमार जी गायक, संगीत निर्देशक, निर्माता रहे। 26 सितंबर 1989 जो है ये हमारे बीच चले गए, लेकिन इनका जो पैदाइश है वो 16 जून 1920 की है। बनारस जो कि बहुत ही एक कल्चरली बहुत ही एक एनरिच्ड स्टेट है, वो इनका इनका जन्म स्थान है। और इनका पूरा नाम था हेमंत मुखोपाध्याय, और पेशेवर रूप से इनको हेमंत मुखर्जी कहा गया, और उसके बाद हेमंत कुमार के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में गाया, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने गाया, चाहे वो साउथ इंडिया की हो, चाहे ईस्ट की साइड की हो, या फिर हमारे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हो, शायद इन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। और साथ ही रविंद्र संगीत पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार इनको बहुत बार मिला, और नेशनल अवार्ड इनको 2 बार मिले। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनको ईश्वर की आवाज़ का रूप जो है इनको माना गया। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे हेमंत कुमार जी। बिलीव में, जब भी हम इनके गाने सुनते हैं ना, तो पता नहीं फील होता है कि आवाज़ जो है ये किसी के कंठ से, किसी के थ्रोट से इतनी डिवाइन आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो बहुत ही रूहानियत भरी इनकी आवाज़ थी, डिवाइन आवाज़ से ये ब्लेस थे। तो जब इनकी आवाज़ की बात मैं कर ही रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं इनके गाए में कुछ और गाने। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, तुरंत वापस आऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज हम बात कर रहे हैं आपसे मशहूर संगीतकार सिंगर हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों हेमंत जी का जन्म वाराणसी में अपने नाना के घर पे हुआ जो कि डॉक्टर थे। इनका पैतृक परिवार जयनगर मंजिलापुर शहर से आया था और 1900 के दशक में शुरुआत में ये लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए। हेमंत वहीं पले बढ़े और वहीं के स्कूलों में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। बाद में ये भवानीपुर इलाके में मित्रा इंस्टीट्यूशन में चले गए जहाँ इनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय से हुई जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली कवि बन चुके थे। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध लेखक संतोष कुमार घोष से भी दोस्ती इन्होंने कर ली। दोस्तों हेमंत जी ने जब इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए जब ये जादवपुर विश्वविद्यालय में आए और उसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई तो ये कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अपने पिताजी की बहुत सारी आपत्तियों के बावजूद, क्योंकि इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये संगीत के क्षेत्र में आए, फिर भी इन्होंने म्यूज़िक को अपना करियर बनाया। देखिए दोस्तों आजकल लाइव प्लेटफॉर्म्स बहुत है, सोशल मीडिया है, किसी को भी संगीत में अपना करियर बनाना आज मुश्किल नहीं है क्योंकि आजकल कोई किसी ब्रेक की वेट नहीं करता कि अब मुझे कोई बड़ा संगीतकार या कोई सी फिल्म में ब्रेक मिलेगा। आजकल सब म्यूजिशियंस हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो अपना गाना बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और रातों रात मशहूर हो जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था और एक आर्टिस्ट को अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए एक्चुअली रिस्क लेना पड़ता था और यही रिस्क लिया हेमंत कुमार जी ने। फैमिली ने विरोध भी किया लेकिन फिर भी ये अपने विचारों पर, अपने निश्चय पर अटल रहे, संगीत को इन्होंने अपना करियर बनाया। तो छोटा सा यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ गाने और फिर मैं वापस आऊँगी और बात करेंगे इनके प्रारंभिक संगीत करियर के बारे में। सो आप कहीं मत जाइए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, ले रही हूँ एक चाय की चुस्की, आप भी ब्रेक लीजिए, गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उस शो की होस्ट और आपकी दोस्त चांदना, और आज मैं बात कर रही हूँ इस शो में मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, हेमंत कुमार जी ने जो म्यूजिक करियर चुना वो उनका खुद का डिसीजन था। हालांकि परिवार ने बिल्कुल भी शुरुआती दिनों में उनको सपोर्ट नहीं किया, फादर ने सपोर्ट नहीं करा, फिर भी उन्होंने इसी लाइन को चूज़ किया और उनका पहला फिल्मी गाना 1940 में रिलीज़ हुआ। जी हाँ, एक बंगाली फिल्म आई और उसमें उन्होंने गीत गाया। उसके बाद में 1941 में एक और मूवी आई जिसका संगीत दिया हरि प्रसन्न दास ने। ये फिल्म थी निमाई संन्यास हुआ, इसमें इन्होंने गाना गाया। दोस्तों, हेमंत कुमार जी का पहला हिंदी फिल्मी गाना आया 1942 में और मूवी का नाम था मीनाक्षी। उसके बाद में 1944 में इन्होंने इरादा मूवी में गाना गाया और उसके बाद ये गाते चले गए। हेमंत जी को रविंद्र संगीत का अग्रणी प्रतिपादक माना जाता था। बहुत ही खूबसूरत तरीके से रविंद्र संगीत को गाते थे। रविंद्र संगीत के बारे में यहाँ मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगी कि रविंद्र संगीत जो है वो अपने में ही पूरा एक कम्प्लीट म्यूज़िक का स्कूल है। रविंद्र संगीत में घुसना एक बहुत महान चीज़ जिसे मैं मानती हूँ, और रविंद्र संगीत पर अपनी पकड़ बना लेना ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। तो यही संगीत जो है इन्होंने अपने अंदर उतार लिया और बहुत सारी मूवीज़, चाहे वो बंगाली थी चाहे वो हिंदी की थी, उसमें ये गाते चले गए और कहीं ना कहीं ये अपना जो है थोड़ा थोड़ा ये अपने आप को एस्टैब्लिश करते चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं दोबारा ले रही म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आऊँगी और बात करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड की, क्योंकि परिवार के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी हमेशा ऐसे देती हूँ क्योंकि इससे हमको सीख मिलती है कि किसके परिवार में कैसे था, किसने कितनी प्रॉब्लम्स को झेला, किसको कहाँ सपोर्ट मिला, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चलाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आती हूँ और बात करेंगे हेमंत कुमार जी के फैमिली बैकग्राउंड की। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ।
1: जाने वो कैसे

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस शो में आज मैं बात कर रही हूँ मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी की. दोस्तों हेमंत कुमार जी के परिवार की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं. हेमंत कुमार जी तीन भाई थे और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था नीलिमा. इनके छोटे भाई एक बंगाली स्टोरी राइटर थे और इनके सबसे छोटे भाई जो अमल हैं वो संगीत में रचनाएं करते थे और उन्होंने कुछ बंगाली फिल्म में भी गाने गाए हैं. कहा जा सकता है कि देखिए पूरा फैमिली ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड की थी, लेकिन फिर भी जब इन्होंने म्यूजिक की लाइन पकड़ी तो इनके फादर ने इनको अपोज किया. अमल जी ने 1960 के दशक में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशक के साथ कुछ गाने इन्होंने रिकॉर्ड करे, जिसमें सबसे उल्लेखनीय गीत जो है वो एक बंगाली गीत था, जीवनेर अनेका पथ एक लई. और 1945 में हेमंत जी ने विवाह किया एक गायिका थी बंगाली बेला मुखर्जी के साथ. और हालांकि उन्होंने काशीनाथ जी के साथ आगे बहुत सारे लोकप्रिय गीत भी गाए, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत एक्टिव रूप से नहीं बढ़ाया. उनके दो बच्चे थे, बेटे का नाम था जयंत और बेटी का नाम था रानू. और रानू ने भी 1960 के दशक के अंत तक और 1970 के दशक के शुरुआत तक बहुत हद तक उन्होंने भी थोड़ा सा संगीत में अपना हाथ आजमाया. और जयंत जी का विवाह जो हम सब जानते हैं, उनका बंगाली फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जी के साथ उनका विवाह हुआ. और तब मौसमी जी भी बहुत छोटी उम्र की थी जब हेमंत कुमार जी ने उनको अपनी पुत्र वधु के रूप में उनको स्वीकार किया. बहुत लकी मानती हूँ मैं मौसमी चटर्जी को कि इतने कल्चरली रिच परिवार में उनका शादी हुई. और वो एक्टिंग भी करते रहीं, देखिए मतलब एक्टिंग में उन्होंने एकदम स्टॉप नहीं लगाया, काफ़ी सालों तक भी वो आगे एक्टिंग करते रहें. तो ये थी इनकी थोड़ी सी परिवार की, इनका बैकग्राउंड. अब हम बात करेंगे इनके मुंबई शिफ्ट होने का और इनके करियर के बारे में. लेकिन लेकिन लेकिन सुनेंगे कुछ इनके गाने और ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त, और लेके आई हूँ ये प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है हेमंत कुमार जी एक वो शख्सियत थे जिनकी आवाज़ जो थी वो रूहानियत से भरी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और 1940 के दशकों में इन्होंने गाना शुरू करा, 1950 के दशक तक आते आते इन्होंने अपनी स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत कर ली थी और इन्होंने बहुत सारे

चंडालिका और ऐसी बहुत सारी जो इन्होंने थिएटर में काम किया जिसमें जो पुरुष आवाज़ थी उसका इन्होंने जो है बीड़ा उठाया और अपनी आवाज़ इन्होंने वहाँ प्रदान करी। और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में हेमंत का जो योगदान था वो बहुत कम हो गया था। हालांकि ये काम करते रहे लेकिन थोड़ा सा जो करियर का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया, लेकिन तब तक ये अपना बहुत अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे और बहुत सारे इनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार भी इनको मिले, चाहे वो नागिन मूवी के लिए मिला या निमंत्रण के लिए, 20 साल बाद, पलटक, मुनिहार, बालिका वधू, इन सभी के लिए इन्होंने पुरस्कार जो है वो जीते। 1970 में इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए इनको इनका नामांकन हुआ लेकिन वो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। 1987 में एक बार फिर पद्म भूषण के लिए इनका नाम जो है वो भेजा गया लेकिन एक बार फिर उन्होंने उस अवार्ड को अस्वीकार कर दिया। रीज़न क्या रहा ये बात कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी झोली में बहुत बहुत बहुत सारे अवार्ड्स हैं। दोस्तों 1980 में हेमंत जी को दिल का दौरा पड़ा और उससे इनका जो गाने की क्षमता है बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हुई और ये ज़्यादा गा नहीं पाए। और 1980 और 90 के दशक में इनका जो गाना है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नीचे को आ गया। और 1989 में एक बार फिर इनको दिल का दौरा पड़ा और इनकी जो है मृत्यु हो गई। हेमंत जी आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन अपनी प्रतिभा से, अपनी रूहानियत भरी आवाज़ से आज भी इनके जो गाने हैं वो हमारे अंदर गूंज रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं लेती हूँ अपनी आवाज़ को विराम करती हूँ। हेमंत जी का जो उनका जो पूरा लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको सुनाने की बहुत छोटे से मैं कोशिश करी तो यही सीख मिलती है इनके लाइफ टाइम से हमको कि एक ऐसा करियर जिसको उन्होंने खुद चुना, एक ऐसी आवाज़ जो इनको भगवान ने दी और एक ऐसा करियर जिसमें बहुत लोगों ने इनको फिर आगे सपोर्ट किया, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया और इनकी जो ज़िंदगी जो है वो सफलता के चरम सीमा पर पहुंची। रेडियो मानवरचना के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। और घड़ी की जो टिक टिक है वो मुझे कह रही है कि जाने का समय हो गया है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ साइन आउट। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सायोनारा। आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार है और इस शो के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये शो हमारा बहुत एक स्पेशल इनिशिएटिव है। इसके पीछे एक मोटिव है हमारा कि हमारे देश में एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक प्रॉपर स्मूथ स्ट्रक्चर्ड वे में जो काम करता है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को पता ही नहीं होता उन चीज़ों के बारे में, हमारे लिए क्या राइट्स हैं। अगर आपके साथ कुछ होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आपके साथ कुछ गलत करती है या आपकी कोई यूएसपी है, आपकी आइडेंटिटी है, कोई इंसान उसको स्टील कर लेता है डिजिटल वर्ल्ड में, तो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं तो कानून आपको क्या सहायता दे सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब यहां पर हम लोग ढूंढते हैं इस एक शो में। यह है रेडियो मानव प्रश्न 107.8 का बहुत खास शो। आज के हमारी मेहमान हैं मिस आकांक्षा, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं एट मानव प्रश्न यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल एक्सप्रेशन। इसमें एक स्पेशल केस है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कुछ टाइम पहले हुआ था कोल्हापुरी चप्पल का, जब प्राडा ने बिना क्रेडिट दिए कोल्हापुरी चप्पल अपने वहां पर मैन्युफैक्चर करी और उसको बेचना शुरू कर दिया। ना कोई क्रेडिट दिया गया, ना कोई नाम दिया गया, ना ही किसी से सलाह मशवरा किया गया। उसके बाद मामला सोशल मीडिया पर आया, पूरा एक विवाद उठा। उसके बाद फाइनली फिर प्राडा ने कोल्हापुर में आकर के लोगों से बात करी और कोलैबोरेट करके अब कोल्हापुरी चप्पल जो है ऑफिशियली लॉन्च की गई है। So, ये एक केस था, लेकिन ऐसे और बहुत सारे केस हैं। जैसे कि अमेरिका में एक टर्मरिक का केस हुआ था कि उन्होंने अपने यहां पर हल्दी को पेटेंटेड कराया था। अब भाई देखिए, हमारे यहां तो सदियों से चली आ रही है हल्दी, जो हमारी हर एक चीज में डाली जाती है, हमारी सब्जियों में डाली जाती है, दूध में डाल के पी जाती है, तो ये हमारा राइट है। लेकिन वहां पर उसको पेटेंट करा लिया गया, तो क्या हुआ होगा उस केस में? ये सवाल हम आज इस शो में ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारी मेहमान का, जो कि हैं मिस आकांक्षा। हाय मैम, वेलकम टू आवर शो।
4: हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम।
3: सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, प्लीज हमें बताइए सबसे पहले तो कि ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल एक्सप्रेशन, जो ये हम दो शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है? इनकी थोड़ी डेफिनेशन दीजिए, कानून क्या समझता है इनसे?
4: सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ट्रेडिशनल नॉलेज इज स्किल्स, नॉलेज और एनी प्रैक्टिस दैट हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एनी थिंग दैट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, योगा, आयुर्वेदा, एनी हर्बल रेमेडी दैट आर ग्रैंड मदर गिव्स अस, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। नाउ कम्स ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। As the name suggests, traditional knowledge is about knowledge. Traditional cultural expression is whatever the expression or the artist frames into of that knowledge. That is the cultural traditional cultural expression. For example, Bharatanatyam or Bhangra, Pashmina shawls, all that are expressions.
3: ठीक है। अगर मैं बात बोलता हूँ कि हमारे पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज है और कल्चरल एक्सप्रेशन है, जो कि ट्रेडिशनल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं कानून के पर्सपेक्टिव से इसको देखूँ तो डेफिनेशन तो मुझे पता लग गई, बट ये कैसे डिफाइन होता है कि ये भारत का है? या एक एग्जांपल के तौर पर जो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि भांगड़ा पंजाब का है, ठीक है, तो ये लेकिन अगर कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा कि ये हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, एक ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन है?
4: सर, मैं शुरू से बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन फॉल करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फ्रेमवर्क है, उसके काफ़ी एक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ कुछ ये ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्रेशंस फॉल करते हैं। वो एक्ट्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स और उनके स्पीशीज आ जाती हैं। देन एक आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ जाता है, जिसके अंदर आपने मेंशन किया कोल्हापुरी चप्पल का, तो उसको इंडिया के अंदर ऑलरेडी जीआई मिला हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ऐसे ही कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट लॉ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पेटेंट लॉ के अंदर क्या कहता है कि कुछ भी या तो तीन कंडीशंस होती हैं, या तो वो न्यू होना चाहिए, ऑलरेडी नोन नहीं होना चाहिए, और कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। लेकिन हमने डेफिनेशन में ही देखा कि कल्चरल एक्सप्रेशन तो जनरेशन से चल रहा आ रहा है, तो एक फ्रेमवर्क नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत सारे हैं जिसके अंदर कुछ कुछ एस्पेक्ट्स फॉल करते हैं।
3: ऑलराइट। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके बात करना चाहूँगा, मैं अगर डिशेज की बात करता हूँ, लेट्स से कि हरियाणा या पंजाब की कोई फेमस डिश है, ठीक है, वो कहीं पर पेटेंटेड नहीं है, ओके, हम लोग सदियों से उसको खाते आ रहे हैं। अब अमेरिका में अचानक से कोई इंसान उसको उठा के बेचने लग जाए, कमर्शलाइज कर दे उसको अपना नाम दे के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। इस केस में क्या हो सकता है, कैसे मैं क्लेम कर सकता हूँ?
4: सबसे पहले तो आप उधर जाओगे कि ये पेटेंट को रोकना है, पहले तो हम उसको स्टॉप करवाते हैं इंजंक्शन डलवा के, उसके बाद हम उसके अंदर प्रूफ देंगे कि कैसे वो हमारी जनरेशन्स के अंदर है। ऑलरेडी हम प्रूफ देंगे कि हमारे इतने टाइम से चला आ रहा है ये है, वो प्रूफ वहाँ पर जाकर उनका जो भी कॉपीराइट किया होगा या पेटेंट उन्होंने बनवाया होगा वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो उस तरीके से हम जो भी वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं या कमर्शियल बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं उसके, उसको हम हिंडर होने से बचा सकते हैं।
3: बट अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो हम प्रूफ कैसे, कोर्ट कैसे मानेगा?
4: सर कोर्ट, एक तो सबसे पहले इसके अंदर ये है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन इट एंड हैज मेड अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो ऑलमोस्ट 1820 फॉर्मुलेशंस एंड ऑल दिस ट्रेडिशनल नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन फीडेड इनटू दैट डाटाबेस, और इफ इट्स नॉट देन यू कैन फीड इट इनटू द डाटाबेस, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस, तो आप पहले जाकर तो वही करवा लो, और अगर नहीं है तो एविडेंसेस प्रूफ्स के थ्रू कि आपको पहले से ये कॉमन नॉलेज है, ऐसे हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ना कि जनरेशन से चलता आ रहा है, कस्टम्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी कितना तरीके से प्रूफ हो जाता है। जैसे टर्मरिक का केस है कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, रिसर्च हुई हुई है, तो आप उन एविडेंसेस के थ्रू जैसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं आप कर सकते कि ये हमारे यहाँ का है।
3: ऑलराइट। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्य में जयते, फील गुड फील।

पुरस्रार चंदन का दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है। हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: को रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूट करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, सजीवा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: वेलकम बैक, मैं सागर, शो चल रहा है सत्य में विजयते। आज के हमारे मेहमान हैं यहाँ पर मिस आकांक्षा, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की प्लस ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन की। खाली बात नहीं कर रहे हैं, उसकी लीगल फ्रेमवर्क को समझने की यहाँ पर कोशिश है। अभी तक हमने बेसिक समझने की कोशिश करी है, थोड़े नुआंसेस जानने की कोशिश करी है कि इंटरनेशनल लेवल पर चीजें काम कैसे करती हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि लॉ ओल्ड ट्रेडिशंस की केयर क्यों करता है? लाइक व्हाई शुड द लॉ केयर अबाउट द ओल्ड ट्रेडिशंस?
1: सर, एक लाइन में बोलूँगी कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसे ट्रेडिशंस जो है ना, उसको आप ट्रेडिशन को कस्टम की तरह वैसे ना देखकर उसको एक वैल्यूएबल एसेट की तरह देखो, तो वो आपको बेनिफिट्स रीप किए करेगा। तो जैसे हम लॉयर्स बोलते हैं कि जैसे नॉलेज इज़ पावर, बट ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ इनहेरिटेड पावर। तो दैट इज़ द past customs and everything which will protect our future. So we need to protect our benefits. So hence the people and the law both should care about it.
0: So amazing. बहुत बार हम patents के बारे में सुनते हैं, क्या traditional knowledge को patent किया जा सकता है? अब
1: sir, अगर सच्ची का reply है तो usually no, but there are always some exceptions. तो इसके अंदर टर्मरिक केस का एक एक्सेप्शन है, जिसके अंदर पेटेंट के अंदर तीन कंडीशंस होती हैं उसको पेटेंट करने की। पहला, कुछ न्यू होना चाहिए, दूसरा इनोवेशन होना चाहिए, तीसरा कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी नोन नहीं है। तो पर अब आपने पूछा कि ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे करें। ट्रेडिशनल नॉलेज तो हमारी जनरेशन से चलती आ रही है। एक ऐसा टर्मरिक केस हुआ जहाँ पे US ने उसको पेटेंट करा कि हमने ये न्यू इनोवेशन करी है, फिर उसके अंदर इंडिया ने उसको कैंसिल करवाया, रजिस्टर करी कंप्लेन एंड प्रूफ दिए कि ये ऐसे हमारा ऑलरेडी जनरेशन से चलता आ रहा है। उस केस में इंडिया को उसका पेटेंट मिल गया। बट टू से इट इन लेमैन लैंग्वेज, नो, एवरी ट्रेडिशनल नॉलेज विल नॉट गेट अ पेटेंट, बट दैट इज नॉट द स्ट्रिक्ट रूल।
0: अगर पेटेंट नहीं मिलेगा तो फिर तो कोई भी उसको क्लेम कर सकता है।
1: सर, क्लेम हो रहा है, और ये एक लूपहोल है कह लो कि एक हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन चाहिए। अभी हमारे पास छोटे छोटे अलग लॉज हैं, जैसे पेटेंट लॉ, कॉपीराइट लॉ और बायोडाइवर्सिटी लॉ, GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो वो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को करते हैं।
0: ओके, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि क्या ट्रेडिशनल नॉलेज एक्चुअली पैसे कमा के दे सकती है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में?
1: बिल्कुल सर, इसके अंदर प्राइम एग्जांपल है योगा का, जो आजकल इतना ज़्यादा चलन है बाहर की कंट्रीज में, और हमारे यहाँ तो कितने सदियों से योगा का योगा बहुत ज़्यादा, एवरीबडी नोज एंड डू योगा इन देयर होम। हर हमारे तो कितने दादा परदादा भी करते हैं, और उधर तो प्रॉपर अब स्पाज, योगा सेंटर्स और ऐसे करके दे आर चार्जिंग डॉलर्स एज फीस। सो बिल्कुल उसका कमर्शियली उसको आप कर सकते हो और बना सकते हो। तो ट्रेडिशनल नॉलेज बिल्कुल आपका ऐसे हो सकती है। अब जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, प्राडा ने उसको लॉन्च किया तो उसने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बेचा, जो हमारे यहाँ पे कुछ हज़ारों में ही बिकती है। तो बिल्कुल उसका कमर्शियल वैल्यू है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए।
0: सो अमेजिंग। बट अगर यहाँ पर मैं इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करूँ, इसी पर्टिकुलर चीज को, फॉर एग्जाम्पल योगा पेटेंटेड नहीं है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, और US में कोई इंसान है जो अपना क्लेम करता है कि हम योगा लेकर के आए हैं आपके लिए, और उसको कमर्शियल लेवल पर लेकर के जाता है, पैसे कमाता है उससे, इन दिस केस हम लोग कुछ कर सकते हैं?
1: सर, ऐसा हुआ था कि योगा के लिए कंट्री वॉज आस्किंग फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन सम योगा टेक्निक्स। तो अगेन इंडिया सेड दैट वी हैव अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वेर इन वी हैव द इंटायर डाटा बेस वेर इन हमारे सारे योग आसन हैं जो हमारे जनरेशन से चलते आ रहे हैं, और वो दिखाया तो वो नहीं कर पाए। बट इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर नॉट देयर येट, बट इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही अंधेरा है।
0: सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस की जहाँ पर वो मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं।
1: यस, आफ्टर ऑल वी आर अ डेवलपिंग कंट्री।
0: या श्योर। सो दिस नॉट वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं जाइएगा, मैं जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हम सागर, और उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट अभी तक जितना यहाँ पर बात करी है हमने आप लोग समझ पाए हैं और हम आपको समझा पाए हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

0: सजेस्ट हो, आपको मजा आ रहा है, अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते रेडियो मधुबन 107.9 FM। आज के हमारे मेहमान है मिस आकांक्षा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन की। अभी तक हमने बात करी है कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों की, लॉ क्या बोलता है। अगला मैं केस समझना चाहूंगा यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल का, जो प्राडा ने लॉन्च किया बिना कंसेंट लिए यहाँ पर। इट वॉज वेरी रॉन्ग एक्ट, बट कानून की नजर में क्या है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए।
1: सर, सबसे पहले तो एक प्राडा का वॉक हुआ, उसके अंदर उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी। दे डिड नॉट नो कि यहाँ पर इंडिया में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर इसके अंदर सोशल मीडिया का जो पावर है वो दिखा, कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी आई, उसको हाईलाइट हुआ, लाइमलाइट हुआ। उसके बाद ये लॉ में जाकर आगे केस बना दैट दिस बिलोंग्स टू अस, इट इज़ अ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर अस, एंड ये एक महाराष्ट्र और कर्नाटका का ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और ये करते हुए उसको लीगल प्रोटेक्शन मिली, और बाद में जाकर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई। इनफैक्ट उनके कुछ इम्प्लॉयज़ और टीम यहाँ पर आकर उन्होंने पूरा प्रोसेस भी देखा, और जो क्रेडिट नहीं मिला था वो क्रेडिट हमको मिला।
0: ठीक है, बट क्या ये बात खाली क्रेडिट तक रुकती है या और भी चीज़ें हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें?
1: सर, इसके अंदर सारा जो एंड में होता है वो मॉनेटरी बेनिफिट और क्रेडिट की बात होती है, कि आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो मेरे नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ फैमिली रेसिपी, यू आर यूजिंग इट, मेकिंग इट एंड रीपिंग द बेनिफिट्स एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गिव मी अ लिटिल क्रेडिट एंड देन शेयर बेनिफिट। हाउ विल यू शेयर बेनिफिट? बाय डिवाइडिंग इट, चलो 50-50 कर लेते हैं, मेरे रेसिपी है। That is the actual key here, कि आपको उसके benefits को share करना है, exploitation नहीं होनी चाहिए।
0: बट अगर यहाँ पर मैं कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो कोई एक आर्टिस्ट नहीं है ना, कोल्हापुरी चप्पल इज एन आर्ट फॉर्म जो वहाँ पर बनाई जाती है, डिजाइन है वो, किसको जाएगा बेनिफिट?
1: सर, उधर के जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर होता है दार्जिलिंग टी है, तो वो पूरे दार्जिलिंग एरिया के अंदर जो उधर काम करते हैं लोग, उन सब के लिए बिलोंग करती है। तो उधर के जैसे कुछ ट्राइब्स होते हैं जो वर्कर्स हैं, उन सब के लिए वो।
0: तो क्या सरकार को दिया जाएगा या इन टर्म्स ऑफ टैक्स दिया जाएगा या प्रॉपर पैसा ही दिया जाएगा?
1: पैसा ही दिया जाएगा सर, स्पेशली उन लोगों को जो उस वो काम कर रहे हैं।
0: ओके, उन लोगों तक वो पैसा जाएगा, तो जितने भी लोग कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, मेकर्स हैं, सबके पास वो पैसा डिवाइड होगा। ओके, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। अगला पॉइंट मेरे यहाँ पर रहेगा कि इंडिया कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल एक्सप्रेशन को, भारत क्या कर रहा है उसके लिए?
1: सर, इंटरनेशनली देखें तो ये ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट भारत ने वो साइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो जो गाइडलाइंस देते हैं वो जो भी मेंबर्स हैं उनको फॉलो करनी होती है, तो इंडिया वो उसका मेंबर है, उसको वो फॉलो करनी होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने उनकी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए GI का एक्ट बनाया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे एक्ट्स बनाए, बायोडाइवर्सिटी, लेकिन अभी तक कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई एक्ट नहीं है। इसके कुछ कुछ सेक्शंस इन एक्ट्स के अंदर हैं जिससे इंडिया को प्रोटेक्शन मिल रही है, जैसे पेटेंट के अंदर है, कॉपीराइट के अंदर क्या होता है कि आर्टिस्टिक वर्क, क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन, जो कि एक एक्सप्रेशन आप कर रहे हो कि किसी भी चीज़ को, वे ऑफ डूइंग है, वो प्रोटेक्ट हो रहा है, तो वो कॉपीराइट में वो प्रोटेक्ट हो जाता है, जैसे भांगड़ा है या कोई डांस है, कोई सॉन्ग है, वो चीज़। लेकिन इंटायरली एक लॉ नहीं है जो ट्रेडिशनल नॉलेज या कल्चरल एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करती है।
0: ओके, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का, लेट्स से कि नगाड़ा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, US में अगर नगाड़ा यूज़ किया जाए कहीं, या यूरोप में किया जाए कहीं पर किसी गाने में, किसी फिल्म में, उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या हम क्लेम कर सकते हैं? पहली चीज़ तो डू वी क्वालिफाई फॉर दैट पार्ट?
1: यस सर, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जनरेशन से चलता आ रहा है और ये हमारे एरिया का है, और इसको मतलब बिल्कुल ये हो सकता है। हमारे पास उसका डाटाबेस नहीं है, लेकिन प्रूफ्स तो ज़रूर हैं कि ये हमारे एरिया का ही है। एक्चुअली आई वुड वांट कि द इंटायर वर्ल्ड टू डू भांगड़ा, बट विद अ लिटिल क्रेडिट दैट दिस हैज कम फ्रॉम दिस प्लेस, सो 100% वी कैन क्लेम।
0: ओके, और इस केस में अगर मैं क्लेम करता हूँ जाके कि यूरोप में नगाड़ा यूज किया गया किसी फिल्म में, तो मुझे यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा,
1: जी, और सर मैं से होता है कि गवर्नमेंट जाकर करती है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल विल नॉट डू इट।
0: हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैं उसी रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर दैट पार्ट,
1: इसको फॉलो करते हुए।
0: एंड माय लास्ट, हाँ प्लीज प्लीज
1: सर, बिकॉज इंडिया इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंट्रीज विच आर वेरी रिच विद ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एवरीथिंग, सो वी रियली डू नीड टू प्रोटेक्ट इट, एंड आई फील दैट हमारी गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफ़ी अवेयर है। अभी जैसे भारत का कोई कॉन्क्लेव भी हुआ जिसके अंदर सारे ट्राइब्स वगैरह और इन सब का ऐसे हुआ कि हैंडक्राफ्ट होना चाहिए, बहुत मेलास भी आ गए हैं, तो मोर एंड मोर अवेयरनेस तो हो रही है, लेकिन एज आई सेड कि लॉन्ग वे टू गो।
0: ओके, and the last question of the show would be why should young generation care about this?
1: Sir, I think that हमारे जो भी past का जितने भी हमारे को system है या जो भी हमारे traditions हैं उनको हमको उससे भागना नहीं चाहिए, और वो हमारा part and parcel है, और they are a source of our future and a light for our future। और अगर ये भी समझ नहीं आता तो मैंने बोला कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यू कैन लुक एट इट एज अ मॉनेटरी एंड अ वैल्यूएबल एसेट दैट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स एंड गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर।
0: ऑलराइट, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप कहना चाहते हो, प्लीज फील फ्री।
1: सर मैं तो यही बोलूंगी कि नॉलेज जो है बहुत बड़ा, जैसे मेरी, मैं जब स्कूल में थी तो उधर का जैसे आपका फील गुड फील लाइव है ऐसे था, नॉलेज इज पावर, तो आई फील दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अब उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और आई फील द जेंजीज शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कि हमने हल्दी का दूध पी रहे हैं तो सो यू, बट दे शुड अप्रिशिएट द रिसर्च एंड द जनरेशनल द रेमेडीज एट इट कमिंग फ्रॉम एंड हर्बल, कितनी सारी रेमेडीज है, हमारी दादी कितने हमारे को बता देती हैं कि अजवाइन ले लो फॉर एसिडिटी, और ऐसे जीरा ले लो फॉर समथिंग, इसको ऐसे चोट पे लगा लो तो ठीक हो जाएगा, तो उन सबको हमें अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना चाहिए।
0: सो अमेजिंग, एंड वी इंडियंस शुड केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये हमारी रूट्स हैं, हमारी पहचान है, एंड अगर हम इनको नहीं पहचानेंगे, हम इनके लिए अगर थोड़े से अवेयर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, क्योंकि इनमें एक्चुअली बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं, जो आपकी बॉडी को ठीक करती हैं, आपके माइंड को ठीक करती हैं, एंड उन्हीं सब चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया जाता है, उनसे पैसे कमाए जाते हैं। सो दिस इज़ आवर राइट, वी शुड कमर्शलाइज इट, और वो नहीं कर सकते एटलीस्ट हम उसको प्रोटेक्ट जरूर करें। सो दैट्स वाई वी शुड केयर अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर, इट मीन्स अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच फॉर।
1: थैंक यू सर।
0: ऑल दोस्तों, वक्त अपने शो यहाँ पर कंक्लूड करने का, आज हमने ट्रेडिशनल नॉलेज की और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करी, एंड आई जस्ट होप आपको मजा आया होगा। अगेन आई एम सेइंग कि आपकी और मेरे, हमारे जीवन की बात हो रही है, हमारे आसपास जो हमारे समाज में चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, हमारे लिए ही बनाई गई हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रोटेक्शन सेकंड पार्ट आता है, फर्स्ट स्टेप आता है अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए पहले तो ये चीज़ें हैं, ये राइट्स आपको कानून देता है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आज के शो से ये मैं आपको समझा पाया हूँ। अब इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे। This

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं बिंदास भावना, फिर से ले रही हूं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ, ऐसी महिलाओं को आपके पास लेकर आती हूँ, ऐसी महिलाओं की कहानी आपको सुनाती हूँ जो अपने आप में सशक्तिकरण का दूसरा नाम है। और अगर मैं बात करूं सशक्तिकरण की, तो ये एक ऐसी चीज है जो हर महिला के पास है, बस इस पोटेंशियल को वो रियलाइज नहीं कर पाती हैं। सो इसीलिए इस कार्यक्रम की जरूरत है और इसीलिए महिलाओं को समय समय पर ये याद दिलाने की जरूरत होती है कि उन्हें सशक्त होना पड़ेगा, जिससे एक सशक्त समाज बन सके। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, ये मेरा बिल्कुल ऑनर है कि वो हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बात कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ वर्तिका द्विवेदी जी से। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर हैं मिट एशिया एग्जीबिशन की, एक बहुत ही जानी मानी पब्लिशर हैं, साथ के साथ टेडेक्स स्पीकर ये रही हैं, लेकिन सही मायने में एक सशक्त महिला हैं, एक डायनेमिक वुमेन हैं। और हम इनका स्वागत करना चाहेंगे रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। नो, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और ये मौका मुझे मिल रहा है कि मैं वुमेन महिलाओं के लिए अपने लाइफ से कुछ पॉइंट्स निकाल के कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू
0: वर्तिका जी। इस कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। और वी नाम से हम जब वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो इसका दूसरा तात्पर्य या इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, वी यानी वुमेन स्टैंडिंग टुगेदर एज वी। और अगर एक महिला दूसरी महिला के साथ आ जाए तो वो दुनिया बदल सकती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक महिलाओं ने इस चीज़ को कम रियलाइज किया है। इस कार्यक्रम का एक पहला सवाल है जो मैं अक्सर हर महिला से पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? आप कैसे परसीव करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को?
1: देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं एक वुमेन होने के नाते भी एंड साथ में वेड एशिया जो वुमेन इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन डिज़ाइनर्स जो है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म चलाती हूँ द लास्ट 10 ईयर्स से, उसके नाते में ये बोलना चाहूँगी, आई ऑलवेज फील दैट वुमेन आर एक्चुअली एम्पावर्ड।
0: यस,
1: दे डू नॉट नीड एम्पावरमेंट एज सच, दे नीड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर एम्पावर्ड। उनका जो वो एम्पावर्ड है, उनका ये पहचान, उनको पता होना, मैं बोलूंगी ये है एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी।
0: मतलब देखिए वर्तिका जी, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कुछ महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब या उसकी डेफिनेशन जो है पैसा होती है। उन्हें लगता है यार मेरे पास पैसा होगा तो आई एम दी ओनर ऑफ माई लाइफ। कुछ महिलाएं हैं जिनके पास अबंडेंस में पैसा है, लेकिन उस पैसे को यूज़ करने के लिए या उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए उनके पास परमिशन ही नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अगर हमें ये फ्रीडम मिल जाए ना कि मैं जो चाहती हूँ वो कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए सशक्तिकरण होगा। शायद कुछ महिलाएँ जो कॉरपोरेट्स में हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी या एक बेटर डेजिग्नेशन, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुरुषों के पास है, ज़्यादातर पुरुषों के पास मिलती है। सो उनके लिए शायद वो एम्पावरमेंट होगा। हर किसी के लिए, हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये बड़ी पर्सनल और बड़ी अलग है। बट आई टोटली बिलीव कि हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट का डेस्टिनेशन है वो एक ही है, व्हेन शी हैज़ द राइट टू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और उस राइट के साथ वो उसे कर पाए। इस बात से आई एम श्योर यू विल रेजोनेट।
1: एब्सोल्युटली भावना जी, एब्सोल्युटली।
0: So, दोस्तों वक्त एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जारी रहने वाली है आपके साथ। और इस कॉन्वर्जेशन में फिलहाल मेरे साथ हैं वर्तिका द्विवेदी। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और उतने ही प्यारे से एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्तिका जी बैठी हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, एक पब्लिशर हैं, एक बहुत ही अकम्पलिश्ड टेडएक्स स्पीकर भी हैं, लेकिन इनके जीवन की अपनी एक कहानी है। वर्तिका जी, आपने इस दुनिया में इतना नाम कमाया है, मतलब टुडे वेड एशिया इज अ नेम। और अगर देखा जाए तो आपके जो मेट एशिया एग्जीबिशंस हैं ये पूरे विश्व में फेमस हैं। बट ये जो जर्नी आपके लिए रही, दिस वाज नॉट एट ऑल एन इजी जर्नी। सो अगर मैं आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी की बात करूं, सो आपने शुरुआत की ऐसी उम्र से जिस उम्र में शायद बच्चे अपने लिए सब्जेक्ट क्या चूज करना है उसका डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, वहां से आपने शुरू किया और आज आप यहाँ तक पहुंची। सो आपके इस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगी लोगों को?
1: देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सफ़र हम चुनते नहीं हैं, हमें मिलता है बहुत कुछ
0: जी।
1: लेकिन जो आपको मिलता है उससे आप क्या बनाते हैं वो आप बनते हैं। तो मैं जब 9 साल की थी, मेरी माता जी, मेरी मदर की डेथ अचानक से हो गई, मतलब इट वाज अ प्रेगनेंसी केस एंड भाई 7 दिन का था, मॉम वाज नॉट फाइन एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड
0: जी
1: बट इट हैपेंड। तो जब माँ का डेथ हुआ, पापा वॉज ऑल टोटली, मतलब उनका जो हालत था, जहाँ तक मुझे याद है कि पापा किसी से बात नहीं करते थे, वो बदल गए थे कम्प्लीटली, उनको कुछ भी किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियस है, सबका टेंशन इस तरफ था कि 5 बच्चे, मैं सबसे बड़ी हूँ, और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें अपने पापा का ख्याल रखना है, तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना है। मैं खेलने कूदने वाली लड़की अचानक से जैसे कि एक ही पल में बड़ी हो गई
0: जी।
1: और जब बड़े हो जाते हैं और कुछ पता नहीं होता है तो उस बच्चे के साथ क्या हाल हुआ होगा आप समझ ही सकते
0: हैं।
1: कुछ नहीं पता मुझे कि मैं क्या, किस तरह से मैंने उस वक्त को समझने की कोशिश किया, अपने आप से जूझते हुए, समाज से जूझते हुए, गिरते पड़ते, मैं जैसे लाइफ का सिचुएशन था वैसे ही मैं ढलती गई। एक पल ऐसे आया जब पापा का भी डेथ हुआ, और उससे पहले बल्कि मैं ये समझ गई थी कि या तो मेरा रहने का कोई मकसद नहीं है लाइफ में, और या तो बहुत बड़ा मकसद है, क्यों ना मैं बड़े मकसद की तरफ चुनूं। कर पाऊं तो ठीक है, नहीं तो क्या है, कोशिश तो कर सकती हूं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती हूं अपने भाई बहनों को, और छोड़ के मिलेगा भी क्या अगर मैंने अपने लिए कुछ बना भी लिया। मैं बहुत पहले सोच चुकी थी, बहुत पहले समझ चुकी थी कि ज़िंदगी सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है। पैसे से आप क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ज़िंदगी से क्या बनाते हैं, जो चीज़ आपको मिला उससे आप क्या बनते हैं, राइट, वो मैटर करता है। तो मैं ये समझ गई थी कि मैं कुछ भी करूँ अपने भाई बहनों से, अगर मैं अपने लिए सिर्फ देख लूँ, आसान लगता है ना किसी को, शॉर्टकट लेना इजी लगता है और संभव लगता है। मैंने कहा कि मैं संभव क्या है उस पे जाऊं तो मैं कुछ भी मुझे लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मैं अगर कर पाऊं उनके लिए, भले ही असंभव है, लोग मुझे पागल बोलते थे। जब मैं 17 साल की थी मैंने सोचा कि मैं कहीं और चलती हूँ जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर, मेरे से जो छोटी सिस्टर है, मैंने उंगलियों को, 4 उंगलियों को उसके सामने रखा और मैंने कहा, देख ऐसा है कि मुझे निकलना होगा, लेकिन कहाँ निकलना होगा अब चुनते हैं। शायद 2 मिनट में हमने डिसाइड किया था कि चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कहाँ जाना है। तो जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन था उस टाइम के हिसाब से, कि मुंबई में हमने सुना था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, एक्टर्स बनने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। हमारे बच्चों जैसे जो दिमाग है उसमें जो समझ में आया, फिर हमने चेन्नई कहा, लैंग्वेज का इशू है, कलकत्ता हमने सुना था कि बहुत सारा यू नो इंडस्ट्रीज वहाँ पे उतना नहीं है, एंड दिल्ली, हाँ ये तो राजधानी है, सुन के ही लग रहा है कि कुछ होगा वहाँ पे, बढ़िया होगा शायद कुछ। तो उस सोच के साथ बहुत ही इनोसेंट सोच के साथ, क्योंकि ये पता था कि जहाँ हम हैं वहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकते। प्लस लड़कियाँ थे तो लोगों को भी ये लगता था कि भाई लड़कियाँ हैं, इनके शादी करवाना है, इनका ये है वो है, इतने पैसे चाहिए होंगे। हमें उस सोच से बहुत बहुत दूर जाना था, और एक जन जाएंगे तो दूसरों को भी खींच के लाएंगे, वो थॉट था। थॉट वॉज वेरी वेरी क्लियर, बट क्या आगे मिलेगा उसको सोचने से बहुत घबराहट सी होती थी, क्योंकि रास्ता आगे का नहीं दिख रहा है, उतना दूर का कैसे सोचे। लेकिन कदम तो बढ़ाना है, डर तो नहीं है बिल्कुल भी। ये बात हम सारे भाई बहन समझ चुके थे, भले बहुत छोटे थे, भाई तो समझ ही सकते कितना छोटा था, तो ये बात समझ चुके थे हम कि हम एम्पावर्ड खुद अपने मन में पहले होते हैं, फिर हम एम्पावर्ड वाले काम करते हैं। बिना काम किए, बिना फियरलेस हुए, बिना आगे बढ़ाए कदम, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई आके आपके लिए करके देगा ये कभी सोचना नहीं चाहिए। भावना जी, आपने एक अपने कुछ बताया था पहले कि ये विमेन जिनको पैसा मिलता है फादर से, ब्रदर से, मान लीजिए किसी से भी मिलता है, क्या वो एम्पावर्ड होते हैं, फील करते हैं? आई डोंट नो, आई एम डाउटफुल। क्यों? एम्पावर्ड होना फाइनेंशियल डिसीशंस नहीं आपको दिलाता है। आप क्या अप्रूवल ले रहे हो फॉर द मनी? इफ यू आर टेकिंग, अगर आप अप्रूवल ले रहे हो पैसे के लिए, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, भले आपके पास पैसे हैं। ये मैं सोचती हूँ और ये मेरा कहानी है।
0: सच ए ब्यूटिफुल स्टोरी, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना वर्तिका जी की। आप इमेजिन करिए, एक छोटी सी लड़की 17 साल की उम्र में दिल्ली आती है, ये सोचकर कि चार भाई बहन हैं, सबसे छोटा भाई है जो बिल्कुल छोटा है, और यहाँ आकर इन्हें अपना बिजनेस खोलना है। 17 साल की उम्र में ये सोचकर आई थी, नागालैंड जैसी जगह से जहाँ लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। छोटी उम्र में माता और पिता दोनों चले गए, घर नहीं था, और जो अलग अलग कहना चाहिए सिबलिंग्स हैं, क्योंकि चार छोटे भाई बहन थे, अब कोई कोई रिश्तेदार उन्हें पाल रहा था। बड़ी बहन को ये लगा कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं इन सारे भाई बहनों को अपने पास रख पाऊंगी और उन्हें वो जिंदगी दे पाऊंगी जो शायद माता पिता ने कभी सोची थी या प्रॉबेबली इन्होंने सोची थी। और सोचिए वो जिंदगी आज ये दे पा रही हैं, और ना सिर्फ उन्हें दे पा रही हैं लेकिन बहुत सारे घरों को दे पा रही हैं। वेड एशिया अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है, और आज वर्तिका नंदा जी, फिर से लूँगी, आज वर्तिका द्विवेदी जी अपने आप में एक नाम है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन औरों के लिए ये किस तरीके से एम्पावरमेंट फैला रही हैं उसके बारे में जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो वन रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, फील गुड फील।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। उतने ही इंस्पायरिंग एपिसोड में आज हम वर्तिका जी के साथ बैठे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर है द वेड एशिया की, डायरेक्टर है मेट एशिया एग्जीबिशन की, एक पब्लिशर है, नोटेड पब्लिशर है और साथ के साथ टेडेक्स स्पीकर भी हैं। पर मजेदार बात यह है कि एक महिला तो है ही, लेकिन इन्होंने जिंदगी को हार्ड तरीके से बहुत ही खूबसूरती से जीने का तरीका सीख लिया है और वही तरीका आज हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिचेस के साथ पैदा होना और उसके बाद कुछ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो इनिशियल पैसा ही नहीं है तो आप कमाएंगे कैसे? और आपके साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। वर्तिका जी, अगर मैं बात करूं आपके आगे बढ़ने की और वेड एशिया की शुरुआत की, तो कैसे हुई है शुरुआत और यहाँ तक का सफर कैसे आपने पहुँचाया?
1: बहुत ही प्यारा सवाल है भावना जी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम जो सिस्टर्स हैं, चार सिस्टर्स, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ये कर पाएंगे। तो मेरे आर्मी में कौन था? मेरी तीन बहनें और एक छोटा भाई
0: जी।
1: तो ये सिस्टर्स, अगर तीन सिस्टर्स जिनके पास कुछ नहीं है, ना घर है ना कुछ है, वो अगर ये कर सकते हैं तो सारे, अगर बहुत सारे सिस्टर्स एक साथ होंगे तो वो क्या कर सकते हैं?
0: इमेजिन।
1: वेड सिस्टर्स हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था ये सोच के कि वेमेन इन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का कोई प्लेटफॉर्म पहले तो नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, जो ये जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे, लेकिन ये क्या है ना, बैक सीट में रह के कर रहे थे
0: जी,
1: दे वर नॉट इन द फ्रंट सीट। एंड प्लस क्या, जो काम कर रहे उसका कंट्रीब्यूशन का रिकॉग्निशन नहीं दिख रहा था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमने सोचा कि क्यों ना, जिस तरह से हम सिस्टर्स एक साथ आके कुछ किए, हम वेड सिस्टर्स बनते हैं और सबको लेके आते हैं उनको, और एक जगह जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे।
0: वाकई
1: दैट वाज द थॉट, और वहाँ से शुरुआत की। और क्योंकि मैं ऑलवेज एंटरप्रेन्योरियल थी, क्योंकि मैं ये जानती थी कि आपके पास अगर स्किल्स है, आप अगर उसको यूज़ नहीं करके मनी अगर नहीं बना पा रहे हो, तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ना अपने लाइफ में, ना अपने अपनों के लाइफ में, ना समाज के लाइफ में,
0: वाकई
1: कहीं पे भी नहीं कर सकते। सो अगर मैं उनको चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, तो मुझे भी एग्जांपल बनना पड़ेगा, ताकि वो जब देखे, इफ़ आई एम वॉकिंग द टॉक देन दे विल ट्रस्ट। यू नो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड खुद से करना पड़ेगा, ताकि उनको हम एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म दें। So it was very important मेरे लिए from day one कि we have to be profitable, we have to be doing good, at the same time contribute करें। क्योंकि हम बहुत कुछ मन में सोच सकते हैं अच्छे, क्योंकि एक women का मैं एक myth जो होता है ना, वो मैं तोड़ना भी चाहती हूँ। वो सोचते हैं कि अगर पैसे के लिए कर रहे तो गलत कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: ये बात इतना गलत है। वो खुद अपने लाइफ में सफ़र जब करते हैं, जब परेशान होते हैं, तब समझते हैं कि नहीं, ये बात सच्चाई है कि हम अगर पैसे, स्किल बिल्ड कर रहे हैं, स्किल मैं समझती हूँ एक दरवाज़ा है पैसा बनाने के लिए। आप कुछ दे रहे किसी से, आप कोई फेवर नहीं कर रहे या फेवर ले नहीं रहे, ठीक है, आप किसी को कुछ दे रहे, उसके बदले में आप कुछ ले रहे, राइट?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे तब ले रहे, तो उसको वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, उससे आपके पास जो पैसा आता है उसको आप ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। आप अप्रूवल नहीं लेते फिर, क्योंकि आपका पैसा है।
0: बिल्कुल,
1: एंड आप अपनों के लिए, अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ कर सकते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: हैविंग सेड दैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वुमेन जो है इस बात को समझे कि स्किल्स ही दरवाज़ा है पैसे के लिए। अगर आपको जरूरत नहीं है स्किल्स की, आपके पास पैसा ऑलरेडी आ रहा है, फिर भी आपको स्किल्स सीखना चाहिए। मैं ये बोलूंगी क्यों सीखना चाहिए, इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप हमेशा अप्रूवल लेते रहोगे, अप्रूवल हमेशा आपको मिलेगा नहीं, आपकी चॉइस की चीज़ें आपको करने को नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, जो अप्रूवल देता है वही डिसीशन मेकर कहलाता है,
0: अथॉरिटी में।
1: यस, तो आप देखिए आप क्या बनना चाहते हैं।
0: एक्चुअली सो आई ऑलवेज बिलीव वीमेन आर इक्वल जेंडर, और हमें ना कहीं भी इन्फीरियर तो सोचना ही नहीं चाहिए अपने बारे में कि ओ हम तो सिर्फ दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे कोई भी ऐसा ग्रंथ या फिर आप किताब दिखा दीजिए जो कि रिलीजियस हो या फिर किसी भी तरीके की हो, जहाँ ये लिखा हो कि महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का ख्याल रखना है। यू आर एन इक्वल जेंडर, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको भी एज ह्यूमन बींग उतना ही राइट है कि आप अपने जीवन को खुशी से जी सकें। सो इसके लिए प्रायोरिटाइज ज़रूर करिए अपने आप को एंड खुश रहने की कोशिश करिए। और खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम के साथ। सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाइए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम वर्तिका द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेद एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, और एक पब्लिशर भी हैं, टेडेक स्पीकर भी हैं, और एक एम्पावर्ड महिला हैं, यानी एक सशक्त महिला है। वो महिला जिसने न सिर्फ अपने परिवार की बागडोर संभाली, लेकिन वो महिला जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए वेद एशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पर हर महिला आ सकती है और ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा सा जीवन चुन सकती है, लेकिन अपने लिए एक अच्छा करियर और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस भी चुन सकती है। अब बात करते हैं वर्तिका जी चैलेंजेस की। सुनने में ये कहानी बहुत आसान लग रही है। आप बता रहे हैं 17 साल की उम्र में कुछ सपने लेकर आ पाई, और ऐसी बॉलीवुड की बड़ी सारी फिल्में भी लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तब समझ में आता है जीवन कितना मुश्किल है। आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम जहां आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं मारी होंगी, जिससे कि आप ना सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, लेकिन शायद आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकें। और धीरे धीरे धीरे आज जीवन के आप उस स्तर पर हैं जहाँ यू हैव चोजन बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन, यू हैव चोजन द बेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर योर सिबलिंग्स। और आज आप ये कह सकती हैं ना, पलटकर जब आप देखती हैं अपने ज़िंदगी के इतने सारे सालों को, सो आप ये कह सकती हैं कि हाँ, मैंने इन चैलेंजेस को बीट किया है। सो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े?
1: देखिए, शुरुआती दौर की बात करें तो चैलेंजेस ही थे।
0: हाँ, वाकई
1: सिर्फ चैलेंजेस थे। ये कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी सांस लेने का वक्त हो, कि मैं सोचूं कि मैं कुछ भी हूँ, एग्जिस्ट भी कर रही हूँ। इतने चैलेंजेस थे भावना जी कि
0: कभी कभी रोबोट वाली फीलिंग आती होगी आपको।
1: रोबोट वाली फीलिंग क्या बताऊँ मैं आपको, रोबोट मुझे बनना पड़ा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को नहीं दबाएंगे तो इमोशंस आपको मार देते हैं।
0: ओके,
1: तो मैंने अपना ऐसे वक्त बिताया जब मैंने अपने इमोशंस को बोलती थी कि आप 2 साल बाद आना नॉक करना, मेरे को आपका सोचने का वक्त नहीं है। ऐसे होता था, और ऐसे वक्त एक बार नहीं, हजारों बार हुआ। बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार ऐसे सोचा कि नहीं कर सकती हूँ, अब नहीं। लेकिन जब बच्चों को देखती थी, उनको देखती थी, और इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था, वो जब देखती थी तो पता नहीं मुझे कहाँ से मुझे इतना स्ट्रेंथ होता था, इतना ज़्यादा मैं पॉसिबल समझने लगी, क्योंकि इट वॉज़ वर्थ ट्राइंग।
0: वाकई
1: ऐसे था। अब भावना जी, मैं अपने चैलेंजेस को चुनती हूँ। देखिए, भगवान को जो देना होता है वो तो देते हैं,
0: वाकई
1: हमारे पास चॉइस नहीं होता, लेकिन मैं चैलेंजेस चुनती हूँ। अब मैं एक, मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजेस से नहीं, पार करने में, आगे बढ़ने में मुझे मज़ा आता है। मुझे कंपनीज स्केल अप करने में मज़ा आता है, मुझे वेल्थ बिल्डिंग में मज़ा आता है, मुझे डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजंस सही हो गलत हो हमें किसी को कभी पता नहीं होता। ये डर जो वुमेन को होता है, वुमेन क्यों मैं बोलूँगी, ह्यूमन बींग्स को होता है, एक लिविंग बींग को जो होता है डर कि अगर मैं ये कदम उठाऊँ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, थोड़ा बहुत नमक की तरह तो फियर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि वो आपके जो आपका जो फूड है, आपका जो खाना है, उसको स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं
0: जी।
1: फियर को एक पॉइंट के बाद साइड में रखना चाहिए। इमोशंस अगर आपके रास्ते में आ रहा है और आपको कुछ करना है तो थोड़ा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहा दे, स्लिपरी ग्राउंड बना दे
0: जी।
1: राइट, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें।
0: वाकई
1: मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी उस वक्त एज अ साइंस स्टूडेंट। हमेशा ही मुझे साइंस एंड रिसर्च एंड उसमें बहुत इंटरेस्ट था। आई वाज वेरी वेरी गुड इन लैंग्वेजेस ऑल्सो एज अ स्कूल गोइंग किड, बट मुझे एजुकेशन आफ्टर सर्टेन पॉइंट बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन तक कम्प्लीट किया था। बट द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट ए चांस टू कम्प्लीट माई एजुकेशन, आई वेंट टू आई आई एम कलकत्ता,
0: यस,
1: एंड आई डिड दैट, एंड इट वॉज सो really empowering, not because I went there, it was because मैं already इतना कुछ करके गई थी कि जब मैंने जाके देखा और मुझे ये फील हुआ, अरे वर्तिका तुम तो ऑलरेडी ये सब जानती हो एंड तुम बहुत बहुत मतलब अपने प्रैक्टिकल गलतियाँ करके सीखी हो, तो मुझे एक अश्योरेंस मिला कि येस आई एम गोइंग द राइट वे, अब देयर इज नो स्टॉपिंग.
0: तो वर्तिका जी आपको ना जिंदगी ने इतना सिखा दिया था कि आई एम श्योर आई एम कोलकाता भी आपको सिखाने के लिए शायद छोटा पड़ गया था, बट जिस दिन आपने कैंपस में कदम रखा इतने लंबे यू नो ड्यूरेशन के बाद, और कितने सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उनके पास उनकी डिग्री पर आईआईएम कोलकाता का नाम हो, सो आपको जब ये मौका मिला तो हाउ वाज द फीलिंग?
1: देखिए जो कैंपस का टाइम है मैंने एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह बिताया.
0: हाउ स्वीट.
1: मैंने डांस किया वहाँ पे.
0: वाओ.
1: जुबी जुबी पे आप सोचिए.
0: इमेजिन.
1: मेरा जो पार्टनर था वाज अ फेलो स्टूडेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया. हम लोग मिले थे अभी बस, और हमारे सारे प्लान मतलब मैंने सोचा कि अदर देन स्टडीज मुझे वो कॉलेज लाइफ जो मैंने मिस किया मुझे वो जी लेना है.
0: सो स्वीट.
1: अब मैं देखिए कई बार अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के जीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मिस किया उसको आप जितना अभी जी सकते हैं जी लीजिए, क्योंकि आई एम ए वेरी बिग बिलीवर ऑफ हैविंग अ हैप्पी माइंड.
0: यस.
1: फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. ओके. हैप्पीनेस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड हैप्पीनेस कैनॉट बी यू नो कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज डन, और हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम दिस मोमेंट नाउ.
0: यस.
1: अगर आप इस वक्त में हैप्पी है, कंटेंटेड है, ओके, एंड यू आर इन योर सेंटर्ड, आप अपने मन के चित्त के सेंटर में स्थित है आपका यू नो फीलिंग, देन यू आर इन इट. सो दैट्स इट.
0: हाउ स्वीट. मतलब इससे बड़ा कोई मुझे लगता है मैसेज नहीं हो सकता. इनकी जिंदगी अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग और इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या कहने. इमेजिन करिए ना कि एक ऐसी लड़की जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके या स्कूल के बाद वो कैंपस में जा सके, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाना था और एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी थी जो रिस्पेक्टेबल लाइफ हो, जो आज बैठकर ये स्टूडियो में या फिर कहना चाहिए पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी टेडएक्स में जाकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करती हैं. और इमेजिन करिए जब इन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने ये मौका नहीं चूज किया, मतलब लूज किया, इन्होंने उस मौके को पकड़ के रखा और वहाँ जाकर इन्होंने ना सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय की, लेकिन कहते हैं ना जिस इंसान से आप जितना छीनते हैं ना तो मिलता जब उसे है सो उसे अबंडेंस में मिलता है. इन्हें मौका भी कहाँ मिला? आई एम कोलकाता. मतलब शी डिड नॉट चूज कि कोई भी नॉर्मल कैंपस वो चूज करें, शी चूज द बेस्ट. और यही जिंदगी का सफर है. अगर आप ठान लें कि भगवान आपको हार्डशिप्स दे रहे हैं तो उसे हार मत मानिए, उसको बीट करके आगे बढ़िए एंड देन यू सी शायद आप भी एक दिन मेरे साथ बैठकर अपने ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को डिस्क्राइब कर रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्तिका जी कर रही हैं. सो हर महिला के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है. जुड़े रहिएगा रेडियो मधुप्रश्ना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइट.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कहानी। और आज उतनी ही प्यारी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग वर्तिका द्विवेदी जी हमारे साथ बैठी हैं। इनफैक्ट इनसे बात कर रही हूं और इनकी जिंदगी की जब कहानी के बारे में मैंने सुना, आई वॉज सो वेरी इंस्पायर्ड। क्योंकि देखिए, जब हार्डशिप्स मिलती है ना, तो इंसान दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, या तो टूट जाता है या बन जाता है। इन्होंने जैसे ही हार्डशिप्स देखी तो इन्होंने ठान लिया था, मतलब बचपन से जिन चीज़ों को आज साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं कि जर्नलिंग करिए, ये अपने सपनों को लिखती थी। एंड इमेजिन करिए, शी हैड ऑल हर ड्रीम्स एंड टुडे यू नो शी इज सिटिंग इन द स्टूडियो एंड डेफिनेटली शी कैन से कि इन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि आप एक ऐसा जीवन जी पाएं जहां आपने अपनी चॉइसेस को खुद रखा। वर्तिका जी, मैं महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम करती हूँ, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और मैंने एक चीज़ देखी है कि महिलाएँ इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये जो वर्ड है ना, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, मुझे ऐसा लगता है ये इनबिल्ट चिप के साथ हमारे साथ आ जाता है। और हर महिला को ये सिखाया जाता है, एडजस्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इट्स ओके, जो भी मिला है उसी में मान लीजिए। दे नेवर चेज फॉर द बेस्ट। क्या कहना चाहेंगी, बिकॉज आप तो एक अथक एग्जाम्पल है, यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चेज द बेस्ट एंड लिव द बेस्ट।
1: देखिए, कई बार ये सोचते हैं लोग कि महिलाएं जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही वो अपना नर्चरिंग वाली जो कैरेक्टर है जो वो बेस्ट कर सकती है
0: जी।
1: मैंने एक महिला होते हुए, एक माँ हूँ मैं और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप विमेन हैं एंड आपका एक नर्चरिंग का क्वालिटी इंट्रिंसिक है, मतलब वो आपसे कोई छीन नहीं सकता
0: जी,
1: है ना। और अगर एक एम्पावर्ड वुमेन होंगे तो आप अपने परिवार में ज़्यादा दे सकते हैं।
0: वाकई।
1: तो ये परिवार वालों के लिए भी मेरा मैसेज है कि देखिए, एक एम्पावर्ड वुमेन ही एम्पावर्ड ज़्यादा कर सकती है आपके पूरे परिवार को। आप मतलब अगर मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को ये मैसेज दूँ तो ये मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बहू जो आती है, जो एम्पावर्ड बहू होती है, वो आपके बेटे को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन को, सबके लिए ज़्यादा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है, वो डिसीशंस ले सकती है ऑन देयर बिहाफ। एंड एक माँ, एक वाइफ कभी किसी के खराब के लिए तो डिसीशंस लेगी नहीं, लेकिन अगर वो जानती है तो आपके लिए भी वो स्ट्रेंथ बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और यही सच्चाई है, यही मैंने अपने लाइफ में देखा है।

0: तो परिवार का भी नहीं होता।
1: वाकई।
0: और परिवार को अगर आगे बढ़ना है, सबको स्ट्रेंथ एक साथ होके अच्छा करना है, देन विमेन का एम्पावर्ड होना, अवेयर होना, फाइनेंशियली लिटरेट भी होना एंड स्किल बिल्ट हो, कि एवरी वुमेन शुड हैव वन और टू स्किल्स जिससे वो कभी भी परिवार को ज़रूरत होता है, कुछ भी है, हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना पैसा खुद कमा रही है, खुद ग्रो कर रही है, खुद डिसीशंस ले पा रही है।
1: वाकई।
0: ठीक है, ये सबके भले के लिए है भावना जी।
1: भाई वाकई मैं ये मानती हूँ, क्योंकि ना कई बार आप जिंदगी में देखेंगे कि हम ना एक डिपेंडेंट जिंदगी जीते हैं, उसके पीछे कारण है। हमें सॉफ्टर जेंडर कहा जाता है, हमें वीकर जेंडर कहा जाता है, और ये कहकर हमें या तो चार दीवारियों में पैक कर दिया जाता है कि भाई बाहर निकल के क्या करोगे, जमाना बहुत खराब है, वाई शुड यू गो आउट, हम कमा कर दे रहे हैं ना, डोंट वरी, तुम घर पर बैठी रहो। सो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इनफैक्ट जब शादी होती है ना, सो हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो ढेर सारा पैसा कमाता हो, इररिस्पेक्टिव कि वो उसकी इज्जत कर रहा है या नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि हम फिनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, व्हाई डोंट यू गिव योर चाइल्ड, योर डॉटर, द फाइनेंशियल लिटरेसी? सिक्योरिटी देखने की जरूरत ही नहीं, वो अपने लिए खुद कमाएगी एंड शी विल हैव अ सिक्योर्ड लाइफ एंड रादर शी विल हैव अ डिग्निफाइड हैप्पी लाइफ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी फेमिन एम्पावरमेंट। मुझे लगता है आज का एपिसोड एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी कहानी है, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है वर्तिका द्विवेदी जी की, क्या कहने। बट हमने इनके जिंदगी के बहुत सारे पन्ने पलटे हैं, हर पन्ने पर एक स्ट्रगल और हर पन्ने पर एक सीख, और इस सीख से ही आप जीवन में बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हार्डशिप्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन हार्डशिप्स आते ही इंसान बदल जाता है, या तो वो टूट जाता है या वो बन जाता है। सो आपको यही सीखना है कि आपने टूटना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई एक गोल होना चाहिए, जो शायद वर्तिका जी ने बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था। तहे दिल से धन्यवाद वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगे हमारे सारे लिसनर्स को?
1: भावना जी, मैं ये बोलूँगी कि पर्पस, मकसद। लाइफ में अगर कोई मकसद हो तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारे रोल्स एज ए वुमेन मिलते हैं, नर्चरिंग रोल्स, पेरेंट्स ग्रो ओल्ड हो रहे, उनको देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड के लिए करना, परिवार वालों के लिए करना, ये सारी चीज़ें वुमेन में इनबिल्ट है। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा एक मकसद है जो आपको, कितना भी आप मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन आपको लगता है कि येस दिस इज समथिंग जो मुझे हैप्पीनेस देता है एंड मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, वो मकसद आपकी लाइफ में है क्या? वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मकसद आपको सारे कठिनाइयाँ जितने भी कुछ है उस सब कुछ से पार करा के ले जाएगा। वो मकसद आपको अपने से बड़ा होना चाहिए, समथिंग दैट रियली मैटर्स टू यू। लेकिन साथ साथ में डोंट फॉरगेट टू कीप बिल्डिंग स्किल, अपस्किल करना अपने आप को, सीखते रहना एंड आगे अच्छे से सबके साथ बढ़ते रहना।
0: बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, एंड डेफिनेटली वर्तिका जी की लाइफ अपने आप में एक पूरी इंस्पिरेशन की एनसाइक्लोपीडिया है। सो जहाँ पर लोग ऐसी चीज़ों से टूट जाते हैं, वहाँ पर ना सिर्फ ये बन गई, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को वो सशक्त करती हुई आज एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: मुझे बहुत खुशी है भावना जी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और एक प्यारे से गाने के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले हफ्ते आपकी और मेरी होगी मुलाकात। टिल देन कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद बा खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उस मुद्दे पर बेहतर तरीके से तलाश सकें नई सोच के साथ नई दिशाएं, जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं और हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दे होते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हुए भी हम उन मुद्दों की उन बातों की अनदेखी कर जाते हैं, या जाने अनजाने हमसे वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। दोस्तों, हर इंसान एक सपना लेकर के बड़ा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ाना, किसी को खेलना, तो किसी को दुनिया बदलने का सपना देखना। और वो दुनिया बदलने का जो सपना देखना है वो उसका स्वयं का अपना सपना होता है, या गाना गाने की हम बात करते हैं, या पढ़ाने की या खेलने की बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, या बचपन से हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, अपनी युवावस्था में पहुँचते हैं, या हम एक सेटल जीवन की तरफ जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे आसपास खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम अपने सपनों को जमाने के सपनों की नज़र से देखने लगते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है सपनों और समाज के बीच की एक खामोश लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की इसी बात से, यानी सपने अपने या समाज के। बड़ी अपने आप में ज्वलंत समस्या है इस बात की कि जीवन हम जीते अपने लिए हैं, अपने हिसाब से जीने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज के बीच में रहना और इसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि समाज के जो देखने का नज़रिया है वो हावी हो जाता है हमारे अपने नज़रिए के ऊपर, यानी हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमसे बनवाना चाहती है, ना कि हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ होता है तो उसके पास अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, यानी सपने अपने या समाज के। और

कमोबेश ये बात यदि हम अपने जीवन की सारी अवस्थाओं पर अप्लाई करें तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके मन में कोई ना कोई चाहत ना रहती हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, समाज में उसके आसपास का वातावरण बदलता है, तो ये जो सपने हैं, जो ये सोच है, वो परिवर्तित होने लगती है और एक प्रकार का दबाव भी कहीं ना कहीं ऊपर आने लगता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे, आपको भी याद होगा बचपन का वो समय कि जब सपनों में कोई डर नहीं था, यानी आप कुछ भी सोचते थे तो उसमें भय का कहीं भी कोई स्थान था ही नहीं। कोई बच्चा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, या कोई कहता था मैं डांसर बनूंगी, तो किसी को क्रिकेट भी पसंद था, किसी को पेंटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बात की पायलट बनूंगा, एक सोच किसी बच्चे के मन में आई कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उस समय उसको इस बात को कहते समय किसी प्रकार का भय नहीं था, उसको नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या होता है। तो वो एक बड़ी स्वतंत्र इच्छा होती थी, एक सपना होता था जिसको वो बड़े खुले मन से सबके सामने बोल देता था। लेकिन जैसे जैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ने लगता है तो एक सोच डेवलप होने लगती है समाज की, समाज के आसपास के लोगों की, कि इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, या इतनी पढ़ाई करके भी यही करोगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक समाज की सोच, समाज का एक दबाव बन जाता है कि यदि आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे। या फिर कंपैरिजन, तुलना होने लगती है आसपास के, कि फलाने के बच्चे को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उसने ये किया। तो इस प्रकार का जब वातावरण हमारे आसपास बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। यानी जो इच्छा उनके बचपन में मन में जागृत हुई, उन्होंने एक सपना देखा बिना किसी भय के, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बीता, एक उम्र हुई, युवावस्था आई, तो प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ले जाता है हमें अपने सपनों से दूर। और एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटने पर या उनको मार देने पर या दबा कर उनको समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम आज के समय की एक प्रैक्टिकल बात देखें तो एक बात जो बड़ी तय है कि ख्वाहिशों को अक्सर समझौते पहनाने पड़ते हैं, घर की उम्मीदों में खुद को छुपाना पड़ता है। हर कोई जी तो रहा है यहाँ, पर हर किसी को अपना सपना नहीं मिलता। एक बड़ी ही विषम परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में जब हम इस बात को कहने पर, एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। यानी आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं समाज के, जो आसपास के वातावरण का जो दबाव है, वो मजबूर कर देता है आपको अपने सपनों से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सपने अपने या समाज के, इस मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे समाज के सभी बच्चों से, बड़ों से और बुजुर्गों से। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो थॉट हमारे दिमाग में हमारे जीवन, अपने करियर या अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ साथ। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो बदलाव का दौर शुरू होता है, वो होता है जब जब हम अपने करियर और कंपैरिजन की प्रेशर में आने लगते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, करियर सिर्फ एक करियर नहीं रह गया, जिस प्रकार से हम अपने प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, वो अपने आप में बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। यानी आप क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जॉब पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक आजीविका या पैसा कमाने का साधन नहीं रह गया, बल्कि उसका समाज में एक स्थान हो गया है स्टेटस सिंबल का। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं होता, लेकिन वो चुनते इसलिए हैं क्योंकि समाज में उस क्षेत्र को चुनना या उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में जाना एक सफलता का सूचक माना जाता है। यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को सफलता के मानकों से तोलती है, उससे तुलना करती है और उसको एक्सेप्ट करती है, वो युवा मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, चाहे उनका मन किसी और काम को करने में क्यों ना हो। इंजीनियरिंग हो गया, चाहे मेडिकल, सरकारी नौकरी, इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जो सपना है इंजीनियर बनने का या मेडिकल का या सरकारी नौकरी का, क्या वो सपना आपका अपना है? क्योंकि अगर मंजिल अपनी नहीं होगी तो सफलता भी कहीं ना कहीं आपको अधूरी ही लगेगी। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार रखिए और हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो जुड़ा होता है हमारे सबके अपने सपनों से, यानी सपने आपके या समाज के। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था की हम बात करें, तो जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ जाता है और हम अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने ही जीवन के सोचे हुए सपनों से दूर जाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समाज के अंदर हमने जो तुलना का और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का जो एक वातावरण पैदा कर दिया है, वो हमारे दिमाग पर एक तरह का दबाव बना लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका हमारा चाहे मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें कॉलेज के, आप छात्रों को कई बार आप जाकर के आपने बात करते हुए सुना होगा कि उन्हें म्यूजिक पसंद था, लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चे पढ़ते तो जरूर हैं वो, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। और जबकि उनके पेरेंट्स की इच्छा यही रहती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनको जीवन में खुशी प्रदान करे, आने वाले समय में उनका जब करियर बने तो वो खुशी दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसी खुशी की, उसी हैप्पीनेस की बलि इनडायरेक्टली वो उस पढ़ाई को करते हुए दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस नहीं थी। वो केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर वालों ने कहा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है या क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बहुत सारे युवा आज के हमारे जो जैन जी की हम बात करते हैं, वो इसी उलझन में रहते हैं कि आखिरकार हमारी चॉइस को हम एक्सेप्ट, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम कैसे अमली जामा पहनाएं बिना किसी सामाजिक दबाव के। यानी कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक विरोधाभास पैदा करना पड़ता है, ताकि वो यदि अपनी सोच को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, या वो अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनना चाहते हैं, या अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो उनको खुशी दे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विरोध का सामना करना पड़ता है और उस विरोध को झेलने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बिना मन के जीवन जीना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, साथ ही साथ हम पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है कि जब कभी भी हम इस तरह की बात बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप हमारी इच्छा के हिसाब से आप ये करो, तो एक थॉट उसमें कहीं, एक जो अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से जब इस तरह के थॉट आते हैं, तो वो एक थॉट एक दूसरे थॉट के साथ आता है। जब वो अपनी इस बात को कहते हैं बच्चों से, तो उनके मन में एक थॉट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है कि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन एक बेहतर जीवन बने, सफल जीवन बने, और हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य ही चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसमें और बच्चों के थॉट्स पे कंट्रोलिंग करने के बीच में बहुत ही महीन सी एक रेखा होती है। कभी कभी हम जाने अनजाने उस बेहतरी को तलाशते हुए कहीं ना कहीं उस रेखा को पार कर जाते हैं, और एक तरह का जो पेरेंट्स जो वातावरण पैदा कर देते हैं परिवार में, वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति में आ जाते हैं। यानी एक बड़ी समझने वाली बात है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के, फ्यूचर की सुरक्षा को लेकर के कुछ सलाह देते हैं, या उसको समझाते हैं कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स का अनुभव उनको बता रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कब हम उस रेखा को पार कर जाते हैं और हम एक कंट्रोलिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो हमें खुद को नहीं पता चलता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप बच्चों को, जो पेरेंट्स अगर कोई सलाह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना समय आप उनको अपनी बात बोलते हैं, उतना ही समय उनको भी दीजिए उनको अपनी बात आपसे कहने का। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता और आपसी जो अपनी समझ वाला जो सुलह और समझ वाला जो रास्ता है, वो हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बात अब माननी पड़ेगी कि बच्चे यदि अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, पेंटिंग, कुछ भी है, आप यकीन मानिए यदि वो खुश मन से उस काम को करते हैं, तो वो उस काम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जिसको वो बिना मन के कर रहे हैं। यानी हमें समझना पड़ेगा कि जिस काम को करने में बच्चों को खुशी मिलती है, उसमें वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ना कि उन चीज़ों को करने में जिनको में
उनको करने में खुशी नहीं मिलती। तो ये बात आज के पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लेकर के आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सपने अपने या समाज के, यानी बहुत सिंपल सा शीर्षक है यदि हम इस टाइटल को सीधे से समझें तो, कितना हकदार है समाज हमारे सपनों को डिसाइड करने का, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की कि जैसे जैसे समय बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का जो दबाव है वो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। जब हम देखने लगते हैं कि इस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है, और हमारी खुशी से ज़्यादा इस प्रोफेशन की या इस जो भी करियर की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता के कितना स्कोप है, यानी खुशी हमें मिलती है ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है या ये बहुत ज़्यादा सफलता वाला एक मानक नहीं है, तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं उन्हीं सपनों से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अपने जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने ना रह करके बल्कि हम केंद्रित हो जाते हैं समाज के दिखाए हुए या समाज के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं बताए हुए प्रैक्टिकल सपनों की ओर। दोस्तों, समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की अगर हम बात करते हैं, यदि हर व्यक्ति केवल वही करने लगे कि जो और लोगों को सही लगेगा, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ही नहीं होता। ये एक बड़ा कटु सत्य है हमारे समाज का। जितने भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो लेखन की या कलाकारी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी केवल और केवल समाज की मान करके उस क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं किए, जबकि उनकी अंदर से एक आत्म इच्छा थी, उनका एक सपना था, तभी वो इन क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर पाए। ये हर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी आप किसी की भी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, नई सोच केवल जब आती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। यानी जब आप तक आप डिफरेंट सोचोगे नहीं तब तक आप डिफरेंट करोगे नहीं, और जो डिफरेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वही समाज में आपको एक उच्चतम स्तर पर लेकर के जाती हैं, आपकी एक पहचान अलग से बनाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपने बहुत सारे एग्जांपल हमारी सोसाइटी में ऐसे देखे होंगे कि जो जिनको इनिशियली अगर स्टार्टिंग में बोलें तो उनको अनसक्सेसफुल, फेल्ड और अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन आने वाले समय के साथ जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और समाज की परवाह नहीं की, तब एक दिन वही लोग सबके लिए प्रेरणा भी बन गए। यानी जिनको हमने फेल्ड और असफल लोगों की गिनती में गिना था, वही लोग समाज में पूजे जाने लगे, समाज उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया था, समाज की आवाज़ पर नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत समझने वाली हमें बात है कि अपने सपनों को किसी भी सूरत में छोड़ देना अपने आप में कोई हल नहीं है। हमें बहुत बेहतर प्रयास करके अपने आप को सिद्ध भी करना चाहिए। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं होता, यदि हमें समाज की सोच के अगेंस्ट जा करके अपने आप को प्रूव करना है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सपनों पर अपनी मेहनत भी उतनी करें, ताकि हम ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल सेट कर पाएँ कि हमारी जो सोच थी वो सही दिशा में थी, और इस सोच के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाला परिवर्तन भी छिपा हुआ था। तो दोस्तों, ये चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं सपने अपने या समाज के, यानी हमारे सपनों पर अधिकार हमारा ज्यादा है या समाज का, या किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जो सपनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार से समाज का जो दबाव है वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। आखिर इस सारी समस्या का जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसका आखिर समाधान है क्या, यानी कोई अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, किसी समाधान की दिशा की हम बात करें, तो आखिर वो हल है क्या? क्या समाज का ऐसा सोचना गलत है? नहीं दोस्तों, समाज का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन यानी संवाद। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि बच्चों के अपने थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है, उसको अमली जामा पहनाने की उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं पेरेंट्स की सलाह, उनका अनुभव और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सक्सेस होने में। तो यहाँ पर यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है और आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलता है जिसमें आपके सपने भी अपने ही रहते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता भी समाज के हिसाब से ही पाते हैं, यानी आप समाज को अपने आप को एक सफल स्थिति में दिखाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो उस संवाद की आखिर है क्या बात? बच्चों को समझना, उनकी इंटरेस्ट को सुनना, यानी बच्चे जिस बात में रुचि से इंटरेस्ट से बात करना चाहते हैं उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट भी करना कि समाज के द्वारा बताए गए जो सफलता के मानक है, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट हैं, चाहे किसी का इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना या किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रोफेशन की हम बात करें, तो जो समाज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात भी पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से हम इस माहौल को देख रहे हैं कि अब तो कोई क्षेत्र अछूता रहा ही नहीं। आज आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखिए, गाना गाने वाले बच्चों ने कमाल किया हुआ है कि अपने अपने फील्ड में अलग से एक्सपर्टीज ले रखी है। कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के आइडिया के हिसाब से, चाहे वो पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट्स का या कुछ भी, उसमें कहीं भी किसी समाज की सोच आड़े नहीं आती। यानी जिस प्रकार से समाज में एक चर्चा रहती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अब जमाना बदल चुका है और इस आधुनिक जमाने में, इस जो मॉडर्नाइज युग, डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक स्पेस तैयार हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अपने कोई सपने चलते हैं, अपने कोई विचार चलते हैं, और उन विचारों को एक मूर्त रूप वो दे सकते हैं और उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए लोग कर पाते हैं। वो समय और था जब हमारी पहुंच एक लिमिटेड क्षेत्र तक थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज हैं, हमारी जो थॉट है, उसकी एक्सेप्टेंस उस क्षेत्र में नहीं होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हम गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट के माध्यम से जब हमारी सोच, हमारे आइडियाज बहुत दूर दूर तक, दूर देशों तक पहुंच जाते हैं, तब हम लाइक माइंडेड लोगों को आकर्षित करते हैं अपने उस थॉट्स के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों के साथ साथ सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि अगर हम इसको दो लाइनों में समेटें इस बात को, तो हर सुरक्षित रास्ता खुशी तक नहीं जाता और साथ ही साथ हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। तो इस मुद्दे पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स का, समाज के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का या जो गाइड करते हैं लोग, उनका अनुभव और साथ में हमारे सपने, उनके बीच में यदि संवाद से कोई एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन से कोई रास्ता बीच का निकल पाता है, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके सपने भी आपके अपने ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और अब हम लेकर के चलते हैं कार्यक्रम को समापन की ओर। आपने आज इस सपने अपने या समाज के जो हमने मुद्दा आज नई सोच नई दिशाएं में आपके सामने रखा, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स पे चर्चा की। और कंक्लूडिंग अगर हम एक इसका नटशेल में कोई बात निकालें तो वो ये कि जो समाज का, जो हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है, जो हमारे उनकी गाइडेंस है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर सपने हैं, जो उनके थॉट्स हैं, यदि हम उनको केवल इस कसौटी पर तय करेंगे कि सफलता का क्या कारण होना चाहिए, एक सफलता मिलती कैसे है, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है केवल वही सफलता है, तो आप यकीन मानिए हमारे समाज के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि अच्छे लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कुछ भी, जो एक नए तरह का जो परिवर्तन समाज में आता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि हम केवल पुराने विषयों पर ही चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड सेट मान लेंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है जब हम इस तरह की चर्चाओं को आपस में करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कहा था कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके थॉट्स पर नियंत्रण करना, इसके बीच एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए कहीं उनके सपनों पर या उनके ऊपर नियंत्रण ही ना करने लगे। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सपने देखना है, समाज के किसी भी प्रकार के दबाव को ना महसूस करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो वो सपने हैं, केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो इसका भावार्थ ये रहता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ का सपना देखते हो तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास भी उतने ही सीरियस होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मोड़ पर यदि हम बात करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, वो कोशिशें भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने

लिखी सुनी होती। तो आपको समझना चाहिए कि जो थॉट भी आपके दिमाग में आते हैं, यदि आप उनको कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो चूंकि वो सपने आपके हैं और उनको अमली जामा पहनाना, उनको सफलता की ओर लेके जाना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है, तो आपको पूरे प्रयास भी उस दिशा में करने की आवश्यकता होती है, न केवल एक चीज़ के बारे में सोच लेना पर्याप्त होता है। तो यानी यदि आप बदलाव चाहते हैं अपने थॉट्स के साथ, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और सपने अपने या समाज के इस मुद्दे पर जिस प्रकार की चर्चाएं हमने की, उससे निश्चित रूप से आपको जरूर कोई ना कोई नई सोच के साथ एक नई दिशा मिली होगी और आपको लेकर के जाएगी वो एक बेहतर भविष्य की ओर। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिखकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का 2 कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। 2 बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पा लूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा, मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस, और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है,

0: मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर, मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था, और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया, जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थे। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती हूं आपके पास लेके अपना ये प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूं. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ देखिये बहुत सारी बातें तो लेकर के आई हूँ आज, और आज है सैटरडे का दिन और मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 7 से 9. हम बहुत सारी बातें करते हैं और आज भी कमाल की रेसिपीज है मेरे पास आपके लिए. जी हाँ, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आपके लिए खास रेसिपी बताने वाली हूँ. हाँ, ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके पास भी कोई यूनिक अलग टेस्टी रेसिपी है जरूर हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं. नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078. इस पर आप व्हाट्सएप द्वारा अपनी रेसिपी भेज सकते हैं. लिखना मत भूलिएगा कि आपका नाम क्या है, रेसिपी का नाम क्या है, इंग्रेडिएंट्स और कैसे ये रेसिपी बनेगी, और भेज देना है 8010781078 पर. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज है सैटरडे का दिन और मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। अच्छा, सुबह का ये जो टाइम होता है ना, मन करता है कुछ अलग सा खाने का। सैटरडे संडे हो, वीकेंड का टाइम हो, तो लगता है कुछ अलग होना चाहिए, कुछ तीखा तो कुछ खट्टा। और ऐसे ही कुछ अलग रेसिपी लेकर के मैं आ जाती हूँ, कभी तीखी तक भी मीठी, कभी खट्टी रेसिपी लेकर के आती हूँ। ऑप्शंस आपको कई सारे मिल जाते हैं ताकि आप बना सकें। अब इंडिया में देखिए, वैसे तो अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स हैं और जिस जिस स्टेट में हम कदम रखते रहते हैं वहाँ पर ट्रेडिशन चेंज हो जाते हैं, कल्चर्स चेंज हो जाते हैं, खाना पीना चेंज हो जाता है, भाषा बदल जाती है। तो आज ना मैं आपको देखिए स्टेट की बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ कहूँगी, ऐसा कुछ बताऊँगी जो कि फ्यूजन है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका फेवरेट है। और आज ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, बड़े टाइम से ना मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव में थी, और उसमें मैंने देखा कि एक बड़ी खास चीज़ जो है वो चल रही है, और वो है ब्रेड पिज्ज़ा पॉकेट्स। बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, बाहर हम खाते हैं तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिल पाती है, बड़ा महंगा होता है, घर पर कैसे बना सकते?

वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना आपको फ्यूजन फूड के बारे में बता रही हूँ। फ्यूजन फूड की अगर हम बात करें तो हमें लगता है ना कि कोई मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पर बिल्कुल नहीं। हमारे देश में सदियों से अलग अलग कल्चर्स आते रहे और हमारा खाना इवॉल्व होता रहा। पिज्ज़ा तो ओरिजिनली अगर बात करें तो इटली का है, पर जब वो इंडिया आया तो हमने उसे अपना देसी ट्विस्ट दे ही दिया। आजकल बच्चों की छोटी मोटी भूख मिटाने को शाम को चाय के साथ कुछ मज़ेदार खाने का मन तो होता है, और यह अचानक घर पे मेहमान आ जाना तो कुछ होना चाहिए, और ऐसे में ब्रेड पिज्ज़ा पॉकेट हर मौके के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। झटपट तैयार भी हो जाता है और बड़ा क्रिस्पी है, और अंदर से एकदम मेल्टेड चीज, चटपटे इसमें फ्लेवर्स हैं और बहुत स्वाद लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ओवन की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें आसानी से तवे पर या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब बात आती है कैसे, तो वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बड़ी जल्दी से तैयार होने वाली टेस्टी रेसिपी, ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स की। बहुत ही मजेदार है। जल्दी से सामग्री इंग्रीडियंट्स इसके नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस चाहिए आपको 8 से 10, वाइट ब्रेड ये होनी चाहिए। वैसे अगर आटा ब्रेड भी होगी चलेगी, लेकिन वाइट ब्रेड में टेस्ट इसका अच्छा आता है। इसके साथ मोजरेला चीज लेनी है आपको 1 कप, और उसे ग्रेट कर लीजिएगा यानी कि कद्दूकस कर लीजिएगा। बारीक कटी सब्जियां 1 कप, शिमला मिर्च, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न, प्याज और गाजर आपको लेनी है। इसके साथ पिज्जा सॉस लेनी है 3 से 4 बड़े चम्मच, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो लेना है स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, मैदे का घोल लेना है 2 चम्मच और मैदा इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इस घोल को बना लीजिएगा। इसके साथ ब्रेड क्रम्स लेने आपको 1/2 कप, कोटिंग के लिए होने चाहिए, और तलने के लिए आप तेल या मक्खन ले सकते हैं। तलने या सेकने के लिए इन सभी चीजों का बैलेंस ही इस डिश की जान है, पर इसको सील करना और इसको क्रिस्पी बनाना ही बहुत बड़ा राज इसमें छुपा हुआ है, जो कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्या राज है। चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। बहुत सारी होती हैं बातें लेकर के आई हूँ आज टेस्टी रेसिपी, और वो है पिज्ज़ा ब्रेड की, और क्रिस्पी जो बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। जी हाँ, पिज्ज़ा पॉकेट्स तो बहुत लोग बनाते हैं, पर वो बाहर के तरह जैसे होता है ना कि जैसे बाहर से सॉगी हो जाते हैं और अंदर से जो है वो तो नरम होते हैं, लेकिन बाहर से भी बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। आज देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप इसे आसानी से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं और वो भी बाहर से क्रिस्पी रहेंगे अंदर से नरम। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में आपको इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जो है वो डाल देनी है, और उसके बाद कद्दूकस किया हुआ चीज, पिज्जा सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, काली मिर्च और हल्का सा नमक आपको डाल के मिला लेना है। ध्यान रहे कि सॉस और चीज में भी नमक जो है होता है, तो इसीलिए नमक थोड़ा सा संभाल कर डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। आपकी पिज्ज़ा स्टफिंग तैयार है। अब ब्रेड स्लाइस में आपको क्या करना है, और उनके चारों तरफ आपको चाकू की मदद से इसे जो साइड्स हैं उसको काट लेना है, और बेलन की मदद से ब्रेड को एकदम फ्लैट कर लेना है, हल्का सा बेल लेना है ताकि वो पतला और फ्लैट हो जाए। और इसके बाद अब क्या करना है आपको, बेली हुई जो ब्रेड है इसके किनारों पर चारों तरफ मैदे का आधा जो देखिए आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको घोल लगा देना है, और उसके बाद अब ब्रेड के बीच में आपको चम्मच से तैयार स्टफिंग रखनी है। ब्रेड को आपको बीच से मोड़ कर एक रेक्टेंगल शेप देनी है, उंगलियों या कांटे की मदद से आपको किनारों पर थोड़ा दबाव बनाना है, स्टफिंग के जो है इससे बाहर नहीं निकलेगी और अच्छा एक डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आपको जो तैयार आपके पिज्ज़ा पॉकेट्स हैं वो जो है वो एक बार पतला बेल कर उसे घोल में आपको डुबोना है, और फिर ब्रेड क्रम्स आपको जो है वो लगाने हैं, लपेटने हैं, और इससे बिल्कुल बाजार जैसा कुरकुरा ये बना सकता है। अब एक कढ़ाई में आपको तेल गरम करना है और मध्यम आंच पर जो पॉकेट्स हैं उनको सुनहरा होने तक आपको डालना है और अच्छे से सेकना है। गरम गरम आपको इसके बाद परोसना है। आपके ब्रेड जो है पॉकेट्स, पिज्ज़ा ब्रेड पॉकेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं और बहुत टेस्टी ये बनेंगे। तो चलिए अब लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ, बात कर रही हूँ। आज सैटरडे का दिन है, कमाल की रेसिपीज लेकर आती हूँ और चीजी और क्रिस्पी पिज्जा पॉकेट्स का मजा तो हो गया। पर अब देखिए, जैसे जैसे दूसरी रेसिपी के पास आपको लिए चलती हूँ, और ये जो टेस्टी रेसिपी है भाई, वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि गर्मियों का ना मौसम चल रहा है, और गर्मियों के मौसम में अगर आप कुछ ऐसा तला वाला खाते हैं तो मन करता है ना कि कुछ रिफ्रेशिंग भी हो जाए। तो लंच का अगर टाइम, अगर देखिए आपका हो जाता है जब लंच टाइम होता है या डिनर टाइम होता है, लेकिन लंच में प्रेफरेबली मैं ज़्यादा कहूँगी जब लंच टाइम हो, तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर बनानी है जो कि बहुत टेस्टी है, और वो है शाही जीरा रायता। ये जो रायता है ये सुपर टेस्टी है और बहुत ही कूल रहेगा और रिफ्रेश भी करेगा। इनफैक्ट ये आपके पाचन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्पून आपके पेट को सुकून ये दे सकती है। तो आज आपको बताऊंगी कैसे आप इसे बनाएंगे, शाही जीरा को आप ये जो शाही जीरा रायता है ये बनाएंगे, क्योंकि शादियों में इसका टेस्ट काफी अच्छा लगता है जब हम खाते हैं। लेकिन घर पर कैसे बनाएं वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें इसी के साथ. अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि रायता जो है हमारे खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और ऐसा क्यों है? तो इसके लिए ना थोड़ा सा इतिहास खंगालना होगा. इतिहास के पन्नों में और खासकर आयुर्वेद में दही को अग्नि और पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बताया गया है. रायता शब्द संस्कृत के राज क्या यानी कि राय और टिक्का का मिलाकर बना है. पुराने जमाने में जब राजा महाराजा ढेर सारे मसालेदार खाना खाते थे तो पेट की गर्मी को शांत करने के लिए जो बावर्ची थे, जो लोग थे, जो कुक्स थे, दही में जीरा, राई और पुदीना मिलाकर सर्व किया करते थे. शाही जीरा रायता उन्हीं शाही रसोइयों से निकल कर आया है, आज हमारे घरों तक पहुंच गया है. और इसे बनाना भी बहुत आसान है, पर लोग अक्सर दही को सही तरीके से ब्लेंड नहीं करते हैं और इसकी वजह से एक परफेक्ट रायता नहीं बन पाता है. तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि शाही जीरा रायता की रेसिपी क्या है. फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। मैं आपको बता रही हूँ शाही जीरा रायता रेसिपी के बारे में, कैसे बनना है। तो सबसे पहले फ्रेश दही लेनी है आपको 2 कप, ठंडी होनी चाहिए। भुना जीरा लेना है आपको 1 बड़ा चम्मच, साबुत जीरा लेना है 1 छोटा चम्मच तड़के के लिए, काला नमक और सेंधा नमक लेना है स्वाद अनुसार, बारीक कटा हरा धनिया और पुदीना लेना है 1/4 कप। इसी के साथ साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है, ये ऑप्शनल है भाई, मुझे तो बड़ी पसंद है तो ले लीजिएगा या मन है आपका। इसके साथ घी लेना है 1 छोटा चम्मच। अब बताती हूँ इसकी विधि क्या है, लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. और आज है सैटरडे का दिन, आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आई हूँ. और आज की हमारी रेसिपी मैं बता रही हूँ आपको, शाही जीरा रायता की. सबसे पहले दही को एक बड़े बोल में आपको लेना है और उसके बाद इसमें डालकर आपको अच्छे से विस्कर की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे से विस्क कर लेना है. पतले कपड़े से छान लेना है इसके बाद और बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी इसको बना लेना है. दही में लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. अब इस स्मूथ दही में आपको काला नमक, सेंधा नमक और इसमें थोड़ा सा सादा नमक डाल सकते हैं, लेकिन सब कुछ एकदम क्वांटिटी बहुत कम कम होनी चाहिए, नहीं तो ये बैलेंस हो जाएगा. और भुना जीरा पाउडर आपको डालना है. बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप मिला सकते हैं और इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिए, पुदीने के पत्ते डाल दीजिए. और पुदीने का जो देखिए थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, अच्छे से जो फ्रेश पत्तियां होती हैं उसको हल्के से कट करके तो हल्के से उसमें फ्रेशनेस के लिए ये दे सकते हैं आप, डाल सकते हैं, फ्रेशनेस अच्छी आती है. अब आता है शाही स्टेप, द रॉयल तड़का जैसे मैं कहूँगी. एक छोटे पैन में बिल्कुल थोड़ा सा घी गरम करना है, इसमें साबुत जीरा डालना है. जब जीरा चटकने लगे आपको हल्का सा इसे ब्राउन होने देना है और इसके बाद गरम गरम तड़के को दही के ऊपर डाल दीजिए और तुरंत 2 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए ताकि घी और जीरे का जो खुशबू है, जो अरोमा है, वो रायते के अंदर लॉक हो जाए और आपका शाही जीरा रायता तैयार हो जाए. और ये है रेसिपी शाही जीरे जो रायता है इसकी. चलिए इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मैरव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ रायते की मैं बात कर रही हूँ, बड़े टेस्टी रायता। वैसे तो पता ही गर्मियों के टाइम में ना अलग अलग रायते खाने का बड़ा मन करता है। अब देखिए हमारे देश में ना बड़े अलग अलग रायते अलग अलग तरीके से बनते हुए हैं। किसी को बूंदी का पसंद होता है रायता, तो किसी को खीरे का, और कुछ लोग जो हैं वो फ्रूट रायता भी, यानी कि पाइनएप्पल रायता या मिक्स फ्रूट रायता भी पसंद करते हैं। आलू का रायता, इसके भी लोग दीवाने हैं।

अब मुझे वही पसंद है, घीये का रायता बड़ा टेस्टी लगता है। तो अगर आप भी कोई रायता पसंद करते हैं, आपको कौन सा रायता पसंद है ज़रूर मुझे बताइएगा। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, और ज़रूर मुझे बताइएगा। साथ ही साथ देखिए, मैं ना आपके लिए कुछ हैक्स भी लेकर के आई हूँ, और ये जो हैक्स इसलिए लेकर के आई हूँ, अभी ना हमारे पास एक सवाल आया है कि ये सवाल जो है सुनीता जी की ओर से आया है। इन्होंने लिखा है कि जब भी ये ब्रेड पिज्ज़ा पॉकेट बनाती हैं तो अक्सर होता ये है कि जो तलते टाइम जो ब्रेड है वो फट जाती है और सारी चीज़ निकल जाती है, तो इसके लिए क्या करना सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी सवाल है और ये अक्सर हमारे साथ होता है, तो बताऊँगी इसका हैक क्या है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती हैं बातें और इसी के साथ आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी, इसके साथ ना कुछ हैक भी लेकर के आए हूँ. तो अभी ना मैंने आपको बताया था ब्रेड पिज्जा पॉकेट्स के बारे में, कैसे वो बना सकते हैं आप घर पर. अच्छा, जब भी आप बनाने लगेंगे ना तो गलती ये हो जाती है कि वो फट जाते हैं अपने आप ही. तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी. अक्सर जब ब्रेड पॉकेट्स को फ्राई करते हैं ना तो ब्रेड जैसे ही आप उसे तलेंगे तो वो फट जाती है और सारी चीज़ बाहर निकल जाती है. इससे बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल हैक है, हमेशा फ्रेश और सॉफ्ट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें. फ्रिज में रखी जो हार्ड ब्रेड होती है उसका बिल्कुल इस्तेमाल ना करें. अगर ब्रेड थोड़ी पुरानी है तो बेलने से वो पहले जैसी अगर हल्की और वो अगर वो नहीं हो रही है तो हल्का पानी का छिड़काव कर सकते हैं. उससे 5 सेकेंड में अगर आप ऐसा करेंगे तो थोड़ी सी स्टीम दे दीजिए, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इससे ब्रेड जो है वो काफ़ी इलास्टिक जो है वो हो जाएगी. मुड़ते ही ते वक्त वो टूटेगी नहीं और अच्छे से किनारों से वो अच्छी तरह से जो है वो लग जाएगी और बिल्कुल सील हो जाएगी. तो ये एक आप तरीका जो है मैं ज़रूर कहूँगी अगर आप भी जाते हैं तो. ब्रेड का इस्तेमाल फ्रिज से डायरेक्ट ब्रेड को निकाल के मत कीजिएगा क्योंकि वो ब्रेड टूटेगी, पुरानी ब्रेड टूटेगी. और अगर पुरानी ब्रेड 1 या 2 दिन भी पुरानी है तो उसे बाहर निकालिए फ्रिज से, उसको हल्का बेलिए, उस पर आपको थोड़ा सा पानी छिड़कना है, 5 सेकेंड के लिए छोड़ दीजिए, उसको स्टीम कर दीजिए हल्का सा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी. उसके बाद उसका ब्रेड पॉकेट पिज्ज़ा बनाइए तो वो बिल्कुल अच्छे बनेंगे और चीज़ बाहर नहीं निकलेगी. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। आज है सैटरडे का दिन, रेसिपीज आपके लिए कमाल की टेस्टी लेकर के आ गई हूं। अच्छा बात करिए दूसरे हैक की, जल्दी से बता देती हूं, गर्मियों में दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है। अगर आप सुबह रायता बना रख देते हैं तो दोपहर तक वो खाना काफी मुश्किल हो जाता है। हैक ये है कि रायता बनाते वक्त उसमें नमक तभी आपको मिलाना है जब आप उसे सर्व करें, उससे पहले नमक ना डालें। दही जो है, नमक जो है, जब दही में डलता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो तेज हो जाती है और जिससे वो जल्दी खट्टी हो जाती है। अगर आपको पहले से बनाकर ये रखनी है तो दही में आप सारे मसाले और तड़का लगाकर फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद खाते वक्त नमक उसमें डाल सकते हैं। आपका रायता हमेशा फ्रेश आपको लगेगा और काफी अच्छा लगेगा। इसके साथ देखिए, हमारे किचन के ना मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, उन्हें देखिए उनके पीछे बहुत पुरानी साइंस भी है। जीरा जो है वो हमने आज रायते में ढेर सारा डाला और वो नेचुरल डाइजेस्टिव एलिमेंट है। इसमें जो है देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा जो पाचन है ये हो जाता है, डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और आप जो है ऐसे जो खाएंगे ना तो आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस खीरे रायते को भी बनाइएगा। तो दोनों चीज़ आज मैंने आपको बता दी है और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है अब आपसे एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत. कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले एक और भी तो प्रोग्राम लेकर के आपके पास आती हूँ ना, क्योंकि आज शनिवार का दिन है. तो थोड़ी देर बाद फिर से आऊंगी आपके पास. आज सैटरडे का दिन है तो सफरनामा लेकर के आती हूँ, तो आप कहीं मत जाइए क्योंकि प्रोग्राम सफरनामा ये इस प्रोग्राम में आज हम बहुत ही खूबसूरत सी जगह जाने वाले हैं. तो सुबह 11 से 1 आपके पास फिर से आऊंगी, तो आप कहीं मत जाइए और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव. बाय बाय, टेक केयर.

0: हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो एक ऐसा विषय है जो आपकी, हमारी, हम सभी संसार में रह रहे लोगों के जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है ग्रीन ग्रह और ये खास तौर पर से आपके लिए लाया गया है ताकि आप अपने पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बना सकें। वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़े कुछ खास एपिसोड्स हम इस सीरीज में ला रहे हैं आपके लिए और ग्रीन ग्रह कार्यक्रम को सपोर्ट किया है PTC फाइनेंस ने इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एंड इको क्लब। और रेडियो मानव रचना इसमें आपको हर हफ्ते मुलाकात कराएगा एक खास एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट आपको समझाएंगे कि कचरा प्रबंधन या फिर कचरे को सही से डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका होता है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए अगर कचरा प्रबंधन सही प्रकार से ना किया जाए तो कितना खतरनाक होता है, और अपने पर्यावरण को, अपनी इस धरती को हम वापस बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ बातें करने के लिए आज के हमारे इस एपिसोड में स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर निधि डिडवानिया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। डॉक्टर निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा, मुझे बहुत खुशी है आज आपके साथ में वेस्ट या किसी से भी रिलेटेड आपसे बात करने के लिए।
1: जी, सो डॉक्टर निधि, हम वेस्ट सेग्रीगेशन पे आज बात करने वाले हैं और वेस्ट ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में है। आप ऑफिस में भी कुछ घंटों बैठे हैं तो कुछ ना कुछ खा रहे हैं या कोई कागज़ फाड़ रहे हैं तो वो डस्टबिन में ही जाता है। लेकिन एक समस्या आती है आजकल कि हम जिस कचरे को घर से निकालना चाहते हैं, हमें उस कचरे को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना नहीं आता। ज़्यादातर हाउस होल्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो घर में एक बड़ा डस्टबिन होता है जो किचन के या कॉरिडोर में या बालकनी में कहीं रखा होता है। हर एक चीज़ उसी कचरे के डब्बे में चली जाती है। ये भी ध्यान नहीं दिया जाता कि वो चीज़ आखिर है क्या। वो कांच के टुकड़े हैं, वो दवाइयाँ हैं या वो किसी चीज़ के छिलके हैं, वो सारी चीज़ें एक आम इंसान को भी डिटेल में इतने ज़्यादा अवेयरनेस के बाद भी नहीं पता है। तो आज आप हमारी एक्सपर्ट हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वेस्ट बेसिकली ये जो कचरा होता है, ये कैसे सेग्रीगेट किया जाए, अलग अलग कैसे रखा जाए, कैसे इसको फेंका जाए, किस तरीके से एक आम इंसान को इसके प्रति भी सचेत होना पड़ेगा।
2: बिल्कुल, देखिए वेस्ट जो है उसका सेग्रीगेशन बहुत बड़ी कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है और एक चेंज ऑफ लाइफस्टाइल है, एक लाइफस्टाइल है, एक हैबिट है। तो वेस्ट सेग्रीगेशन की इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए और बहुत ही क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसमें डिफरेंट कलर कोड्स बनाए गए हैं। और उन कलर कोड्स के चलते आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कचरा किस कलर के डस्टबिन में आपको डालना चाहिए।
1: जी,
2: तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में डस्टबिन एक नहीं, चार होने चाहिए।
1: चार डस्टबिन होने चाहिए हर घर में?
2: जी बिल्कुल, और इसके बहुत फायदे हैं, आपको पता चलेगा कैसे। क्योंकि हम जानते हैं कि 62 मिलियन टन्स जो हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं उसका आधे से ज्यादा कचरा हम लैंडफिल में भेज रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखते हैं ना
1: कचरे के।
2: जी,
1: जो दूर से लगता है
2: हुआ, आपका बंदवारी हुआ, तो ये सब जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो सब हमारी जो डेली छोटी छोटी गलतियां हैं वही पहाड़ बन के दिख रहे हैं।
1: जी जी, जनरली ये जमीन के नीचे होने चाहिए।
2: जी,
1: लैंडफिल्स जिसको कहा जाता है, लेकिन ये जमीन से कई 100 फीट ऊपर पहुंच चुके हैं क्योंकि हमने इसमें थैलियाँ, पॉलिथीन, कागज, कपड़ा, हर एक चीज डाल रखा है जो कि जमीन के अंदर जाकर गलता भी नहीं है।
2: जी, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितना भी वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं हमारे घर में, उसमें से 80-90% तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसा वेस्ट है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे सही तरीके से स्टोर करके आप एक ऑथराइज्ड वेंडर या डीलर को दे सकते हैं। तो अगर हम कलर कोड की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपका ग्रीन डस्टबिन है तो ग्रीन कलर कोड दिखाता है कि जो आपका वेट वेस्ट है, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है,
1: खाने पीने की चीजों का,
2: जी पील्स हुए आपके, छिलके हुए आपके, यहाँ तक कि आपके जो ये छोटे छोटे एग शेल्स आपके टुकड़े होते हैं वो हुए आपके, इन सबको आप एक जगह इकट्ठा करेंगे तो ये आपका वही कंपोस्ट आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट के लिए तैयार हो जाएगा, जो गार्डन में आप यूज कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहते हैं अपने गार्डन में तो आप पार्क में यूज कर सकते हैं।
1: ओके
2: ठीक है, तो ये वेस्ट तो आपका यूं कह लीजिए कि ये गोल्ड है। ठीक है, तो वो एक तो आपका ये ग्रीन वेस्ट हो गया, ग्रीन कलर कोड। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लू ब्लू कोड की।
1: ब्लू
2: तो जो ब्लू कोड है आपका वो होता है ड्राई वेस्ट। अब ड्राई वेस्ट में आप क्या डालेंगे, आपका प्लास्टिक हुआ, आपका पेपर हुआ, कार्डबोर्ड्स हुए, ये सब चीजें आपके ड्राई वेस्ट में आ
1: जो बेसिकली सूखा है
2: जी,
1: जिसके रॉट होने के या खराब होने के चांसेस नहीं होते। बहुत सारे लोग जैसे हम पढ़ रहे हैं तो कागज वेस्ट होते हैं, बुक्स के कवर्स हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो ये सारी हम मरोड़ के जैसे फेंक देते हैं, सो उनको आप इस ब्लू वाले बॉक्स में डालें।
2: अब हम बात करेंगे बैटरीज की, आपके ई वेस्ट की।
1: बिल्कुल, और ये बात करनी जरूरी है क्योंकि बचपन से सबके घरों में घड़ियों से लेकर रिमोट तक हर जगह सेल यूज हो रहे हैं, बैटरीज यूज हो रही हैं, और अब तो खिलौनों में भी इतनी यूज होती हैं कि आपके पास रोज रोज नए सेल इकट्ठा होते हैं और वेस्ट भी होते हैं।
2: और वही हाल आपके वायर्स का है, इतने सारे वायर्स आपके पास होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, पुराने मोबाइल फोन्स भी आप क्या करते हैं घर में डंप रखते हैं, तो ये सब चीजें जो है वो आपका होना चाहिए कलर कोड येलो।
1: ओके
2: क्योंकि ये आपका रिसोर्स है फॉर द इंडस्ट्रीज। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज की तारीख में बैटरी से लेड रिकवरी करते हैं, बहुत सारे मेटल्स रिकवर करते हैं, एल्यूमिनियम हो, आपके कॉपर हो, इन सबको रिकवर किया जाता है। क्योंकि आपको भी पता है चिप में भी आपका गोल्ड होता है। है ना,
1: बिल्कुल।
2: तो लेकिन आप अपने लेवल पे ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पे उसको सेग्रीगेशन में रख सकते हैं, तो ताकि आप उसको एज अ रिसोर्स आप सोसाइटी को वापस दे सकें।
1: बिल्कुल।
2: और आखिरी जो आपका कलर कोड है जो सबसे खतरनाक है, दैट इज हजार्डस वेस्ट, जो आपका रेड कलर कोड दिखाता है।
1: रेड हमेशा डेंजर का साइन होता है, तो उसको बस आपको समझना है कि यहाँ पर हजार्डस वेस्ट आएगा जो सभी के लिए बहुत हानिकारक और जानलेवा होता है।
2: बिल्कुल। और उसमें आपको पता ही है हमारे घरों में पूरा मेडिसिन बॉक्स बना रहता है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कब क्या जरूरत पड़ेगी, हम पूरा उसको
1: भर करके रखते हैं।
2: इतनी एक्सपायर्ड मेडिसिन है, निडल्स है, घरों में इंसुलिन इंजेक्शन यूज होते हैं, इतने निडल्स हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्लास के टुकड़े हैं, ये सब चीजें, और आपके सैनिटरी पैड्स हो गए, डाइपर्स हो गए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आप उनको मिक्स कर सकते हैं किसी के भी साथ। बिल्कुल भी नहीं। सैनिटरीज एंड डाइपर्स और आपके सब मेडिसिन और बायोमेडिकल जो भी वेस्ट है, ये सब आपका बिल्कुल सेपरेटेड हैजार्डस यानी कि एक डेंजरस कैटेगरी, रेड कैटेगरी में होना चाहिए।
1: ओके, यानी जो रेड वाला डस्टबिन है उसमें आप अपना जितना भी मेडिकल वेस्ट है, जैसे चोट लगी तो कॉटन या बैंडेजेस जो होती हैं वो इसमें डालें, आपने कहा कि यूज्ड पैड्स और डायपर्स भी जो होते हैं वो भी इसी में डालने चाहिए।
2: जी,
1: तो जैसा कि निधि जी आपने बताया चार कलर्स, अब ये चार कलर आप फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी रेडियो ऑन किया होगा तो उनको शायद रेड वाला या येलो वाला ही सुनाई दिया होगा, तो बाकी चारों कलर एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिपीट कर दीजिए।
2: हाँ बिल्कुल। तो ग्रीन हो गया आपका वेट वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट, देन आपका ब्लू आता है जिसमें ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक्स और पेपर्स वगैरह, उसके बाद येलो वेस्ट है जिसे हम ई वेस्ट बोलते हैं, आपके वायर्स, मोबाइल्स, एंड द लास्ट कैटेगरी इज हैजार्डस वेस्ट जिसको आप रेड कलर से दिखाते हो, जिसमें आपका बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी एंड डायपर्स आते हैं।
1: तो ये चार कलर हैं जिनको आप हमेशा याद रखें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी धरती जो है वो बची रहे और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हम आज की तारीख में फेस कर रहे हैं, थोड़े से कदम आपको उठाने पड़ेंगे। हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि हमेशा सरकारें कुछ करें, हमें भी एक आम नागरिक की तरह थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और ये सबसे आसान कोशिश है चार अलग अलग बॉक्सेस जिनको आप डस्टबिन के तौर पर यूज़ करें। इनमें एक प्रॉपर तरीके का जो मार्केट में मिलता है बैग, जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों में लगाइए और इसमें चारों कैटेगरी के जो वेस्ट होते हैं उसको डालिए, जो निधि जी ने बताया है कि ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड, ये चार कलर के मीडियम साइज के डस्टबिन की जगह आपको घर में बना लेनी चाहिए, ताकि जब भी आपको कहीं पर कूड़ा या वेस्ट जो आपसे लिया जाता है, हर रोज जो कचरे वाले आते हैं वो लेके जाते हैं, तो आपको इन चार तरीके की अलग अलग जो बैग्स हैं वो उनको देने हैं। तो निधि जी ये तो बात हो गई कलर कोडिंग की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ इतना ज़्यादा जो सेग्रीगेशन है ये हमने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा है, या फिर हमने किसी ऐसी जगह पर देखा है जहाँ पर हेल्थ का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, क्लिनिक्स में आपने देखा होगा या फिर डायग्नोस्टिक लैब्स में देखा होगा, लेकिन अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हमने ये सेग्रीगेट नहीं किया, जो कि हम सालों से नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे देश में लोग, या फिर मैं कहूँ कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, सो अगर सेग्रीगेशन नहीं किया तो कितना

0: खतरनाक साबित हो सकता है या इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
1: तो दीक्षा, सबसे पहले तो ना हमारी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमें लगता है कि हमारे घर से कचरा बाहर गया यानी कि अब वो गायब हो गया हमारे लिए, है ना, डिसअपीयर है। हमें ये नहीं पता कि वो कचरा लौट करके फिर हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी करता है। तो वो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं एज अ हाउस होल्ड, ठीक है। और दूसरे बहुत बड़ी चीज़ जो है, जो अभी गाजीपुर वाला एक्सीडेंट हमें थोड़े टाइम पहले हमें याद है क्या हुआ था, कि वो जो ब्लास्ट था उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही था कि वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं था। उसमें आपके ऑर्गेनिक वेस्ट भी था और प्लास्टिक वेस्ट भी था। और ये जब दोनों चीज़ें मिलती है तो आपका जो है बहुत सारे मिथेन गैस, मिथेन हमें पता है ग्रीन हाउस गैस है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: राइट। तो वो जो मिथेन गैस है वो वहाँ से रिलीज हुई या ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से कितना नुकसान सहना पड़ा। अब हमारे घर को नहीं लेकिन जिन लोगों को सहना पड़ा उनके भी तो हाउस होल्ड होंगे। तो वेस्ट सेग्रीगेशन एक घर अगर कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सब लोगों के लिए बन रही है, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपको उसकी परेशानी झेलनी पड़े।
0: बिल्कुल।
1: और वही एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, आज आप देख रहे हो कितनी गर्मी है, टेम्परेचर 46-47 तक पहुंचने लगा है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें मई में तो इट वाज 44 मैक्सिमम,
0: मतलब हर साल 1-2 डिग्री बढ़ रहा है।
1: तो वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया मिथेन, ऐसे ही जब आप कंप्लीट बर्निंग नहीं करते हो, जैसे आप कूड़ा जला देते हो कहीं पर भी, तो क्या होता है कि धीरे धीरे बर्निंग जो होती है कई बार पूरी तरह से नहीं हो पाती। और जब अधूरे में जो धुआं आपको स्मोक जो दिखता है वो क्या होता है, असल में वो कार्बन मोनोक्साइड होता है। और कार्बन मोनोक्साइड एक ऐसी गैस है, जहरीली गैस है मैं कहूँगी, जब सांस के थ्रू हमारे अंदर जाती है शरीर में तो हमारा जो ऑक्सीजन जो पूरी शरीर में फैल रहा है उसकी उसको रिड्यूस कर देती है, उसको रोक देती है, उसको धीरे कर देती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें बॉडी में तो फिर क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे और बहुत सारी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये तो दो एग्जांपल हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सैनिटरी वेस्ट को अगर मिला दिया आपने तो अमोनिया, आपको जो बहुत गंदी सी स्मेल आती है कई बार कूड़े में से, तो उसका रीजन यही है कि या तो आपने वहाँ पे सैनिटरी पैड्स डाइपर्स वो मिक्स हो गए हैं, या फिर आपका प्रोटीन रिलेटेड वेस्ट जो होता है जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, आपके घी हो गया, इस टाइप से जब हम क्लीन करके नहीं डालते हैं, आप दूध लेते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो धो करके उस प्लास्टिक की पॉलिथीन को वेस्ट में डालते हैं। तो जब मिल्क लगा हुआ है उसके अंदर तो मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन है वहाँ पर, और जब प्रोटीन के बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे माइक्रोब्स जब उस पर काम करना शुरू करते हैं और बाकी वेस्ट के साथ मिक्स होता है, प्लास्टिक वेस्ट और अदर वॉलेटाइल वेस्ट के साथ, तो वो अमोनिया रिलीज करता है। और अमोनिया फिर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपका जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके साथ मिलकर H2S गैस होती है। तो ये और कार्बन्स हैं, फ्यूरेंस हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल वॉलेटाइल गैसेस हैं जो सब टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं हमारे लिए। तो ओवरऑल वो पूरे एनवायरनमेंट को और हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वो हमें सोचना है क्या हम ये चाहते हैं, या हम बहुत ही जो छोटा सा स्टेप है जो हम अपने लेवल पर कर सकते हैं वो करना हमारे लिए आसान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यानी कोशिश तो देखो सबसे पहले हमें ही करनी पड़ेगी। हम कितनी भी बात कर लें कि यूनाइटेड नेशंस की कोई क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेज हैं, चाहे कोप हो या कोई और हो, इसमें बड़े बड़े बातें होती हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स डिस्कस होते हैं, कुछ हद तक काम होता भी है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही जो है बातचीत के बाद ख़त्म हो जाती हैं, काम होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन आप इन सब बड़े बड़ी चीज़ों की बात ना करें, सिर्फ अपने रोज़ के कचरे को अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा स्टेप होगा आपकी चीज़ों को बेहतर करने का, आपकी धरती को एक बेहतर रूप देने का।
1: जी
0: निधि जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में गार्डन्स हैं। अब गार्डन्स में क्या होता है कि आपने किचन गार्डन बना लिया, आपने अपना बाहर थोड़ा सा एरिया जो है उसमें गार्डन बना लिया, बहुत सारे प्लांट्स लगाने का आजकल लोगों को बहुत शौक है। और अब तो इंस्टाग्राम रील्स को देख के लोग मतलब बहुत खुश हो जाते हैं घर में ग्रीनरी दिखा के कि हमने बहुत ध्यान रखा। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी आता है कि जो सूखे पत्ते होते हैं
1: जी,
0: वो आप माली को देते हैं इकट्ठे करके, आपका माली खुद इकट्ठा करता है, आप उसे बोलते हैं वहाँ नीचे जाके जला देना। और ये एक ऐसी मुझे लगता है कि आदत है जो प्रैक्टिस आप डेली कहीं ना कहीं तो देख ही रहे हैं
1: जी।
0: आप अगर 10 किलोमीटर के दायरे में जाते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं तो 3-4 जगह ऐसे कूड़ा या पत्ते जलते हुए मिल जाएंगे, ख़ासतौर पर से जहाँ ग्रीन बेल्ट होती है उसके आसपास भी
1: जी।
0: सो इसका क्या नुकसान है, क्योंकि ये भी एक वेस्ट ही है, लेकिन इसको सेग्रीगेट करने का तरीका किसी को नहीं पता
1: जी। देखिए वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये, मैं कहूँगी आपको अगर पत्ते हैं सूखे तो वो तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो एक रिसोर्स है।
0: उसमें खाद बनाने का बहुत बड़ा रिसोर्स होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, खाद बनाने का बहुत बड़ा रिसोर्स है और उसमें आपके कोई भी केमिकल्स नहीं है जब तक आपने उसे जलाया नहीं, कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा वो एनवायरमेंट को जब तक आपने उसे जलाया नहीं। जैसे हम पराली की बात करते हैं, पराली भी वही चीज है कि आप सूखे पत्ते जला रहे हैं वहां पे, आप जो फील्ड में आपका रह गया स्ट्रॉ या जो गेहूं या सब काटने के बाद उसको आप जला रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप डिकम्पोज कर लें, डिकम्पोज करना मतलब उसको आप खाद में कन्वर्ट करें, वो किस तरह से कर सकते हैं? बहुत आसान है, अगर आपके पास में गड्ढा खोद के आप डालना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन ग्राउंड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और आप छोटी जगह में रहते हैं तो एक ड्रम लेकर के और उस ड्रम में अगर आप उन पत्तों को इकट्ठा कर रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा पेपर और कार्डबोर्ड मिला दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए
0: तो अच्छा
1: अपने आप ही वो आपको, और उसमें एरेशन के लिए मतलब हवा जाए ताकि बदबू ना हो उसके लिए आप छेद कर दीजिए, उतना ही काफी है उन पत्तों के लिए, आपको जलाने की जरूरत ही नहीं है। और जलाने से मैंने अभी आपको बताया कार्बन मोनोक्साइड अगर वहाँ पे जनरेट हो रही है तो आप जिन पार्कों को और अपने घर को जो सेफ मानते हैं वो सबसे डेंजरस जगह हो जाएगी आपके लिए।
0: और मैंने निधि जी बहुत सारे ऐसे पार्क्स देखे हैं जहाँ पर सफाई बहुत अच्छी होती है, कोने में कहीं पत्तों का एक ढेर जला दिया जाता है और खुद ही मैंने देखा है उन लोगों को जो पार्क को क्लीन करने में बिलीव करते हैं वही पत्तों को जलवा देते हैं और उसकी इतनी फाउल स्मेल, सुबह सुबह 7 बजे 6 बजे आप वॉक कर रहे हो आपको वो फील होती है और आपका मन करता है कि यहाँ से आप भाग जाए कहीं
1: जी।
0: सो फायदा नहीं हुआ ना उस पार्क को साफ रखने का जब आपने इतनी ज़्यादा जहरीली हवा जो है उस पूरे एनवायरनमेंट में क्रिएट कर दी। तो आपके कहने का मतलब है ये सूखे पत्ते जो हैं वो गोल्ड की तरह है और उसको आप एक नीले ड्रम में डाली। आप एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को बताइए कि क्या क्या करना है अगर आपके घर में सूखे पत्ते इकट्ठे हो रहे हैं तो। निधि जी बता रही हैं कि आप इससे खाद कैसे बना सकते हैं
1: जी। देखिए बहुत तरीके हैं, चाहे ड्रम हो, चाहे कई बार हम यूज्ड मटके होते हैं आपके घर में है ना, वो भी नहीं है तो कोई कंटेनर भी हो सकता है, वो भी नहीं है तो जाली आती है, सिर्फ आप एक छोटी जगह मरी अपने मिट्टी के वहीं पर आप जाली से एक वो बना दीजिए घेरा,
0: हाँ
1: एक घेरा बना दीजिए, सारे सूखे पत्ते आप उसमें डाल दीजिए और बीच बीच के अंदर उसके अंदर थोड़े कागज, थोड़े कार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर्स कुछ भी डाल सकते हैं जो वेस्ट है आपका। ये इसलिए जरूरी है कि देखो एक कार्बन होता है एक नाइट्रोजन होता है, तो इसका रेशियो जब परफेक्ट होता है तो आपकी खाद अच्छी बनती है।
0: ओके
1: तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें फिर थोड़ी आप मिट्टी डाल दीजिए क्योंकि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उस पर काम करते हैं और वो आपकी मिट्टी में आसानी से मिलते हैं और वो मिट्टी आप थोड़ा डाल दीजिए और थोड़ा मॉइस्चर आपको उसमें ध्यान रखना होता है, पानी का लेवल एकदम सूखा नहीं होना चाहिए एकदम गीला नहीं होना चाहिए। देखिए सूखा होगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगी, कोई भी मतलब माइक्रोब्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत गीला कर दोगे तो दूसरे तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत गीले में काम करते हैं तो वो नहीं काम कर पाएंगे वहाँ पर जो करने चाहिए माइक्रोब्स, तो वो भी आपको ध्यान रखना,
0: मतलब थोड़ा बैलेंस जो है वो बना के रखना।
1: लेकिन बहुत आसान है ये, आप करने लगो तो थोड़ा सा हिलाना जरूरी है उसको ताकि उसमें हवा ऊपर नीचे आप पलट सको उनको पत्तों को। तो ये मुझे लगता है जैसे जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और एक हैबिट बना लें कि मॉर्निंग में सुबह एक बार ऐसे कर देना, हिला देना उनको, उतना काफी है। या आप अपने माली को ही बोल दीजिए, क्योंकि देखो ये नॉलेज बहुतों के पास है लेकिन एक से दूसरे को बताना और दूसरे से तीसरे को बताना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें अगर आपको खाद बनने में 40 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगेगा
0: और वो कितनी सारी खाद फ्री की बन जाएगी आपके।
1: और इसी में आप सूखे पत्तों में आप किचन वेस्ट डाल दीजिए अपना, जो आपके छिलके हैं सब्जियों के फ्रूट्स के वो डाल दीजिए उसके अंदर, तो आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो और थोड़े थोड़े दिन में आप देखोगे वो धीरे धीरे जो है वॉल्यूम कम होता जाएगा उसका, जो घेरने का जो जगह है वो कम होती जाएगी,
0: जितना वो फूला हुआ था पत्तों से भरा हुआ था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि वो प्रॉपरली खाद बन रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, खाद बन रहा है और वो खाद जो होती है वो थोड़ी भारी होती है।
1: बिल्कुल, और इसी से आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने जो कितना कचरा था उसका वॉल्यूम कितना कम कर दिया। और यही वॉल्यूम जाकर के जब बड़े बड़े कचरों के ढेरों में चला जाता है यही वेस्ट, तो वहां पर जाके वो नुकसान करता है और यहाँ पे आप फायदा कर रहे हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये आप आसानी से कर सकते हो। आपको लगता है बारिश आ रही है थोड़ा कवर कर दीजिए, धूप तेज है तो थोड़ा पानी का ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और उसमें धीरे धीरे ना हल्की हल्की हीट जनरेट होती है। कंपोस्ट जब आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आप राइट डायरेक्शन में हो, आप सही कर रहे हो,
0: गर्माहट आएगी उसमें,
1: बिल्कुल गर्माहट। लेकिन अगर वो नहीं भी आ रहा है तब भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपकी खाद ही बनेगी और कुछ
0: और
1: नहीं
0: कुछ बन नहीं सकता। हाँ। जी बिल्कुल, यानी खाद बनाने का इससे सिंपल प्रोसेस मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी होता है। आपके पास सूखे पत्ते हैं जो आपके पेड़ों से झड़ चुके हैं, और आज के सीज़न में अगर मैं देखूं तो इतने सारे हवा चलते ही, जो गर्म हवा चलती है, नॉर्मल हवा चलती है, इतने पत्ते गिरे होते हैं सड़कों पे, अगर उन सबको उठा के ऐसे ही कुछ पिट्स बना दें या फिर कुछ ऐसी जगह बना दें जहां पर खाद बनाई जाए, सो इससे बढ़िया मुझे तरीका लगता नहीं है कोई इसका सेग्रीगेशन का।
1: इससे अच्छा आसान तरीका नहीं है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है खाद बनेगी नहीं बनेगी, आप बेफिक्र होके ये प्रोसेस करें। गलती भी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा फाउल स्मेल आने लगेगी, तो आप मिट्टी डाल दीजिए और सूखे पत्ते डाल दीजिए। आपको लग रहा है कि थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा हो गया है, आप फिर पत्तों से कवर कर दीजिए। आपको लग रहा है सूखा हो गया है तो पानी डाल दीजिए। कितने ऑप्शंस हैं, आप कुछ नहीं खो रहे हैं इसमें, सिर्फ पा ही रहे हैं।
0: एंड इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल, सो नो रिस्क ऑफ हजार्डस थिंग्स कि ऐसा कुछ दिक्कत आएगी। निधि जी, अब बहुत सारी बातें आपने बता दी हैं, और चलते चलते मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम ये चार बॉक्सेस, आपने शुरुआत में बात करी कचरे के डब्बे जो ग्रीन ब्लू येलो एंड रेड है, अब इसमें जब हम कूड़े वाले को देते हैं तो उसको हमें बता के देना चाहिए ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा उसको दे दिया, अब वो सेग्रीगेट कैसे करेगा।
1: जी,
0: सो किस तरीके से हम कूड़े वाले को दें, कचरे वाले को दें, जो कलेक्ट करने आ रही है गाड़ी, उनको क्या बताएं कि इसमें मेडिकल वेस्ट है, इसमें बैटरीज है।
1: जी बिल्कुल, जो भी वेंडर MCF या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से आते हैं या आपके खुद के कलेक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, तो ऑब्वियसली उनको भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा, आपकी जानकारी से काफ़ी नहीं है, आप जितने लोगों को जानकारी दोगे उतना अच्छा है, तो आपको पहले बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कहीं पर भी लग रहा है कि ई वेस्ट वो नहीं लेने को तैयार है, तो मैं आपको बताऊँ, ई वेस्ट तो आपके लिए एक मतलब जनरेशन का भी जरिया है, आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं। ई वेस्ट बहुत सारे सेलर्स आजकल लेते हैं, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स लेते हैं ई वेस्ट, तो आप उनसे कनेक्ट करिए डायरेक्ट, वो ज्यादा अच्छा है। या फिर आजकल बहुत ऐसा है, जैसे HP का आपके पास में कोई सामान है या आपके पास में मोबाइल्स हैं आपके सैमसंग के, तो कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ई वेस्ट कलेक्टर, ऑथराइज्ड जो डीलर है उससे कनेक्ट करे। तो आप सीधा वहाँ कनेक्ट करिए, आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो वेस्ट देने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको बता के दीजिए, लेकिन बेटर यही है कि जैसे बहुत सारे कई बार रद्दी होती है आपके यहाँ पे पेपर्स और ये सब चीज़ें, आप क्यों वेस्ट में डाल रहे हैं, दे आर नॉट वेस्ट, उनको आप अलग से किसी और को दे दीजिए।
0: जी जी,
1: है ना, तो कोई और यूटिलाइज कर लेगा। या आप बहुत सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटीज़ में टीम मेंबर्स होते हैं, तो कोई आप आवाज़ उठाइए वहाँ पे किसी पर्सन को डेजिग्नेट कीजिए जो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके अलग किसी वेंडर को दे। आज हम अपने इंस्टीट्यूशन में भी प्लास्टिक वेस्ट अलग से कलेक्ट करके उस स्टार्टअप को देते हैं जो उससे बहुत सारे चेयर्स और बहुत सारे अदर आर्टिकल्स बनाता है। तो हम एज एन हाउस होल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं ये चीज़?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे थोड़े समय पहले, उन्होंने जितने भी मेडल्स बनाए थे, और ये बहुत हाईलाइट भी हुआ था ये मैटर कोविड के बाद, अचानक से जब पोस्टपोन होने के बाद जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे तो लोग हैरान हो गए थे कि उन्होंने जितने भी मेडल्स बनाए थे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज के, वो सारे ई वेस्ट से बने थे। और जितना भी जो मेटल इकट्ठा हुआ था फोन्स की बैटरीज में से या फोन्स में से जो भी चीज़ें इकट्ठी हुई थी उनके पार्ट से, वो सारा मेडल्स में इस्तेमाल किया गया था। और मुझे लगता है कि वो एक सबसे अच्छा तरीका था दुनिया के सामने मिसाल रखने का, और ये सिर्फ जापान कर सकता है फ्रेंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो शुरुआत उन्होंने करी है, और सोच देखिए इसके लिए कि इतना बड़ा आपका आयोजन हो रहा है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारे देश आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, और आपने ई वेस्ट से वो चीज़ बनाई जो कभी कोई इंसान अपने घर से बाहर फेंक ही नहीं सकता, कभी नहीं निकाल सकता। ओलंपिक मेडल जिसके घर जाएगा वो उसे अपने दिल से लगा के रखेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और इसमें गोल्ड भी होता है, इसमें ब्रॉन्ज भी है, इसमें सिल्वर भी है, सो वो एक अलग ही मिसाल थी। सो ऐसे ही आपको मेडल नहीं बनाने, आपको सिर्फ ई वेस्ट को सेग्रीगेट करना है अपने आसपास के दुकानदार या फिर कुछ हद तक कबाड़ी जो होते हैं आजकल ऑनलाइन, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा वेस्ट ले जाते हैं, आप अपने लोकल कबाड़ी से भी बात कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन जो बहुत सारी ऐप्स हैं आजकल वो भी ऐसा सामान ले लेती है, तो इनको थोड़ा सा रिसर्च करिए और फिर उसके बाद इसको ज़रूर इस तरीके से आप मैनेज कीजिए और इसको सेग्रीगेट करिए। निधि जी बहुत अच्छा लगा हमने आपसे बातचीत करी और इतने सारे

रचना डाउनलोड कीजिए iOS स्टोर प्ले स्टोर से, और पॉडकास्ट सेक्शन में आप जाकर इस खास कार्यक्रम की पूरी सीरीज के अलग अलग इंटरव्यूज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें सपोर्ट किया पीटीसी फाइनेंस इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एंड इको क्लब। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और रखिए अपनी इस पृथ्वी का ख्याल। ग्रीन ग्रह प्रोग्राम में आज बस इतना ही।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है वो आप सभी को अंग दान जो है ऑर्गन डोनेशन, देह दान यानी बॉडी डोनेशन और उतक दान टिश्यू डोनेशन के बारे में जानकारी देना तथा समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। इस प्रोग्राम में हम डॉक्टरों, अंगदान से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे और अंगदाताओं की कहानियां, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण की जानकारी और आपको इन विषयों को क्यों जानना चाहिए, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज ऑर्गन इंडिया की सीईओ सुनैना सिंह बात करेंगी एक चमत्कार के बारे में और एक व्यक्ति से जो इस चमत्कार के द्वारा एक दूसरी जिंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, हम हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के प्रत्यारोपण के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल का प्रत्यारोपण अपने में ही एक चमत्कार है। लोग हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 15 साल तक नए दिल के साथ जी सकते हैं। आज सुनैना सिंह बात कर रही हैं श्री अमित दुआ जी से, जिन्हें 2 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट मिल चुका है किसी ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने मरने के बाद अपने अंगों को दान कर दिया। सुनैना उन्हीं के साथ है, चलिए उनकी बातें सुनते हैं।
1: आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार। मैं सुनैना सिंह हूं और हम बात कर रहे थे हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। अब हमारे साथ हैं श्री अमित दुआ, जिनको मार्च 2017 में सचमुच एक अनमोल उपहार मिला था, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट। अमित जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: अपनी नई जिंदगी का दूसरा साल मुबारक हो।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: मैं अपने सुनने वाले को बता दूं कि मेरी पहली मुलाकात अमित जी से उनके हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले हुई थी, जब वो हमारे ऑफिस आए थे हार्ट ट्रांसप्लांट की जानकारी लेने, और वो हमारे पराशर फाउंडेशन की स्वर्गीय चेयरपर्सन मिसेस कीर्ति पराशर, जिनका खुद का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उनकी राय लेने आए थे। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, दिल की गंभीर बीमारी से हार्ट ट्रांसप्लांट होने तक। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और बात हार्ट ट्रांसप्लांट तक कैसे पहुँची?
2: ये सफ़र मेरे बचपन से ही शुरू हुआ। मुझे बाय बर्थ हार्ट ट्रबल थी, विच जब 6 महीने का था तो पता लगा था। मेरा पहला ऑपरेशन 2000 में एम्स पे हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने कहा था कि ही कैन पुल ऑन फॉर 15 ईयर्स और ज़्यादा, अगर जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ही विल नीड एन अदर सर्जरी, पर कब और कैसे वो हालात देखेंगे। पर 2015-16 से मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, जिसके बाद वो लगातार खराब होती रही। तब डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम सेकंड सर्जरी नहीं कर सकते, बट ट्रांसप्लांट वुड बी, दिस वाज दी ओनली चॉइस फॉर मी। अगर मेरे को ठीक आगे लेना रहना है तो ट्रांसप्लांट ही एक जरिया था। तो उसके लिए डॉक्टर्स ने फिर मेरे को ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया कि आप ट्रांसप्लांट के लिए जाइए, और जो शुरू की प्रक्रिया है उससे गुजरने के बाद मेरे को ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया गया चेन्नई में डॉक्टर बाला के पास, जो कि लास्ट 2017 में हुआ मार्च में।
1: तो इस वक्त जब आपको पता चला कि मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए होगा, आपको अजीब लगा या कि आपको अपना हार्ट निकाल के किसी और का हार्ट डालना है, और ये पूरी प्रक्रिया आसान थी पता करने के लिए कि अस्पताल कौन सा है, डॉक्टर कौन सा है, क्या होगा, कैसे होगा?
2: वैसे तो दिल की बीमारी सारी गंभीर होती हैं और उनसे गुजरना कोई आसान बात नहीं है, पर चूंकि मैं एक दिल का मरीज शुरू से था तो मेरे लिए थोड़ा सा ये सहना आसान था, पर एक नया किसी और इंसान का दिल जो मेरे दिल में धड़कता एक मुश्किल काम था, जिसके लिए मुझे मेरे डॉक्टर्स ने समझाया कि ये एक जरूरी है, इसके बिना अब आगे जाना मुश्किल होगा। उन्होंने मुझे समझाया और मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर बाला, जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और आपके केस में स्पेशली ही इज द ओनली सर्जन हु कैन हेल्प यू आउट, उन्होंने मेरे को वहाँ चेन्नई के लिए सजेस्ट किया। शुरुआती टेस्ट और जो मेरी शुरुआती फाइंडिंग्स थी, डायग्नोसिस थे, वो सब मैंने दिल्ली में करवाया, बट सर्जरी के लिए मैं फिर चेन्नई गया।
1: तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको और कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मतलब अक्सर हम देखते हैं कि चुनौती सिर्फ इस बात की नहीं है कि हार्ट कहाँ से मिलेगा, चुनौती ये होती है कि परिवार का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, और नौकरी का क्या होगा। आपको ऑब्वियसली चेन्नई में वहाँ पे जाके रहना पड़ा था, तो इन सब चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया?
2: दिल मिलने के बाद जिंदगी एक नई शुरुआत लेती है, आपका परिवार आपके लिए बहुत कुछ करता है, सबसे बड़ी सपोर्ट आपके परिवार की होती है जो आपके साथ 24 घंटे हर पल हमेशा रहता है। मेरे परिवार ने भी मेरी पूरी सपोर्ट करी, फाइनेंशली, फिजिकली, मेंटली, जो सपोर्ट मेरा परिवार कर सकता था उन्होंने की। दिक्कत आती है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑर्गन मिलने में या दिल मिलने में, बिकॉज हिंदुस्तान में अवेयरनेस नहीं है। मिलने में ही मुझे 3 महीने का इंतज़ार चेन्नई में करना पड़ा, जिसके साथ मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ती गई। हालांकि मेरा अरेंजमेंट मेरे ऑफिस के साथ था कि मैं 3-4 महीने में वापस आ जाऊंगा और वो मुझे नौकरी पर रख लेंगे, बट वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, पैसे भी जेब से देने पड़े, और इट वॉज अ ट्रिपल स्ट्रेस, फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस, विच आई थिंक इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज इट कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन इन योर फ्यूचर लाइफ एंड हैज ए लॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो।
1: आपको लगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत बेहतर हुई है?
2: यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई है। आई कैन नाउ टेक द फिजिकल स्ट्रेस इन अ मच बेटर वे विद द प्रिकॉशंस। जो प्रिकॉशंस डॉक्टर ने सजेस्ट किए उसको करने के बाद आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आपको खुद फर्क महसूस होगा कि जो आपकी जिंदगी पहले थी और जो अब है, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा।
1: तो पहले आपकी आप पे क्या रिस्ट्रिक्शंस थी जो अब नहीं है?
2: पहले रिस्ट्रिक्शंस जो मेरे पे थे, मैं फिजिकली इतना एक्टिव नहीं था, मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती थी, मेरे को ब्लू बेबी सिंड्रोम था तो मैं नीला पड़ जाता था, जो चीज़ें अब नहीं है। नाउ आई कैन लाइक रियली प्ले आउट विद माई डॉटर, जो एक बहुत बड़ा एहसास है जो मैं मिस कर रहा था उसके बड़े होने पर। अब मैं उसके साथ एक समय, क्वालिटी समय व्यतीत कर सकता हूँ, जो पहले मैं अपनी फैमिली को नहीं दे पाता था, अब मैं उनके साथ कहीं पे भी कैसे भी समय व्यतीत कर सकता हूँ, जो पहले नहीं था।
1: हम बात कर रहे हैं अमित दुआ जी से, जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में मरीजों के परिवार वालों पर क्या गुजरती है? अमित जी, आपकी एक छोटी सी बच्ची है, आपकी वाइफ भी है, पेशेंट्स के लिए जिंदगी तो मुश्किल होती ही है, लेकिन उनके आसपास वालों पर भी बीमारी का बहुत असर या प्रेशर पड़ता है। आपकी फैमिली ने ये कैसे हैंडल किया, ये कैसे संभाला?
2: फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं हो तो आदमी इस मुश्किल दौर से नहीं गुजर सकता। आई वॉज लकी कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आ जाता है। हम लोग चेन्नई में थे तो वाइफ को भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ा, बच्चे का स्कूल लाइफ खराब हुआ, उसका स्कूल का 1 साल खराब हुआ, जो कि चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप इस प्रोसेस के लिए जाते हैं। मैं इस में भाग्यशाली था कि मेरा बच्चा छोटा था, वो एक छोटी क्लास में था तो उसका साल खराब होने से बच गया, पर अगर आपका बच्चा बड़ा है या किसी भी और बड़ी क्लास में है तो उसका स्कूल भी खराब होगा, आपकी फैमिली लाइफ भी खराब होगी, क्योंकि आपको कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए 24 घंटे चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शंस ऑपरेशन के बाद हैं उसके लिए तो सपोर्ट और ज़्यादा चाहिए। पहले 6 महीने के दौरान जो आपको सपोर्ट चाहिए वो शायद आपके नज़दीकी घर में जो सदस्य हैं उसके अलावा कोई भी आपको नहीं दे सकता। जो खाने में चाहिए, जो सफाई चाहिए, जो माहौल घर में चाहिए, वो आपका बहुत नज़दीकी जैसे आपकी वाइफ, आपका बच्चे या आपके पेरेंट्स ही आपको दे सकते हैं। बाहर से कोई भी व्यक्ति सिर्फ आपको हमदर्दी दे सकता है, सहानुभूति दे सकता है, बट आपके लिए कर कुछ नहीं सकता। सो माई एडवाइस इज, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी तो दिस इज आपकी रिकवरी में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
1: तो अमित जी, ट्रांसप्लांट को 2 साल हो गए हैं। ट्रांसप्लांट के बाद आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, आपको बहुत स्ट्रिक्ट रेजिमेंट मेंटेन करना पड़ता है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, आप बीमार ना हो। तो पिछले 2 साल कैसे गुजरे हैं आपके लिए? लोग जानना चाहेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है फिजिकली।
2: क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, इट विल बी अ मार्क इम्प्रूवमेंट। जो आप खुद अगर करवाते हैं ट्रांसप्लांट तो आपको खुद नजर आएगा। ये बात फैक्ट है कि आपको कुछ इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जो स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हैं। जितना आप अपने लिए प्रिकॉशंस लेंगे उतना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी, आप उतना बीमारी से दूर रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा है। एक बार इन्फेक्शन अगर होता है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक आम इंसान इन्फेक्शन से 3 या 4 दिन में निजात पा सकता है, पर आपका इन्फेक्शन 15 से 20 दिन ले जाएगा, जो आपके लिए उतनी ही मुश्किलें पैदा करेगी।
1: ये इसलिए भी है क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट के बाद आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स। हाँ, तो
2: इम्यूनोसप्रेसेंट से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, तो इम्यूनिटी ख़त्म होने के बाद आपकी दवाइयाँ जो 10 दिन चलती हैं वो 20 दिन चलेंगी, और उनका जो डोज ऑफ जो एक एंटीबायोटिक्स डोज होगा वो बहुत कम होगा, बहुत ही लो, जिसको कहते हैं इट विल बी अ वेरी लो डोजेज, तो उतना ही टाइम आपका रिकवरी के लिए बढ़ता जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि जितना प्रिकॉशंस आप लेंगे आप उतना सेफ रहेंगे।
1: और ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपका हार्ट रिजेक्ट हो जाएगा,
2: रिजेक्शन चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। आपको अपनी दवाइयों में बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी, और उसके साथ रेगुलर होना पड़ेगा। जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल ऑन दोज टाइमिंग्स, यू कैन नॉट मिस ऑन दोज मेडिसिंस।
1: और जो दवाइयाँ आपको जिंदा रख रही हैं वो आपकी इम्यूनिटी भी कम कर रही हैं, सो आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि मरीज तो काफ़ी हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के, जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट चाहिए, लेकिन वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए राज़ी नहीं होते। शायद वो समझते हैं कि मैं अपना हार्ट कैसे निकाल दूँ, किडनी निकाल सकते हैं, लिवर निकाल सकते हैं, लेकिन हार्ट की बात ही कुछ और है। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे उन मरीजों को जिनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना है? क्योंकि हमारे बहुत डॉक्टर हैं जो बोलते हैं, मरीज साफ मना कर देते कि नहीं डॉक्टर साहब आप कुछ भी कर दो लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे।
2: देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट अगर डॉक्टर्स कह रहे हैं तो वो ज़रूरी है, कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा रिस्क अपने ऊपर नहीं लेगा। ट्रांसप्लांट आपको एक नया जीवन दे रहा है, कोई भी डॉक्टर आपको जीवन देने के लिए किसी का जीवन या आपका जीवन ख़त्म नहीं करेगा। इस बात को आपको सोच के चलना चाहिए कि आपको जीवन देने के लिए ही डॉक्टर्स, आपके बेनिफिट के लिए ही डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ेगी, ठीक है कुछ दवाइयां हैं, एहतियात हैं, बट आपकी लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जितना आप डिले करेंगे प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ेंगी, किसी और के लिए नहीं। तो आई थिंक अगर वो डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं गो फॉर ट्रांसप्लांट, आप जितना जल्दी करवाएंगे उतना बेटर है, और जितना लेट करेंगे प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ती जाएंगी, किसी और के लिए नहीं।
1: तो अमित जी, आपको हार्ट मिला है वो किसी डोनर से मिला है। भारत में तो बताते नहीं है कि डोनर कौन है, आपको पता नहीं होगा कि कौन होगा डोनर, लेकिन कैसा लगा कि किसी ने आपके लिए जाते वक्त हार्ट दे दिया?
2: मैं उस फैमिली को और अपने डोनर को हमेशा के लिए शुक्रिया ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो मेरा दोस्त कौन है जिसका दिल मेरे में धड़क रहा है। उसके लिए मैं हमेशा उस फैमिली को और उन सबको, अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, अपनी फैमिली को धन्यवाद कह सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि जिसने भी हार्ट दिया है वो एक नेक काम करके गए हैं, और उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और आगे भी सबको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप अपना हार्ट डोनेट करें, ताकि मेरी तरह जो लोग हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं, जो कि अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको एक मीनिंगफुल लाइफ मिले आगे, वो जी सकें।
1: थैंक यू वेरी मच अमित जी, आप इतनी दूर आए हमारे पास और हमारे श्रोताओं को अपनी पूरी कहानी बताई विस्तार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले जीवन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद।
0: थैंक यू सुनैना। यदि आप हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो हम बात कर रहे थे अमित दुआ जी से, जो कि एक हार्ट ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं। उन्होंने हमें अपने मुश्किल सफर के बारे में बताया तथा कैसे एक परिवार ने अंग दान कर उन्हें एक नया जीवन दिया, ये भी बताया। और इसी के साथ आप सभी के लिए भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी ने एक सुंदर सा मैसेज भेजा है, आइए सुनते हैं। अनूप जी, आप सबको क्या कहना चाहते हैं?
3: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने जिंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा जिंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद।
0: जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी

0: खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
1: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा। और आ गई हूँ मैं लेकर एक बार फिर से आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, यानी कि सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, हर हफ्ते लेकर आ जाती हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर दुनिया के उन महान व्यक्तियों की हम बात करते हैं, उनकी कहानियाँ लेकर आते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से और अपने पक्के इरादे के दम पर एक इतिहास रचा है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सफलता की कहानी को ही नहीं सुनाना होता है, बल्कि उन अनुभवों को सिखाना होता है, समझाना होता है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाकर कुछ अचीव करा हो अपनी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की, जी हाँ, जिनका नाम संघर्ष, साहस और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को माफ करने और एकजुट रहने की ताकत दिखाई। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला सिर्फ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ किसी पद या फिर हासिल करने का नाम नहीं होता, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने सिद्धांतों पर टिककर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनकी जर्नी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18th ऑफ जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका असली नाम रोहिलाला मंडेला था। बचपन में उनका जीवन बहुत ही सादगी भरा हुआ था। वो एक आम परिवार से आते थे, गाँव के दूसरे बच्चों की तरह बड़े भी हुए, लेकिन बचपन से ही उनमें एक सीखने की लगन और एक अलग सी झलक नजर आती थी। मंडेला को शिक्षा का बहुत महत्व समझ में आया। उनका मानना था कि एजुकेशन वो शक्ति होती है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और साथ ही धीरे धीरे समाज में हो रहे भेदभाव और अन्याय के बारे में समझाना शुरू किया। यही वो समय था जब उनके अंदर एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने वाली थी। एक ऐसी सोच जो समानता, न्याय और आजादी के लिए लड़ने का हौसला देती है। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की जिंदगी का असली संघर्ष अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आगे के सफर में उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। देखा दोस्तों, यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक ऐसे व्यक्ति ने जिन्होंने कुछ अचीव कर रखा होता है। वो जब भी प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को वो प्रॉब्लम नहीं समझते, उससे ना एक सॉल्यूशन समझते हैं, एक रास्ता समझते हैं कि शायद इस पर चलकर ही मुझे कुछ अचीव होगा। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम करने वाले हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील राइट।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस मंत्रा, वो भी सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष को देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके संघर्ष के बारे में। पिछले सेगमेंट में हमने उनके बचपन और शुरुआती जीवन के बारे में जाना था थोड़ा बहुत, अब समय है समझने का कि उस समस्या को जिसने नेल्सन मंडेला को एक आम इंसान से दुनिया के महान नेताओं में शामिल कर दिया, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों उस समय साउथ अफ्रीका में एक व्यवस्था थी जिसे एप्रीथेट कहा जाता था। एप्रीथेट का मतलब होता था कि लोगों के साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव करना। काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग नियम थे। काले लोगों को कई बुनियादी अधिकारों से दूर रखा जाता था, उन्हें अच्छी शिक्षा ना देना, रोजगार और आजादी के मौके भी बराबरी से नहीं मिलते थे। नेल्सन मंडेला ने जब इस अन्याय को अपनी आंखों के सामने देखा होते हुए, तो उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो ये भेदभाव कभी भी खत्म नहीं होगा। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वो एक वकील के रूप में काम करना शुरू करा। उन्होंने वकील बनने के बाद उन्हें और ज्यादा गहराई से समझ में आया कि किस तरह से आम लोगों अन्याय का शिकार हो रहे हैं। मंडेला धीरे धीरे अफ्रीकन नेशन कांग्रेस यानी कि ANC से जुड़े। ये एक ऐसा संगठन था जो समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। मंडेला ने शांति और संघर्ष के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वो गांव-गांव और शहरों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने लगे। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सरकार को मंडेला और उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, उन पर नजर रखी जाने लगी, उनके गतिविधियों को रोकने की कोशिश भी की गई और कई बार उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन मंडेला ने डर के सामने झुकने की बजाय अपने इरादों को और ज्यादा मजबूत कर लिया। उनका मानना था कि अगर आप सच और न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, यानी अपनी सोच को दूसरों से अलग बनाना होता है। मंडेला ने हमें सिखाया है कि सच्चा लीडर वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के अधिकारों के लिए भी खड़ा हो। लेकिन दोस्तों मंडेला की इस लड़ाई का एक बड़ा परिणाम सामने आने वाला था। सरकार ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता और आंदोलन को अपने लिए खतरा माना और फिर आया वो मोड़ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। क्या था वो मोड़, बताऊंगी मैं आपको इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर, और मैं हूं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला के साथ, नेल्सन मंडेला की प्रेरणादायक जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मंडेला ने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया, लेकिन हर बड़े बदलाव की कीमत होती है और मंडेला को अपने फैसलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या थी वो कीमत दोस्तों? जैसे जैसे मंडेला की लोकप्रियता बढ़ रही थी लोगों में, उनका आंदोलन मजबूत होते जा रहा था। साउथ अफ्रीका की सरकार उनसे ज्यादा चिंतित होने लगी। सरकार को लगने लगा कि मंडेला और उनके साथी उनकी नीतियों के लिए चुनौती बन रहे हैं। इसी वजह से उन पर कई आरोप लगाए गए और उनकी गतिविधियों पर भी सख्त नजर रखी जाने लगी। आखिरकार साल आया 1962, जिसमें नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। जब फैसला सुनाया गया, तब मंडेला जानते थे कि उनकी जिंदगी एक बहुत लंबा हिस्सा जेल की दीवारों के बीच गुजारने वाले हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये थी कि इतनी बड़ी सजा के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने विचारों और अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। नेल्सन मंडेला का मानना था कि किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कैद किया जा सकता है, लेकिन उसकी सोच और सपनों को कभी कैद नहीं किया जा सकता। जेल में जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन था, उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, परिवार से मिलने के मौके बहुत कम मिलते थे और कई बार उन्हें अलग थलग भी रखा गया था। लेकिन मंडेला ने हर मुश्किल को एक सीख की तरह लिया। उन्होंने जेल के समय को गुस्से और नफरत में बर्बाद करने की बजाय खुद पर और ज्यादा मजबूती से काम करना शुरू किया। वो पढ़ते रहे, सीखते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। धीरे धीरे जेल भी उनके लिए क्लासरूम सा बन गया, जहाँ वो धैर्य और अनुशासन की नई परिभाषा लिख रहे थे। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मंडेला ने हमें दिखाया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और इरादे मजबूत हो, तो मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थिति में भी उम्मीद जिंदा रखी जा सकती है। लेकिन मंडेला की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जेल के अंदर बिताए गए सालों ने उन्हें और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बना दिया। दोस्तों, वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की। और साथ ही दोस्तों आज हम चल रहे हैं नेल्सन मंडेला की जिंदगी और उनके सफर के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतना बड़ा नाम बनाने के लिए। दोस्तों जिंदगी के उस दौर को समझ रहे हैं हम, जहाँ पर अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मंडेला ने अपनी सबसे बड़ी ताकत वहीं से हासिल की। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे उन्हें गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब बात करते हैं उन 27 सालों की जो उन्होंने जेल में बिताए थे। ये कोई छोटा समय नहीं होता है, सोचिए लगभग 3 दशक तक आजादी से दूर रहना, अपने परिवार से अलग रहना और हर दिन एक ही तरह से कठिन परिस्थितियों का सामना करना। ऐसे में बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इस समय को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। नेल्सन मंडेला का मानना था कि इंसान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। जेल में रहकर भी उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। वो लगातार पढ़ते रहे, नए विचारों को समझते रहे और अपने आप को बेहतर बनाते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि वो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखते थे। जेल में नेल्सन मंडेला ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी, वो था धैर्य, पेशेंस, जो कि आजकल लोगों में बहुत कम है। ये अगर आपने रख लिया तो समझ लीजिए कि आपको लाइफ में आधी से ज्यादा चीजें तो खुद ब खुद मिल जाएंगी। आज की दुनिया में ना सब कुछ ऐसा चाहिए हमें कि सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन मंडेला ने दिखाया है कि बड़े परिवर्तन और बड़ी सफलता के लिए कभी कभी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी नजर से ओझल नहीं होने दिया और इसमें सबसे प्रेरणादायक बात तो ये थी कि इतने सालों की कैद के बाद भी उनके दिल में कभी नफरत नहीं थी। जिन्होंने उन्हें जेल भेजा उनके प्रति भी नेल्सन मंडेला में कभी बदले की भावना नहीं आई। वो समझ चुके थे कि नफरत सिर्फ इंसान को अंदर से कमजोर बनाती है, जबकि माफी और समझदारी से इंसान मजबूत बनता है। और बस यही वजह थी कि जेल में रहते हुए भी मंडेला की पहचान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ती गई। लोग उन्हें सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि न्याय और आजादी की आवाज के रूप में देखने लगे। उनका नाम संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक बन गया। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

करते हैं उनकी आजादी और उसके बाद के नेतृत्व की। दोस्तों साल था 1919 में नेल्सन मंडेला को 27 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिकी हुई थी। लोग सोच रहे थे कि इतने सालों तक अन्याय सहने के बाद शायद उनके दिल में गुस्सा और बदले की भावना होगी, लेकिन मंडेला ने जो किया उसने दुनिया को ही हैरान कर दिया। जी हाँ, उन्होंने बदला नहीं बल्कि मेल मिलाप का रास्ता चुना। उनका मानना था कि अगर साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाना है तो लोगों को एकजुट होना होगा। नफरत और बदले की भावना सिर्फ देश को और ज्यादा बांट देगी। इसलिए नेल्सन मंडेला ने माफी, संवाद और एकता पर जोर दिया। ये फैसला आसान नहीं था। बहुत से लोग चाहते थे कि पुराने अन्यायों का जवाब दिया जाए, लेकिन मंडेला दूर की सोच रखते थे। वो जानते थे कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो भावनाओं में बहने की बजाय देश की भविष्य के बारे में सोचे। उनकी मेहनत और नेतृत्व का परिणाम ये हुआ कि साल 1994 में साउथ अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिला। इसी चुनाव में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी बल्कि न्याय और समानता की जीत थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मंडेला ने सत्ता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि उनका ध्यान देश को मजबूत बनाना था, लोगों को जोड़ना और एक बेहतर भविष्य तैयार करना था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ शक्ति हासिल करना नहीं होता, बल्कि लोगों की सेवा करना और उनको साथ लेकर चलना होता है। दोस्तों मंडेला की आज़ादी के बाद का सफर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। असली ताकत बदला लेने में नहीं है बल्कि माफ करने और आगे बढ़ने में होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है वही सच में महान बन पाता है। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा, जहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जर्नी की। उनके साथ आज हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं कि उनकी लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने कितनी सारी चीजें फेस करी, पर उन्होंने कभी भी अपना मन नहीं बदला, उन्होंने कभी भी अपने इरादों को कमजोर नहीं होने दिया। उनका मानना था कि सिर्फ शांति और प्रेम के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। जरूरी नहीं कि हर बात पर कुछ लड़ाई करना या बदला लेना या किसी को नीचा दिखाना ही हमारे लिए सही होगा, बल्कि लोगों को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की जिंदगी से मिलने वाली उन सीखों की, जो हर उम्र में इंसान को सफलता की राह दिखा सकती है। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे मंडेला ने जेल से बाहर आकर बदले की बजाय माफी और एकता का रास्ता चुना। अब समय है उनकी सक्सेस मंत्रा को समझने का। जी हाँ दोस्तों, नेल्सन मंडेला की जिंदगी का पहला सबसे बड़ा मंत्रा था कभी हार ना मानना। जी हाँ, उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन अपने सपने और लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो मुश्किलों के सामने टिक कर खड़े रहते हैं। और दूसरा मंत्र था, शिक्षा की ताकत को समझो। मंडेला का मानना था कि एजुकेशन दुनिया को बदलने का सबसे पावरफुल हथियार होता है। उन्होंने हमेशा सीखने और समझने पर जोर दिया। आज भी अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा मंत्र था, डर को अपनी सीमा मत बनने दो। मंडेला ने एक बार कहा था कि बहादुर वो नहीं होते जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो होते हैं जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। हर इंसान को किसी न किसी बात का डर होता है, लेकिन सफलता वही होती है जो उस डर पर जीत हासिल कर सकती है। और चौथा सबसे खास मंत्र, माफी की ताकत को समझो। इतने सालों तक अन्याय सहने के बाद भी मंडेला ने कभी भी नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी। उन्होंने दिखाया कि माफी कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। जब हम गुस्से और नफरत को छोड़ देते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को बेहतर कामों में लगा सकते हैं। और उनका पांचवा मंत्र था, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखना। जी हाँ, मंडेला के सामने कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को कभी नहीं बुलाया। उनका फोकस हमेशा न्याय, समानता और एक बेहतर साउथ अफ्रीका पर रहा। दोस्तों, ये मंत्र सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव है जिसने अपनी पूरी जिंदगी के सिद्धांतों पर चलकर दिखाया है। अगर हम इनमें से कुछ बातों को भी अपनी जिंदगी में अपना ले तो हम अपने लक्ष्य को और ज्यादा करीब से पहचान पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। और आज हम नेल्सन मंडेला की अद्भुत और प्रेरणादायक जिंदगी के सफर को समझ रहे थे। बचपन की सादगी से लेकर भेदभाव के खिलाफ संघर्ष तक, 27 साल की कैद और फिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बनने तक, मंडेला की कहानी हमें हिम्मत, धैर्य और इंसानियत की असली ताकत दिखाती है। दोस्तों, अगर आज के युवा नेल्सन मंडेला की जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें सबसे पहली सीख है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने लक्ष्य और सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मंडेला के पास कई मौके थे जब वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार संघर्ष को चुना और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा। दूसरी बड़ी सीख है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों का नाम नहीं होता है, बल्कि असली सफलता तब मिलती है जब आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करते हैं। मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी समानता, न्याय और अधिकारों के लिए समर्पित कर दी। तीसरी बड़ी सीख ये है कि धैर्य और अनुशासन। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हर चीज हमें तुरंत चाहिए होती है, लेकिन मंडेला की कहानी हमें बताती है कि सपने पूरे होने में समय लगता है। कभी कभी तो सफलता तक पहुंचने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और शायद उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि नफरत से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। माफी, संवाद और एकता ही वो रास्ता है जो लोगों और समाज को आगे बढ़ाता है। मंडेला ने दुनिया को दिखाया है कि एक सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। दोस्तों, इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और आप सुन रहे थे प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। फिर से मिलेंगे एक और महान व्यक्ति की कहानी के साथ, उनकी सफलता और उनकी सूत्रों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए, और जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी लिसनर्स का, और मैं आ गई हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त लेकर एक बढ़िया सा प्रोग्राम। आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि मैं आज जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो एक मशहूर संगीत निर्देशक, निर्माता रहे और गायक भी रहे, सुंदर सी आवाज़ के मालिक। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत दा की। हेमंत कुमार जी एक नया नाम नहीं आपके और मेरे लिए, कई दशकों तक ये हमारे फिल्मी संगीत जगत पे छाए रहे और बहुत ही सुंदर सुंदर गाने इन्होंने हमको दिए। केवल हिंदी ही नहीं, बंगाली, गुजराती, असमिया, तमिल, पंजाबी, बहुत सारे लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने बनाए भी और गाए भी, और बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया। ये खुद भी बहुत अच्छे सिंगर

थे और बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करते रहे। दो दो राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिले। तो दोस्तों, आज का ये सफ़र संगीतकार और सिंगर हेमंत दा के नाम पर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी। आप भी कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ हेमंत कुमार जी के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों हेमंत कुमार जी गायक, संगीत निर्देशक, निर्माता रहे। 26 सितंबर 1989 जो है ये हमारे बीच चले गए, लेकिन इनका जो पैदाइश है वो 16 जून 1920 की है। बनारस जो कि बहुत ही एक कल्चरली बहुत ही एक एनरिच्ड स्टेट है, वो इनका इनका जन्म स्थान है। और इनका पूरा नाम था हेमंत मुखोपाध्याय और पेशेवर रूप से इनको हेमंत मुखर्जी कहा गया और उसके बाद हेमंत कुमार के नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में गाया और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने गाया, चाहे वो साउथ इंडिया की हो, चाहे ईस्ट की साइड की हो, या फिर हमारे नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हो। शायद इन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं छोड़ी और साथ ही रविंद्र संगीत पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार इनको बहुत बार मिला और नेशनल अवार्ड इनको 2 बार मिले। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनको ईश्वर की आवाज़ का रूप जो है इनको माना गया। तो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे हेमंत कुमार जी। बिलीव में जब भी हम इनके गाने सुनते हैं ना, तो पता नहीं फील होता है कि आवाज़ जो है ये किसी के कंठ से, किसी के थ्रोट से इतनी डिवाइन आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो बहुत ही रूहानियत भरी इनकी आवाज़ थी, डिवाइन आवाज़ से ये ब्लेस थे। तो जब इनकी आवाज़ की बात मैं कर ही रही हूँ, तो चलिए सुनते हैं इनके गाए में कुछ और गाने। ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, तुरंत वापस आऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज हम बात कर रहे हैं आपसे मशहूर संगीतकार सिंगर हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों हेमंत जी का जन्म वाराणसी में अपने नाना के घर पे हुआ जो कि डॉक्टर थे। इनका पैतृक परिवार जयनगर मंजिलापुर शहर से आया था और 1900 के दशक में शुरुआत में ये लोग कलकत्ता शिफ्ट हो गए। हेमंत वहीं पले बढ़े और वहीं के स्कूलों में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। बाद में ये भवानीपुर इलाके में मित्रा इंस्टीट्यूशन में चले गए जहां इनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सुभाष मुखोपाध्याय से हुई जो कि एक प्रसिद्ध बंगाली कवि बन चुके थे। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध लेखक संतोष कुमार घोष से भी दोस्ती इन्होंने कर ली। दोस्तों हेमंत जी ने जब इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के लिए जब ये जादवपुर विश्वविद्यालय में आए और उसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पढ़ाई तो ये कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अपने पिताजी की बहुत सारी आपत्तियों के बावजूद, क्योंकि इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये संगीत के क्षेत्र में आए, फिर भी इन्होंने म्यूज़िक को अपना करियर बनाया। देखिए दोस्तों आजकल लाइव प्लेटफॉर्म्स बहुत है, सोशल मीडिया है, किसी को भी संगीत में अपना करियर बनाना आज मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल कोई किसी ब्रेक की वेट नहीं करता कि अब मुझे कोई बड़ा संगीतकार या कोई सी फिल्म में ब्रेक मिलेगा। आजकल सब म्यूजिशियंस हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, वो अपना गाना बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और रातों रात मशहूर हो जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था और एक आर्टिस्ट को अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए एक्चुअली रिस्क लेना पड़ता था और यही रिस्क लिया हेमंत कुमार जी ने। फैमिली ने विरोध भी किया लेकिन फिर भी ये अपने विचारों पर, अपने निश्चय पर अटल रहे, संगीत को इन्होंने अपना करियर बनाया। तो छोटा सा यहाँ पे म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, सुनते हैं इनके गाए हुए कुछ गाने और फिर मैं वापस आऊँगी और बात करेंगे इनके प्रारंभिक संगीत करियर के बारे में। सो आप कहीं मत जाइए, मैं तो यहीं बैठी हूँ, ले रही हूँ एक चाय की चुस्की, आप भी ब्रेक लीजिए, गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उस शो की होस्ट और आपकी दोस्त चांदना, और आज मैं बात कर रही हूँ इस शो में मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों हेमंत कुमार जी ने जो म्यूजिक करियर चुना वो उनका खुद का डिसीजन था, हालांकि परिवार ने बिल्कुल भी शुरुआती दिनों में उनको सपोर्ट नहीं किया, फादर ने सपोर्ट नहीं करा, फिर भी उन्होंने इसी लाइन को चूज़ किया और उनका पहला फिल्मी गाना 1940 में रिलीज़ हुआ। जी हाँ, एक बंगाली फिल्म आई और उसमें उन्होंने गीत गाया। उसके बाद में 1941 में एक और मूवी आई जिसका संगीत दिया हरि प्रसन्न दास ने। ये फिल्म थी निमाई संन्यास हुआ, इसमें इन्होंने गाना गाया। दोस्तों हेमंत कुमार जी का पहला हिंदी फिल्मी गाना आया 1942 में और मूवी का नाम था मीनाक्षी। उसके बाद में 1944 में इन्होंने इरादा मूवी में गाना गाया और उसके बाद ये गाते चले गए। हेमंत जी को रविंद्र संगीत का अग्रणी प्रतिपादक माना जाता था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से रविंद्र संगीत को गाते थे। रविंद्र संगीत के बारे में यहाँ मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर करना चाहूँगी कि रविंद्र संगीत जो है वो अपने में ही पूरा एक कम्प्लीट म्यूज़िक का स्कूल है। रविंद्र संगीत में घुसना एक बहुत महान चीज़ जिसे मैं मानती हूँ, और रविंद्र संगीत पर अपनी पकड़ बना लेना ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। तो यही संगीत जो है इन्होंने अपने अंदर उतार लिया और बहुत सारी मूवीज़, चाहे वो बंगाली थी चाहे वो हिंदी की थी, उसमें ये गाते चले गए और कहीं ना कहीं ये अपना जो है थोड़ा थोड़ा ये अपने आप को एस्टैब्लिश करते चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा ले रही हूँ म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आऊँगी और बात करेंगे इनके फैमिली बैकग्राउंड की, क्योंकि परिवार के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी हमेशा ऐसे देती हूँ क्योंकि इससे हमको सीख मिलती है कि किसके परिवार में कैसे था, किसने कितने प्रॉब्लम्स को झेला, किसको कहाँ सपोर्ट मिला, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चलाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आती हूँ और बात करेंगे हेमंत कुमार जी के फैमिली बैकग्राउंड की। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड feel la

Radio Mana Vishnu 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस शो में आज मैं बात कर रही हूँ मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी की. दोस्तों हेमंत कुमार जी के परिवार की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं. हेमंत कुमार जी तीन भाई थे और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था नीलिमा. इनके छोटे भाई एक बंगाली स्टोरी राइटर थे और इनके सबसे छोटे भाई जो अमल हैं वो संगीत में रचनाएं करते थे और उन्होंने कुछ बंगाली फिल्में भी गाने गाए हैं. कहा जा सकता है कि देखिए पूरा फैमिली ही आर्टिस्टिक बैकग्राउंड की थी, लेकिन फिर भी जब इन्होंने म्यूजिक की लाइन पकड़ी तो इनके फादर ने इनको अपोज किया. अमल जी ने 1960 के दशक में हेमंत कुमार के संगीत निर्देशक के साथ कुछ गाने इन्होंने रिकॉर्ड करे, जिसमें सबसे उल्लेखनीय गीत जो है वो एक बंगाली गीत था जीवनेर अनेका पथ एकलई. और 1945 में हेमंत जी ने विवाह किया एक गायिका थी बंगाली बेला मुखर्जी के साथ. और हालांकि उन्होंने काशीनाथ जी के साथ आगे बहुत सारे लोकप्रिय गीत भी गाए, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत एक्टिव रूप से नहीं बढ़ाया. उनके दो बच्चे थे, बेटे का नाम था जयंत और बेटी का नाम था रानू. और रानू ने भी 1960 के दशक के अंत तक और 1970 के दशक के शुरुआत तक बहुत हद तक उन्होंने भी थोड़ा सा संगीत में अपना हाथ आजमाया. और जयंत जी का विवाह जो हम सब जानते हैं, उनका बंगाली फिल्म अभिनेत्री मौसमी चटर्जी जी के साथ उनका विवाह हुआ. और तब मौसमी जी भी बहुत छोटी उम्र की थी जब हेमंत कुमार जी ने उनको अपनी पुत्र वधु के रूप में उनको स्वीकार किया. बहुत लकी मानती हूँ मैं मौसमी चटर्जी को कि इतने कल्चरली रिच परिवार में उनका शादी हुई. और वो एक्टिंग भी करते रहे, देखिए मतलब एक्टिंग में उन्होंने एकदम स्टॉप नहीं लगाया, काफ़ी सालों तक भी वो आगे एक्टिंग करते रहे. तो ये थी इनकी थोड़ी सी परिवार की इनका बैकग्राउंड. अब हम बात करेंगे इनके मुंबई शिफ्ट होने का और इनके करियर के बारे में. लेकिन लेकिन लेकिन सुनेंगे कुछ इनके गाने और ले रही हूँ यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. फील गुड फील.

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त, और लेके आई हूँ ये प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करें मशहूर संगीतकार और गायक हेमंत कुमार जी के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है हेमंत कुमार जी एक वो शख्सियत थे जिनकी आवाज़ जो थी वो रूहानियत से भरी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और 1940 के दशकों में इन्होंने गाना शुरू करा, 1950 के दशक तक आते आते इन्होंने अपनी स्थिति जो है वो काफ़ी मजबूत कर ली थी। और इन्होंने बहुत सारे संगीत जो है इन्होंने प्रोग्राम्स भी दिए और बहुत सारे सिंगर्स के साथ भी इन्होंने गाया, जिसमें मुख्य जो मैं उल्लेख करना चाहूँगी वो है लता दीदी के साथ इन्होंने बहुत सारे हिट गाने गाए। और जो सलिल चौधरी जी का जो संगीत था उस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और वो सभी गाने बहुत ज़्यादा हिट रहे। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ 1960 के दशक की, तब इन्होंने बहुत सारे मूवीज़ के साथ साथ बहुत सारे नाटक जैसे वाल्मीकि प्रतिभा, श्यामा, सबमोचन, चित्रांगदा, चंडालिका और ऐसी बहुत सारी जो इन्होंने थिएटर में काम किया जिसमें जो पुरुष आवाज़ थी उसका इन्होंने जो है बीड़ा उठाया और अपनी आवाज़ इन्होंने वहाँ प्रदान करी। और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों में हेमंत का जो योगदान था वो बहुत कम हो गया था। हालाँकि ये काम करते रहे लेकिन थोड़ा सा जो करियर का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया, लेकिन तब तक ये अपना बहुत अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे और बहुत सारे इनको सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार भी इनको मिले, चाहे वो नागिन मूवी के लिए मिला या निमंत्रण के लिए, 20 साल बाद, पलटक, मुनिहार, बालिका वधू, इन सभी के लिए इन्होंने पुरस्कार जो है वो जीते। 1970 में इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए इनका नामांकन हुआ लेकिन वो इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। 1987 में एक बार फिर पद्म भूषण के लिए इनका नाम जो है वो भेजा गया लेकिन एक बार फिर उन्होंने उस अवार्ड को अस्वीकार कर दिया। रीज़न क्या रहा ये बात कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी झोली में बहुत बहुत बहुत सारे अवार्ड्स हैं। दोस्तों, 1980 में हेमंत जी को दिल का दौरा पड़ा और उससे इनका जो गाने की क्षमता है बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हुई और ये ज़्यादा गा नहीं पाए। और 1980 और 90 के दशक में इनका जो गाना है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नीचे को आ गया। और 1989 में एक बार फिर इनको दिल का दौरा पड़ा और इनकी जो है मृत्यु हो गई। हेमंत जी आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन अपनी प्रतिभा से, अपनी रूहानियत भरी आवाज़ से आज भी इनके जो गाने हैं वो हमारे अंदर गूंज रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं लेती हूँ अपनी आवाज़ को विराम करती हूँ। हेमंत जी का जो उनका जो पूरा लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको सुनाने की बहुत छोटे से मैं कोशिश करी तो यही सीख मिलती है इनके लाइफ टाइम से हमको कि एक ऐसा करियर जिसको उन्होंने खुद चुना, एक ऐसी आवाज़ जो इनको भगवान ने दी और एक ऐसा करियर जिसमें बहुत लोगों ने इनको फिर आगे सपोर्ट किया, बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया और इनकी जो ज़िंदगी जो है वो सफलता के चरम सीमा पर पहुंची। रेडियो मानोरचना के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। और घड़ी की जो टिक टिक है वो मुझे कह रही है कि जाने का समय हो गया है, तो मैं यहाँ कर रही हूँ साइन आउट। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सायोनारा। आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum doston, main hu RJ Sagar, aaya hu lekar ke show Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat. आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार है और इस शो के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा. ये शो हमारा बहुत एक स्पेशल इनिशिएटिव है. इसके पीछे एक मोटिव है हमारा कि हमारे देश में एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक प्रॉपर स्मूथ स्ट्रक्चर्ड वे में जो काम करता है. बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को पता ही नहीं होता उन चीज़ों के बारे में, हमारे लिए क्या राइट्स हैं. अगर आपके साथ कुछ होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी आपके साथ कुछ गलत करती है या आपकी कोई यूएसपी है, आपकी आइडेंटिटी है, कोई इंसान उसको स्टील कर लेता है डिजिटल वर्ल्ड में, तो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप कोर्ट के पास जाते हैं तो कानून आपको क्या सहायता दे सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब यहां पर हम लोग ढूंढते हैं इस एक शो में. यह है रेडियो मानव प्रश्न 107.8 का बहुत खास शो. आज के हमारी मेहमान हैं मिस आकांक्षा, जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं एट मानव प्रश्न यूनिवर्सिटी. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल एक्सप्रेशन. इसमें एक स्पेशल केस है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. कुछ टाइम पहले हुआ था कोल्हापुरी चप्पल का, जब प्राडा ने बिना क्रेडिट दिए कोल्हापुरी चप्पल अपने वहां पर मैन्युफैक्चर करी और उसको बेचना शुरू कर दिया. ना कोई क्रेडिट दिया गया, ना कोई नाम दिया गया, ना ही किसी से सलाह मशवरा किया गया. उसके बाद मामला सोशल मीडिया पर आया, पूरा एक विवाद उठा. उसके बाद फाइनली फिर प्राडा ने कोल्हापुर में आकर के लोगों से बात करी और कोलैबोरेट करके अब कोल्हापुरी चप्पल जो है ऑफिशियली लॉन्च की गई है. सो ये एक केस था, लेकिन ऐसे और बहुत सारे केस हैं. जैसे कि अमेरिका में एक टर्मरिक का केस हुआ था कि उन्होंने अपने यहाँ पर हल्दी को पेटेंटेड कराया था. अब भाई देखिए, हमारे यहाँ तो सदियों से चली आ रही है हल्दी, जो हमारी हर एक चीज़ में डाली जाती है, हमारी सब्जियों में डाली जाती है, दूध में डाल के पी जाती है, तो ये हमारा राइट है. लेकिन वहां पर उसको पेटेंट करा लिया गया, तो क्या हुआ होगा उस केस में? ये सवाल हम आज इस शो में ढूंढेंगे. लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे मेहमान का, जो कि हैं मिस आकांक्षा. हाय मैम, वेलकम टू आवर शो.
2: हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम.

0: सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, प्लीज हमें बताइए सबसे पहले तो कि ट्रेडिशनल नॉलेज और कल्चरल एक्सप्रेशन, जो ये हम दो शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, इनकी थोड़ी डेफिनेशन दीजिए, कानून क्या समझता है इनसे।
1: सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेडिशनल नॉलेज इज स्किल्स, नॉलेज और एनी प्रैक्टिस दैट हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एनीथिंग दैट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज।
0: ओके,
1: फॉर एग्जाम्पल योगा, आयुर्वेदा, एनी हर्बल रेमेडी दैट आर ग्रैंड मदर गिव्स अस, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज। नाउ कम्स ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। एज द नेम सजेस्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज इज अबाउट नॉलेज। ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन इज वॉट एवर द एक्सप्रेशन और द आर्टिस्ट फ्रेम्स इन टू ऑफ दैट नॉलेज, दैट इज द कल्चरल ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल भरतनाट्यम और भांगड़ा, पश्मीना शॉल्स, ऑल दैट आर एक्सप्रेशंस।
0: ठीक है, अगर मैं बात बोलता हूँ कि हमारे पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज है और कल्चरल एक्सप्रेशन है जो कि ट्रेडिशनल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं कानून के पर्सपेक्टिव से इसको देखूँ तो डेफिनेशन तो मुझे पता लग गई, बट ये कैसे डिफाइन होता है कि ये भारत का है, या एक एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि भांगड़ा पंजाब का है, ठीक है, तो ये लेकिन अगर कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो ये कैसे प्रूव किया जाएगा कि ये हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, एक ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन है।
1: सर मैं शुरू से बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन फॉल करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का फ्रेमवर्क है, उसके काफी एक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ ये ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सप्रेशन फॉल करते हैं। वो एक्ट्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स और उनके स्पीशीज आ जाती हैं। देन एक आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ जाता है, जिसके अंदर आपने मेंशन किया कोल्हापुरी चप्पल का, तो उसको इंडिया के अंदर ऑलरेडी जीआई मिला हुआ है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ऐसे ही कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट लॉ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि पेटेंट लॉ के अंदर क्या कहता है कि कुछ भी या तो तीन कंडीशंस होती हैं, या तो वो न्यू होना चाहिए, ऑलरेडी नोन नहीं होना चाहिए, और कुछ इनोवेशन होनी चाहिए। लेकिन हमने डेफिनेशन में ही देखा कि कल्चरल एक्सप्रेशन तो जनरेशन से चल रहा है, तो एक फ्रेमवर्क नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत सारे हैं जिसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स फॉल करते हैं।
0: ऑलराइट, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके बात करना चाहूँगा, मैं अगर डिशेज की बात करता हूँ, लेट्स से कि हरियाणा या पंजाब की कोई फेमस डिश है, ठीक है, वो कहीं पर पेटेंटेड नहीं है, ओके, हम लोग सदियों से उसको खाते आ रहे हैं, अब अमेरिका में अचानक से कोई इंसान उसको उठा के बेचने लग जाए, कमर्शलाइज कर दे उसको अपना नाम देके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सदियों से इस्तेमाल की जा रही है, इस केस में क्या हो सकता है, कैसे मैं क्लेम कर सकता हूँ?
1: सबसे पहले तो आप उधर जाओगे कि ये पेटेंट को रोकना है, पहले तो हम उसको स्टॉप करवाते हैं इंजंक्शन डलवा के, उसके बाद हम उसके अंदर प्रूफ देंगे कि कैसे वो हमारी जनरेशन के अंदर है। ऑलरेडी हम प्रूफ देंगे कि हमारे इतने टाइम से चला आ रहा है ये है, वो प्रूफ वहाँ पर जाकर उनका जो भी कॉपीराइट किया होगा या पेटेंट उन्होंने बनवाया होगा वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो उस तरीके से हम जो भी वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं या कमर्शियल बेनिफिट्स रीप कर रहे हैं उसके, उसको हम हिंडर होने से बचा सकते हैं।
0: बट अगर हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो हम प्रूफ कैसे, कोर्ट कैसे मानेगा?
1: सर कोर्ट, एक तो सबसे पहले इसके अंदर ये है कि इंडिया इज वर्किंग ऑन इट एंड हैज मेड अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। तो ऑलमोस्ट 1820 फॉर्मुलेशंस एंड ऑल दिस ट्रेडिशनल नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन फीडेड इनटू दैट डाटाबेस, और इफ इट्स नॉट देन यू कैन फीड इट इनटू द डाटाबेस, देयर इज एन एंटायर प्रोसेस। तो आप पहले जाकर तो वही करवा लो, और अगर नहीं है तो एविडेंसेस प्रूफ्स के थ्रू कि आपको पहले से ये कॉमन नॉलेज है, ऐसे हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ना कि जनरेशन से चलता आ रहा है, कस्टम्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी कितना तरीके से प्रूफ हो जाता है। जैसे टर्मरिक का केस है कि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, रिसर्च हुई हुई है, तो आप उन एविडेंसेस के थ्रू जैसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि ये हमारे यहाँ का है।
0: ऑलराइट, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आके बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे सागर, शो चल रहा है यहाँ पर सत्यमेव जयते, फील गुड फील लाइफ।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंजीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतर, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: वेलकम बैक। मैं सागर, शो चल रहा है सत्य में विजय थे। आज की हमारी मेहमान है यहाँ पर मिस आकांक्षा, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की प्लस ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन की। खाली बात नहीं कर रहे हैं, उसकी लीगल फ्रेमवर्क को समझने की यहाँ पर कोशिश है। अभी तक हमने बेसिक समझने की कोशिश करी है, थोड़े नुआंसेस जानने की कोशिश करी है कि इंटरनेशनल लेवल पर चीजें काम कैसे करती हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। मैम, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि लॉ ओल्ड ट्रेडिशंस की केयर क्यों करता है? लाइक व्हाई शुड द लॉ केयर अबाउट द ओल्ड ट्रेडिशंस?
1: सर, एक लाइन में बोलूँगी कि बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ऐसे ट्रेडिशंस जो है ना, उसको आप ट्रेडिशन को कस्टम की तरह वैसे ना देखकर उसको एक वैल्यूएबल एसेट की तरह देखो, तो वो आपको बेनिफिट्स रीप किए करेगा। तो जैसे हम लॉयर्स बोलते हैं कि जैसे नॉलेज इज़ पावर, बट ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ इनहेरिटेड पावर। तो दैट इज़ द past customs and everything which will protect our future. So we need to protect our benefits. So hence the people and the law both should care about it.
0: So amazing. बहुत बार हम patents के बारे में सुनते हैं, क्या traditional knowledge को patent किया जा सकता है? अब
1: sir, अगर सच्ची का reply है तो usually no. But there are always some exceptions. तो इसके अंदर टर्मरिक केस का एक एक्सेप्शन है, जिसके अंदर पेटेंट के अंदर तीन कंडीशंस होती हैं उसको पेटेंट करने की। पहला, कुछ न्यू होना चाहिए, दूसरा इनोवेशन होना चाहिए, तीसरा कुछ ऐसा होना चाहिए जो ऑलरेडी नोन नहीं है। तो पर अब आपने पूछा कि ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे करें। ट्रेडिशनल नॉलेज तो हमारी जनरेशन से चलती आ रही है। एक ऐसा इस टर्मरिक केस हुआ जहाँ पे US ने उसको पेटेंट करा कि हमने ये न्यू इनोवेशन करी है, फिर उसके अंदर इंडिया ने उसको कैंसिल करवाया, रजिस्टर करी कंप्लेन एंड प्रूफ दिए कि ये ऐसे हमारा ऑलरेडी जनरेशन से चलता आ रहा है। उस केस में इंडिया को उसका पेटेंट मिल गया। बट टू से इट इन लेमैन लैंग्वेज, नो, एवरी ट्रेडिशनल नॉलेज विल नॉट गेट अ पेटेंट, बट दैट इज नॉट द स्ट्रिक्ट रूल।
0: अगर पेटेंट नहीं मिलेगा तो फिर तो कोई भी उसको क्लेम कर सकता है।
1: सर, क्लेम हो रहा है, और ये एक लूपहोल है कह लो कि एक हमें प्रॉपर फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन चाहिए। अभी हमारे पास छोटे छोटे अलग लॉज हैं, जैसे पेटेंट लॉ, कॉपीराइट लॉ और बायोडाइवर्सिटी लॉ, GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो वो कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को करते हैं।
0: ओके,

0: अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि क्या ट्रेडिशनल नॉलेज एक्चुअली पैसे कमा के दे सकती है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में?
1: बिल्कुल सर, इसके अंदर प्राइम एग्जांपल है योगा का, जो आजकल इतना ज़्यादा चलन है बाहर की कंट्रीज़ में, और हमारे यहाँ तो कितने सदियों से योगा का योगा बहुत ज़्यादा, एवरीबडी नोज एंड डू योगा इन देयर होम, हर हमारे तो कितने दादा परदादा भी करते हैं, और उधर तो प्रॉपर अब स्पाज, योगा सेंटर्स और ऐसे करके दे आर चार्जिंग डॉलर्स एज फीस। सो बिल्कुल उसका कमर्शियली उसको आप कर सकते हो और बना सकते हो, तो ट्रेडिशनल नॉलेज बिल्कुल आपका ऐसे हो सकती है। अब जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, प्राडा ने उसको लॉन्च किया तो उसने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बेचा, जो हमारे यहाँ पे कुछ हज़ारों में ही बिकती है, तो बिल्कुल उसका कमर्शियल वैल्यू है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए।
0: सो अमेजिंग। बट अगर यहाँ पर मैं इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करूँ, इस एक पर्टिकुलर चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल योगा पेटेंटेड नहीं है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर, और यूएस में कोई इंसान है जो अपना क्लेम करता है कि हम योगा लेकर के आए हैं आपके लिए, और उसको कमर्शियल लेवल पर लेकर के जाता है, पैसे कमाता है उससे, इन दिस केस हम लोग कुछ कर सकते हैं?
1: सर ऐसा हुआ था कि योगा के लिए कंट्री वॉज आस्किंग फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन सम योगा टेक्निक्स, तो अगेन इंडिया सेड दैट वी हैव अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी वेर इन वी हैव द इंटायर डाटा बेस वेर इन हमारे सारे योग आसन हैं जो हमारे जनरेशन से चलते आ रहे हैं, और वो दिखाया तो वो नहीं कर पाए, बट इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, वी आर नॉट देयर येट, बट इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही अंधेरा है।
0: सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर स्टिल इन दैट प्रोसेस की जहाँ पर वो मे बी आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं।
1: यस, आफ्टर ऑल वी आर अ डेवलपिंग कंट्री।
0: या श्योर। सो दिस नॉट वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं जाइएगा, मन जुड़े रहे हमारे साथ, मैं हम सागर, और उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट अभी तक जितना यहाँ पर बात करी है हमने आप लोग समझ पाए हैं और हम आपको समझा पाए हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, फील गुड, फील लाइफ।

0: डाइजेस्ट हो, आपको मजा आ रहा है, अगर आपके पास कोई फीडबैक हमारे लिए तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर शो को आगे बढ़ेंगे। मैं हूं आरजे सागर, शो चल रहा है सत्यमेव जयते, रेडियो मधुबन 107.8 FM। आज के हमारे मेहमान है मिस आकांक्षा। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन की। अभी तक हमने बात करी है कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों की, लॉ क्या बोलता है। अगला मैं केस समझना चाहूंगा यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल का, जो प्राडा ने लॉन्च किया बिना कंसेंट लिए यहाँ पर। इट वॉज वेरी रॉन्ग एक्ट, बट कानून की नजर में क्या है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए।
1: सर, सबसे पहले तो एक प्राडा का वॉक हुआ, उसके अंदर उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी। दे डिड नॉट नो कि यहाँ पर इंडिया में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फिर इसके अंदर सोशल मीडिया का जो पावर है वो दिखा, कि सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी आई, उसको हाईलाइट हुआ, लाइमलाइट हुआ। उसके बाद ये लॉ में जाकर आगे केस बना दैट दिस बिलोंग्स टू अस, इट इज़ अ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर अस, एंड ये एक महाराष्ट्र और कर्नाटका का ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और ये करते हुए उसको लीगल प्रोटेक्शन मिली, और बाद में जाकर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई। इनफैक्ट उनके कुछ इम्प्लॉयज़ और टीम यहाँ पर आकर उन्होंने पूरा प्रोसेस भी देखा, और जो क्रेडिट नहीं मिला था वो क्रेडिट हमको मिला।
0: ठीक है, बट क्या ये बात खाली क्रेडिट तक रुकती है या और भी चीज़ें हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें?
1: सर, इसके अंदर सारा जो एंड में होता है वो मॉनेटरी बेनिफिट और क्रेडिट की बात होती है, कि आप जो भी आप यूज़ कर रहे हो मेरे नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ फैमिली रेसिपी, यू आर यूजिंग इट, मेकिंग इट एंड रीपिंग द बेनिफिट्स एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज गिव मी अ लिटिल क्रेडिट एंड देन शेयर बेनिफिट। हाउ विल यू शेयर बेनिफिट? बाय डिवाइडिंग इट, चलो 50-50 कर लेते हैं, मेरे रेसिपी है। That is the actual key here, कि आपको उसके benefits को share करना है, exploitation नहीं होनी चाहिए।
0: बट अगर यहाँ पर मैं कोल्हापुरी चप्पल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तो कोई एक आर्टिस्ट नहीं है ना। कोल्हापुरी चप्पल is an art form जो वहाँ पर बनाई जाती है, डिजाइन है वो, किसको जाएगा benefit?
1: सर, उधर के जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर होता है दार्जिलिंग टी है, तो वो पूरे दार्जिलिंग एरिया के अंदर जो उधर काम करते हैं लोग, उन सब के लिए बिलोंग करती है। तो उधर के जैसे कुछ ट्राइब्स होते हैं जो वर्कर्स हैं, उन सब के लिए वो।
0: तो क्या सरकार को दिया जाएगा या इन टर्म्स ऑफ टैक्स दिया जाएगा या प्रॉपर पैसा ही दिया जाएगा?
1: पैसा ही दिया जाएगा सर, स्पेशली उन लोगों को जो उस वो काम कर रहे हैं।
0: ओके, उन लोगों तक वो पैसा जाएगा, तो जितने भी लोग कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं, मेकर्स हैं, सबके पास वो पैसा डिवाइड होगा। ओके, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। अगला पॉइंट मेरे यहाँ पर रहेगा कि इंडिया कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चरल एक्सप्रेशन को, भारत क्या कर रहा है उसके लिए?
1: सर, इंटरनेशनली देखें तो ये ट्रिप्स है, ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, भारत ने वो साइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो जो गाइडलाइंस देते हैं वो जो भी मेंबर्स हैं उनको फॉलो करनी होती है। तो इंडिया वो उसका मेंबर है, उसको वो फॉलो करनी होती है। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने उनकी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए जीआई का एक्ट बनाया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे एक्ट्स बनाए, बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अभी तक कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई एक्ट नहीं है। इसके कुछ कुछ सेक्शंस इन एक्ट्स के अंदर हैं जिससे इंडिया को

0: प्रोटेक्शन मिल रही है, जैसे पेटेंट के अंदर है, कॉपीराइट के अंदर क्या होता है कि आर्टिस्टिक वर्क, क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन, जो कि एक एक्सप्रेशन आप कर रहे हो कि किसी भी चीज़ को वे ऑफ डूइंग है, वो प्रोटेक्ट हो रहा है, तो वो कॉपीराइट में वो प्रोटेक्ट हो जाता है, जैसे भांगड़ा है या कोई डांस है, कोई सॉन्ग है, वो चीज़। लेकिन इंटायरली एक लॉ नहीं है जो ट्रेडिशनल नॉलेज या कल्चरल एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करती है।
1: ओके अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इंडिया का, लेट्स से कि नगाड़ा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, यूएस में अगर नगाड़ा यूज़ किया जाए कहीं, या यूरोप में किया जाए कहीं पर किसी गाने में, किसी फिल्म में, उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या हम क्लेम कर सकते हैं? पहली चीज़ तो डू वी क्वालिफाई फॉर दैट पार्ट?
0: यस सर, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं कि हमारा जनरेशन से चलता आ रहा है और ये हमारे एरिया का है, और इसको मतलब बिल्कुल ये हो सकता है। हमारे पास उसका डाटाबेस नहीं है, लेकिन प्रूफ्स तो ज़रूर हैं कि ये हमारे एरिया का ही है। एक्चुअली आई वुड वांट कि द इंटायर वर्ल्ड टू डू भांगड़ा, बट विद अ लिटिल क्रेडिट दैट दिस हैज़ कम फ्रॉम दिस प्लेस, सो 100% वी कैन क्लेम।
1: ओके, और इस केस में अगर मैं क्लेम करता हूँ जाके कि यूरोप में नगाड़ा यूज किया गया किसी फिल्म में, तो मुझे यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा?
0: जी, और सर मैं से होता है कि गवर्नमेंट जाकर करती है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल विल नॉट डू इट।
1: हाँ, वो तो ऑब्वियसली मैं उसी रेफरेंस में बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर दैट पार्ट।
0: यस, इसको फॉलो करते
1: हुए। एंड माय लास्ट, हाँ प्लीज प्लीज
0: सर, बिकॉज इंडिया इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉप कंट्रीज विच आर वेरी रिच विद ट्रेडिशनल नॉलेज एंड एवरीथिंग, सो वी रियली डू नीड टू प्रोटेक्ट इट, एंड आई फील दैट हमारी गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफ़ी अवेयर है। अभी जैसे भारत का कोई कॉन्क्लेव भी हुआ जिसके अंदर सारे ट्राइब्स वगैरह और इन सब का ऐसे हुआ कि हैंडक्राफ्ट होना चाहिए, बहुत मेलास भी आ गए हैं, तो मोर एंड मोर अवेयरनेस तो हो रही है, लेकिन एज आई सेड कि लॉन्ग वे टू गो।
1: ओके, and the last question of the show would be why should young generation care about this?
0: Sir, I think that हमारे जो भी past का जितने भी हमारे को system है या जो भी हमारे traditions हैं, उनको हमको उससे भागना नहीं चाहिए, और वो हमारा part and parcel है, और they are a source of our future and a light for our future. और अगर ये भी समझ नहीं आता तो मैंने बोला है कि ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो यू कैन लुक एट इट एज अ मॉनेटरी एंड अ वैल्यूएबल एसेट दैट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट्स एंड गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर।
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस। कोई भी ऐसी चीज है जो मैं ना पूछ पाया हूं और आप कहना चाहते हो, प्लीज फील फ्री।
0: सर मैं तो यही बोलूंगी कि नॉलेज जो है बहुत बड़ा, जैसे मैं जब स्कूल में थी तो उधर का जैसे आपका फील गुड फील लाइव है, ऐसे था नॉलेज इज पावर, तो आई फील दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अब उसका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और आई फील द जेंजीज शुड अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कि हमने हल्दी का दूध पी रहे हैं तो सो यू, बट दे शुड अप्रिशिएट द रिसर्च एंड द जनरेशनल द रेमेडीज दैट इज कमिंग फ्रॉम एंड हर्बल, कितनी सारी रेमेडीज है, हमारी दादी कितने हमारे को बता देती हैं कि अजवाइन ले लो फॉर एसिडिटी, और ऐसे जीरा ले लो फॉर समथिंग, इसको ऐसे चोट पे लगा लो तो ठीक हो जाएगा, तो उन सबको हमें अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना चाहिए।
1: सो अमेजिंग, एंड वी इंडियंस शुड केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये हमारी रूट्स हैं, हमारी पहचान है, एंड अगर हम इनको नहीं पहचानेंगे, हम इनके लिए अगर थोड़े से अवेयर नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, क्योंकि इनमें एक्चुअली बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद हैं, जो आपकी बॉडी को ठीक करती हैं, आपके माइंड को ठीक करती हैं, एंड उन्हीं सब चीज़ों को कमर्शलाइज कर दिया जाता है, उनसे पैसे कमाए जाते हैं। सो दिस इज़ आवर राइट, वी शुड कमर्शलाइज इट, और वो नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उसको प्रोटेक्ट जरूर करें। सो दैट्स वाई वी शुड केयर अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर, इट मीन्स अ लॉट टू अस, थैंक यू सो मच फॉर।
0: थैंक यू सर।
1: और दोस्तों, वक्त अपने शो के यहाँ पर कंक्लूड करने का, आज हमने ट्रेडिशनल नॉलेज की और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करी, एंड आई जस्ट होप आपको मजा आया होगा। अगेन आई एम सेइंग कि आपकी और मेरे हमारे जीवन की बात हो रही है, हमारे आसपास जो हमारे समाज में चीज़ें हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई हैं, हमारे लिए ही बनाई गई हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रोटेक्शन सेकंड पार्ट आता है, फर्स्ट स्टेप आता है अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए पहले तो ये चीज़ें हैं, ये राइट्स आपको कानून देता है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आज के शो से ये मैं आपको समझा पाया हूँ। अब इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं बिंदा इस भावना, फिर से ले रही हूं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ, ऐसी महिलाओं को आपके पास लेकर आती हूँ, ऐसी महिलाओं की कहानी आपको सुनाती हूँ जो अपने आप में सशक्तिकरण का दूसरा नाम है। और अगर मैं बात करूं सशक्तिकरण की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर महिला के पास है, बस इस पोटेंशियल को वो रियलाइज नहीं कर पाती हैं। सो इसीलिए इस कार्यक्रम की ज़रूरत है और इसीलिए महिलाओं को समय समय पर ये याद दिलाने की ज़रूरत होती है कि उन्हें सशक्त होना पड़ेगा, जिससे एक सशक्त समाज बन सके। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, ये मेरा बिल्कुल ऑनर है कि वो हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बात कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ वर्तिका द्विवेदी जी से। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर हैं मिट एशिया एग्जीबिशन की, एक बहुत ही जानी मानी पब्लिशर हैं, साथ के साथ टेडेक स्पीकर ये रही हैं, लेकिन सही मायने में एक सशक्त महिला हैं, एक डायनेमिक वुमेन हैं। और हम इनका स्वागत करना चाहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। नो, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और ये मौका मुझे मिल रहा है कि मैं वुमेन, महिलाओं के लिए अपने लाइफ से कुछ पॉइंट्स निकाल के कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू
3: वर्तिका जी। इस कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट, और वी नाम से हम जब वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो इसका दूसरा तात्पर्य या इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, वी यानी वुमेन स्टैंडिंग टुगेदर एज वी। और अगर एक महिला दूसरी महिला के साथ आ जाए तो वो दुनिया बदल सकती है, लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक महिलाओं ने इस चीज़ को कम रियलाइज़ किया है। इस कार्यक्रम का एक पहला सवाल है जो मैं अक्सर हर महिला से पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? आप कैसे परसीव करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को?
4: देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं एक वुमेन होने के नाते भी एंड साथ में वेड एशिया जो वुमेन इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन डिज़ाइनर्स जो है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म चलाती हूँ द लास्ट 10 ईयर्स से, उसके नाते में ये बोलना चाहूँगी, आई ऑलवेज फील दैट वुमेन आर एक्चुअली एम्पावर्ड।
3: यस,
4: दे डू नॉट नीड एम्पावरमेंट एज सच, दे नीड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर एम्पावर्ड। उनका जो वो एम्पावर्ड है, उनका ये पहचान, उनको पता होना, मैं बोलूंगी ये है एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी।
3: मतलब देखिए वर्तिका जी, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कुछ महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब या उसकी डेफिनेशन जो है पैसा होती है।

0: उन्हें लगता है यार मेरे पास पैसा होगा तो आई एम दी ओनर ऑफ माई लाइफ। कुछ महिलाएं हैं जिनके पास अबंडेंस में पैसा है, लेकिन उस पैसे को यूज करने के लिए या उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए उनके पास परमिशन ही नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अगर हमें ये फ्रीडम मिल जाए ना कि मैं जो चाहती हूँ वो कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए सशक्तिकरण होगा। शायद कुछ महिलाएं जो कॉर्पोरेट्स में हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी या एक बेटर डेजिग्नेशन, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुरुषों के पास है, ज़्यादातर पुरुषों के पास मिलती है। सो उनके लिए शायद वो एम्पावरमेंट होगा। हर किसी के लिए, हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये बड़ी पर्सनल और बड़ी अलग है। बट आई टोटली बिलीव कि हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट का डेस्टिनेशन है वो एक ही है, व्हेन शी हैज द राइट टू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और उस राइट के साथ वो उसे कर पाए। इस बात से आई एम श्योर यू विल रेजोनेट।
1: एब्सोल्युटली भावना जी, एब्सोल्युटली।
0: So, दोस्तों वक्त एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जारी रहने वाली है आपके साथ। और इस कॉन्वर्जेशन में फिलहाल मेरे साथ हैं वर्तिका द्विवेदी। फील गुड,
1: फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और उतने ही प्यारे से एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्तिका जी बैठी हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर हैं मेटेशिया एग्जीबिशंस की, एक पब्लिशर हैं, एक बहुत ही अकम्पलिश्ड स्पीकर भी हैं, लेकिन इनके जीवन की अपनी एक कहानी है। वर्तिका जी, आपने इस दुनिया में इतना नाम कमाया है, मतलब टुडे वेड एशिया इज अ नेम। और अगर देखा जाए तो आपके जो मेटेशिया एग्जीबिशंस हैं ये पूरे विश्व में फेमस हैं। बट ये जो जर्नी आपके लिए रही, दिस वाज नॉट एट ऑल एन इजी जर्नी। सो अगर मैं आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी की बात करूं, सो आपने शुरुआत की ऐसी उम्र से जिस उम्र में शायद बच्चे अपने लिए सब्जेक्ट क्या चूज करना है उसका डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, वहां से आपने शुरू किया और आज आप यहाँ तक पहुंची। सो आपके इस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगी लोगों को?
1: देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सफ़र हम चुनते नहीं हैं, हमें मिलता है बहुत कुछ
0: जी।
1: लेकिन जो आपको मिलता है उससे आप क्या बनाते हैं वो आप बनते हैं। तो मैं जब 9 साल की थी, मेरी माता जी, मेरी मदर की डेथ अचानक से हो गई, मतलब इट वाज अ प्रेगनेंसी केस एंड भाई 7 दिन का था, मॉम वाज नॉट फाइन एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड
0: जी
1: बट इट हैपेंड। तो जब माँ का डेथ हुआ, पापा वॉज ऑल टोटली, मतलब उनका जो हालत था, जहाँ तक मुझे याद है कि पापा किसी से बात नहीं करते थे, वो बदल गए थे कम्प्लीटली, उनको कुछ भी किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियस है, सबका टेंशन इस तरफ था कि 5 बच्चे, मैं सबसे बड़ी हूँ और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें अपने पापा का ख्याल रखना है, तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना है। मैं खेलने कूदने वाली लड़की अचानक से जैसे कि एक ही पल में बड़ी हो गई
0: जी।
1: और जब बड़े हो जाते हैं और कुछ पता नहीं होता है तो उस बच्चे के साथ क्या हाल हुआ होगा आप समझ ही सकते हैं।
0: वाकई
1: कुछ नहीं पता मुझे कि मैं क्या, किस तरह से मैंने उस वक्त को समझने की कोशिश किया, अपने आप से जूझते हुए, समाज से जूझते हुए, गिरते पड़ते, मैं जैसे लाइफ का सिचुएशन था वैसे ही मैं ढलती गई। एक पल ऐसे आया जब पापा का भी डेथ हुआ, और उससे पहले बल्कि मैं ये समझ गई थी कि या तो मेरा रहने का कोई मकसद नहीं है लाइफ में, और या तो बहुत बड़ा मकसद है, क्यों ना मैं बड़े मकसद की तरफ चुनूं। कर पाऊं तो ठीक है, नहीं तो क्या है, कोशिश तो कर सकती हूं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती हूं अपने भाई बहनों को, और छोड़ के मिलेगा भी क्या अगर मैंने अपने लिए कुछ बना भी लिया। मैं बहुत पहले सोच चुकी थी, बहुत पहले समझ चुकी थी कि जिंदगी सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है। पैसे से आप क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जिंदगी से क्या बनाते हैं, जो चीज़ आपको मिला उससे आप क्या बनते हैं, राइट, वो मैटर करता है। तो मैं ये समझ गई थी कि मैं कुछ भी करूं अपने भाई बहनों से, अगर मैं अपने लिए सिर्फ देख लूं, आसान लगता है ना, किसी को शॉर्टकट लेना ईजी लगता है और संभव लगता है। मैंने कहा कि मैं संभव क्या है उस पे जाऊं तो मैं कुछ भी मुझे लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मैं अगर कर पाऊं उनके लिए, भले ही असंभव है, लोग मुझे पागल बोलते थे। जब मैं 17 साल की थी, मैंने सोचा कि मैं कहीं और चलती हूँ जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर, मेरे से जो छोटी सिस्टर है, मैंने उंगलियों को, 4 उंगलियों को उसके सामने रखा और मैंने कहा, देख ऐसा है कि मुझे निकलना होगा, लेकिन कहाँ निकलना होगा अब चुनते हैं। शायद 2 मिनट में हमने डिसाइड किया था कि चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कहाँ जाना है। तो जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन था उस टाइम के हिसाब से, कि मुंबई में हमने सुना था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, एक्टर्स बनने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। हमारे बच्चों जैसे जो दिमाग है उसमें जो समझ में आया, फिर हमने चेन्नई कहा, लैंग्वेज का इशू है, कलकत्ता हमने सुना था कि बहुत सारा यू नो इंडस्ट्रीज वहाँ पे उतना नहीं है, एंड दिल्ली, हाँ ये तो राजधानी है, सुन के ही लग रहा है कि कुछ होगा वहाँ पे, बढ़िया होगा शायद कुछ। तो उस सोच के साथ बहुत ही इनोसेंट सोच के साथ, क्योंकि ये पता था कि जहाँ हम हैं वहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकते। प्लस लड़कियाँ थे तो लोगों को भी ये लगता था कि भाई लड़कियाँ हैं, इनके शादी करवाना है, इनका ये है वो है, इतने पैसे चाहिए होंगे। हमें उस सोच से बहुत बहुत दूर जाना था, और एक जन जाएंगे तो दूसरों को भी खींच के लाएंगे, वो थॉट था। थॉट वॉज वेरी वेरी क्लियर, बट क्या आगे मिलेगा उसको सोचने से बहुत घबराहट सी होती थी, क्योंकि रास्ता आगे का नहीं दिख रहा है, उतना दूर का कैसे सोचे। लेकिन कदम तो बढ़ाना है, डर तो नहीं है बिल्कुल भी। ये बात हम सारे भाई बहन समझ चुके थे, भले बहुत छोटे थे, भाई तो समझ ही सकते कितना छोटा था, तो ये बात समझ चुके थे हम कि हम एम्पावर्ड खुद अपने मन में पहले होते हैं, फिर हम एम्पावर्ड वाला काम करते हैं। बिना काम किए, बिना फियरलेस हुए, बिना आगे बढ़ाए कदम, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई आके आपके लिए करके देगा ये कभी सोचना नहीं चाहिए। भावना जी, आपने एक अपने कुछ बताया था पहले कि ये विमेन जिनको पैसा मिलता है फादर से, ब्रदर से, मान लीजिए किसी से भी,
0: यस यस,
1: मिलता है, क्या वो एम्पावर्ड होते हैं, फील करते हैं? आई डोंट नो, आई एम डाउटफुल। क्यों? एम्पावर्ड होना फाइनेंशियल डिसीशंस नहीं आपको दिलाता है। आप क्या अप्रूवल ले रहे हो फॉर द मनी? इफ यू आर टेकिंग, अगर आप अप्रूवल ले रहे हो पैसे के लिए, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, भले आपके पास पैसे हैं। ये मैं सोचती हूँ, और ये मेरा कहानी है।
0: सच ए ब्यूटिफुल स्टोरी, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना वर्तिका जी की। आप इमेजिन करिए, छोटी सी लड़की 17 साल की उम्र में दिल्ली आती है, ये सोचकर कि चार भाई बहन है, सबसे छोटा भाई है जो बिल्कुल छोटा है, और यहाँ आकर इन्हें अपना बिजनेस खोलना है। 17 साल की उम्र में ये सोचकर आई थी, नागालैंड जैसी जगह से जहाँ लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। छोटी उम्र में माता और पिता दोनों चले गए, घर नहीं था, और जो अलग अलग कहना चाहिए सिबलिंग्स हैं, क्योंकि चार छोटे भाई बहन थे, अब कोई कोई रिश्तेदार उन्हें पाल रहा था। बड़ी बहन को ये लगा कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं इन सारे भाई बहनों को अपने पास रख पाऊंगी, और उन्हें वो जिंदगी दे पाऊंगी जो शायद माता पिता ने कभी सोची थी, या प्रॉबेबली इन्होंने सोची थी। और सोचिए वो जिंदगी आज ये दे पा रही है, और ना सिर्फ उन्हें दे पा रही हैं, लेकिन बहुत सारे घरों को दे पा रही हैं। वेड एशिया अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है, और आज वर्तिका नंदा जी, फिर से लूँगी, आज वर्तिका द्विवेदी जी अपने आप में एक नाम है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन औरों के लिए ये किस तरीके से एम्पावरमेंट फैला रही हैं उसके बारे में जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो वाला वृष्णा 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से कल म्यूजिकल ब्रेक का, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। उतने ही इंस्पायरिंग एपिसोड में आज हम वर्तिका जी के साथ बैठे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर है द वेड एशिया की, डायरेक्टर है मिड एशिया एग्जीबिशन की, एक पब्लिशर है, नोटेड पब्लिशर है और साथ के साथ टेडेक स्पीकर भी हैं। पर मजेदार बात यह है कि एक महिला तो है ही, लेकिन इन्होंने जिंदगी को हार्ड तरीके से बहुत ही खूबसूरती से जीने का तरीका सीख लिया है और वही तरीका आज हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिचेस के साथ पैदा होना और उसके बाद कुछ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो इनिशियल पैसा ही नहीं है तो आप कमाएंगे कैसे? और आपके साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। वर्तिका जी, अगर मैं बात करूं आपके आगे बढ़ने की और वेड एशिया की शुरुआत की, सो कैसे हुई है शुरुआत और यहाँ तक का सफर कैसे आपने पहुँचाया?
1: बहुत ही प्यारा सवाल है भावना जी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम जो सिस्टर्स हैं, चार सिस्टर्स, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ये कर पाएंगे। तो मेरे आर्मी में कौन था? मेरी तीन बहनें और एक छोटा भाई
0: जी।
1: तो ये सिस्टर्स, अगर तीन सिस्टर्स जिनके पास कुछ नहीं है, ना घर है ना कुछ है, वो अगर ये कर सकते हैं तो सारे, अगर बहुत सारे सिस्टर्स एक साथ होंगे तो वो क्या

0: कर सकते हैं.
1: इमेजिन
0: वेड सिस्टर्स हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था ये सोच के कि वेमेन इन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का कोई प्लेटफॉर्म पहले तो नहीं था. नंबर वन. नंबर टू, जो ये जो काम कर रहे बहुत अच्छा कर रहे लेकिन ये क्या है ना, बैक सीट में रह के कर रहे थे
1: जी.
0: दे वर नॉट इन द फ्रंट सीट. एंड प्लस क्या, जो काम कर रहे उसका कंट्रीब्यूशन का रिकॉग्निशन नहीं दिख रहा था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था. हमने सोचा कि क्यों ना, जिस तरह से हम सिस्टर्स एक साथ आके कुछ किए, हम वेड सिस्टर्स बनते हैं और सबको लेके आते हैं उनको, और एक जगह जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे.
1: वाकई
0: दैट वाज द थॉट. और वहाँ से शुरुआत की. और क्योंकि मैं ऑलवेज एंटरप्रेन्योरियल थी, क्योंकि मैं ये जानती थी कि आपके पास अगर स्किल्स हैं, आप अगर उसको यूज़ नहीं करके मनी अगर नहीं बना पा रहे हो, तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ना अपने लाइफ में, ना अपने अपनों के लाइफ में, ना समाज के लाइफ में.
1: वाकई
0: कहीं पे भी नहीं कर सकते. सो अगर मैं उनको चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, तो मुझे भी एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, ताकि वो जब देखे इफ़ आई एम वॉकिंग द टॉक देन दे विल ट्रस्ट. यू नो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड खुद से करना पड़ेगा, ताकि उनको हम एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म दें. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे लिए फ्रॉम डे वन कि वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल, वी हैव टू बी डूइंग गुड, एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूट करें. क्योंकि हम बहुत कुछ मन में सोच सकते हैं अच्छे, क्योंकि एक वेमेन का मैं एक मिथ जो होता है ना, वो मैं तोड़ना भी चाहती हूँ. वो सोचते हैं कि अगर पैसे के लिए कर रहे तो गलत कर रहे हैं.
1: हाँ,
0: ये बात इतना गलत है, इतना गलत है. वो खुद अपने लाइफ में सफ़र जब करते हैं, जब परेशान होते हैं, तब समझते हैं कि नहीं, ये बात सच्चाई है कि हम अगर पैसे स्किल बिल्ड कर रहे हैं. स्किल मैं समझती हूँ एक दरवाज़ा है पैसा बनाने के लिए. आप कुछ दे रहे किसी से, आप कोई फेवर नहीं कर रहे या फेवर ले नहीं रहे, ठीक है, आप किसी को कुछ दे रहे उसके बदले में आप कुछ ले रहे, राइट?
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे तब ले रहे, तो उसको वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, उससे आपके पास जो पैसा आता है उसको आप ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है. आप अप्रूवल नहीं लेते फिर, क्योंकि आपका पैसा है.
1: बिल्कुल.
0: एंड आप अपनों के लिए, अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ कर सकते हैं.
1: एग्जैक्टली.
0: हैविंग सेड दैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेमेन जो है इस बात को समझे कि स्किल्स ही दरवाज़ा है पैसे के लिए. अगर आपको जरूरत नहीं है स्किल्स की, आपके पास पैसा ऑलरेडी आ रहा है, फिर भी आपको स्किल्स सीखना चाहिए. मैं ये बोलूंगी क्यों सीखना चाहिए. इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप हमेशा अप्रूवल लेते रहोगे. अप्रूवल हमेशा आपको मिलेगा नहीं. आपकी चॉइस की चीज़ें आपको करने को नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें. क्योंकि देखिए, जो अप्रूवल देता है वही डिसीशन मेकर कहलाता है,
1: वो अथॉरिटी में होता
0: है. यस, तो आप देखिए आप क्या बनना चाहते हैं.
1: एक्चुअली सो आई ऑलवेज बिलीव वीमेन आर इक्वल जेंडर, और हमें ना कहीं भी इन्फीरियर तो सोचना ही नहीं चाहिए अपने बारे में कि ओ हम तो सिर्फ दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुए हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और मुझे कोई भी ऐसा ग्रंथ या फिर आप किताब दिखा दीजिए जो कि रिलीजियस हो या फिर किसी भी तरीके की हो, जहाँ ये लिखा हो कि महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का ख्याल रखना है. यू आर एन इक्वल जेंडर. आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको भी एज ह्यूमन बींग उतना ही राइट है कि आप अपने जीवन को खुशी से जी सकें. सो इसके लिए प्रायोरिटाइज ज़रूर करिए अपने आप को, एंड खुश रहने की कोशिश करिए. और खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है, गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाइए.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम वर्तिका द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेदी एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, और एक पब्लिशर भी हैं, टेडेक्स स्पीकर भी हैं, और एक एम्पावर्ड महिला हैं, यानी एक सशक्त महिला है। वो महिला जिसने न सिर्फ अपने परिवार की बागडोर संभाली, लेकिन वो महिला जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए वेड एशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहां पर हर महिला आ सकती है और ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा सा जीवन चुन सकती है, लेकिन अपने लिए एक अच्छा करियर और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस भी चुन सकती है। अब बात करते हैं वर्तिका जी चैलेंजेस की। सुनने में ये कहानी बहुत आसान लग रही है। आप बता रहे हैं 17 साल की उम्र में कुछ सपने लेकर आ पाई, और ऐसी बॉलीवुड की बड़ी सारी फिल्में भी लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तब समझ में आता है जीवन कितना मुश्किल है। आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम जहां आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज भी किया होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं मारी होंगी जिससे कि आप ना सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, लेकिन शायद आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकें। और धीरे धीरे धीरे आज जीवन के आप उस स्तर पर हैं जहाँ यू हैव चोजन बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन, यू हैव चोजन द बेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर योर सिबलिंग्स। और आज आप ये कह सकती हैं ना, पलटकर जब आप देखती हैं अपनी जिंदगी के इतने सारे सालों को, सो आप ये कह सकती हैं कि हाँ, मैंने इन चैलेंजेस को बीट किया है। सो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े?
1: देखिए, शुरुआती दौर की बात करें तो चैलेंजेस ही थे।
0: हाँ, वाकई
1: सिर्फ चैलेंजेस थे। ये कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी सांस लेने का वक्त हो, कि मैं सोचूं कि मैं कुछ भी हूँ, एग्जिस्ट भी कर रही हूँ। इतने चैलेंजेस थे भावना जी कि
0: कभी कभी रोबोट वाली फीलिंग आती होगी आपको।
1: रोबोट वाली फीलिंग क्या बताऊँ मैं आपको, रोबोट मुझे बनना पड़ा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को नहीं दबाएंगे तो इमोशंस आपको मार देते हैं।
0: वाकई?
1: ओके। तो मैंने अपना ऐसे वक्त बिताया जब मैंने अपने इमोशंस को बोलती थी कि आप 2 साल बाद आना नॉक करना, मेरे को आपका सोचने का वक्त नहीं है।
0: वाकई
1: ऐसे होता था, और ऐसे वक्त एक बार नहीं, हजारों बार हुआ। बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार ऐसे सोचा कि नहीं कर सकती हूँ, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। लेकिन जब बच्चों को देखती थी, उनको देखती थी, और इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था, वो जब देखती थी तो पता नहीं मुझे कहाँ से मुझे इतना स्ट्रेंथ होता था, इतना ज़्यादा मैं पॉसिबल समझने लगी, क्योंकि इट वॉज वर्थ ट्राइंग।
0: वाकई
1: ऐसे था। अब भावना जी, मैं अपने चैलेंजेस को चुनती हूँ। देखिए, भगवान को जो देना होता है वो तो देते हैं,
0: वाकई
1: हमारे पास चॉइस नहीं होता, लेकिन मैं चैलेंजेस चुनती हूँ। अब मैं एक, मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजेस से नहीं, पार करने में, आगे बढ़ने में मुझे मज़ा आता है। मुझे कंपनीज स्केल अप करने में मज़ा आता है, मुझे वेल्थ बिल्डिंग में मज़ा आता है, मुझे डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजंस सही हो गलत हो हमें किसी को कभी पता नहीं होता। ये डर जो वुमेन को होता है, वुमेन क्यों मैं बोलूंगी, ह्यूमन बींग्स को होता है, एक लिविंग बींग को जो होता है डर कि अगर मैं ये कदम उठाऊं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, थोड़ा बहुत नमक की तरह तो फियर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि वो आपके जो आपका जो फूड है, आपका जो खाना है, उसको स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं
0: जी।
1: फियर को एक पॉइंट के बाद साइड में रखना चाहिए। इमोशंस अगर आपके रास्ते में आ रहा है और आपको कुछ करना है तो थोड़ा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहा दे, स्लिपरी ग्राउंड बना दे
0: जी।
1: राइट, लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें।
0: वाकई
1: मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई थी उस वक्त एज अ साइंस स्टूडेंट। हमेशा ही मुझे साइंस एंड रिसर्च एंड उसमें बहुत इंटरेस्ट था। आई वाज वेरी वेरी गुड इन लैंग्वेजेस ऑल्सो एज अ स्कूल गोइंग किड, बट मुझे एजुकेशन आफ्टर सर्टेन पॉइंट बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन तक कम्प्लीट किया था। बट द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट ए चांस टू कम्प्लीट माई एजुकेशन, आई वेंट टू IIM कलकत्ता।
0: यस,
1: एंड आई डिड दैट, एंड इट वॉज सो really empowering. Not because I went there. It was because मैं already इतना कुछ करके गई थी कि जब मैंने जाके देखा और मुझे ये फील हुआ, अरे वर्तिका तुम तो ऑलरेडी ये सब जानती हो एंड तुम बहुत बहुत मतलब अपने प्रैक्टिकल गलतियाँ करके

0: गोइंग स्टूडेंट की तरह बिताया।
1: हाउ स्वीट।
0: मैंने डांस किया वहाँ पे।
1: वाओ।
0: जुबी जुबी पे, आप सोचिए।
1: इमेजिन।
0: मेरा जो पार्टनर था वाज अ फेलो स्टूडेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया। हम लोग मिले थे अभी बस, और हमारे सारे प्लान, मतलब मैंने सोचा कि अदर देन स्टडीज मुझे वो कॉलेज लाइफ जो मैंने मिस किया,
1: yes.
0: मुझे वो जी लेना है।
1: सो स्वीट।
0: अब मैं देखिए कई बार अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के जीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मिस किया उसको आप जितना अभी जी सकते हैं जी लीजिए, क्योंकि आई एम ए वेरी बिग बिलीवर ऑफ हैविंग अ हैप्पी माइंड,
1: यस,
0: फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस। ओके, हैप्पीनेस इज वेरी वेरी क्रूशियल, एंड हैप्पीनेस कैनॉट बी यू नो कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज डन, और हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम दिस मोमेंट नाउ।
1: यस,
0: अगर आप इस वक्त में हैप्पी है, कंटेंटेड है, ओके, एंड यू आर इन योर सेंटर्ड, आप अपने मन के चित्त के सेंटर में स्थित है आपका यू नो फीलिंग, देन यू आर इन इट। सो दैट्स इट।
1: हाउ स्वीट। मतलब इससे बड़ा कोई मुझे लगता है मैसेज नहीं हो सकता। इनकी जिंदगी अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग और इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या कहने। इमेजिन करिए ना कि एक ऐसी लड़की जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके या स्कूल के बाद वो कैंपस में जा सके, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाना था और एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी थी जो रिस्पेक्टेबल लाइफ हो, जो आज बैठकर ये स्टूडियो में या फिर कहना चाहिए पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी टेडएक्स में जाकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करती हैं। और इमेजिन करिए जब इन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने ये मौका नहीं चूज किया, मतलब लूज किया, इन्होंने उस मौके को पकड़ के रखा और वहाँ जाकर इन्होंने ना सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय की, लेकिन कहते हैं ना जिस इंसान से आप जितना छीनते हैं ना तो मिलता जब उसे है सो उसे अबंडेंस में मिलता है। इन्हें मौका भी कहाँ मिला, आई एम कोलकाता। मतलब शी डिड नॉट चूज कि कोई भी नॉर्मल कैंपस वो चूज करें, शी चूज द बेस्ट। और यही जिंदगी का सफ़र है। अगर आप ठान लें कि भगवान आपको हार्डशिप्स दे रहे हैं तो उसे हार मत मानिए, उसको बीट करके आगे बढ़िए, एंड देन यू सी शायद आप भी एक दिन मेरे साथ बैठकर अपने ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को डिस्क्राइब कर रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्तिका जी कर रही हैं। सो हर महिला के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जुड़े रहिएगा रेडियो मारा प्रश्न 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइट।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कहानी। और आज उतनी ही प्यारी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग वर्तिका द्विवेदी जी हमारे साथ बैठी है। इनफैक्ट इनसे बात कर रही हूँ और इनकी जिंदगी की जब कहानी के बारे में मैंने सुना, आई वॉज सो वेरी इंस्पायर्ड। क्योंकि देखिए, जब हार्डशिप्स मिलती है ना, तो इंसान दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, या तो टूट जाता है या बन जाता है। इन्होंने जैसे ही हार्डशिप्स देखी तो इन्होंने ठान लिया था, मतलब बचपन से जिन चीज़ों को आज साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं कि जर्नलिंग करिए, ये अपने सपनों को लिखती थी। एंड इमेजिन करिए, शी हैड ऑल हर ड्रीम्स एंड टुडे यू नो शी इज सिटिंग इन द स्टूडियो एंड डेफिनेटली शी कैन से कि इन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि आप एक ऐसा जीवन जी पाएं जहां आपने अपनी चॉइसेस को खुद रखा। वर्तिका जी, मैं महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम करती हूँ, खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, और मैंने एक चीज़ देखी है कि महिलाएं इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये जो वर्ड है ना, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, मुझे ऐसा लगता है ये इनबिल्ट चिप के साथ हमारे साथ आ जाता है और हर महिला को ये सिखाया जाता है, एडजस्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इट्स ओके, जो भी मिला है उसी में मान लीजिए। दे नेवर चेज फॉर द बेस्ट, क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप तो एक अथक एग्जाम्पल है, यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चेज द बेस्ट एंड लिव द बेस्ट।
1: देखिए, कई बार ये सोचते हैं लोग कि महिलाएं जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही वो अपना नर्चरिंग वाली जो कैरेक्टर है जो वो बेस्ट कर सकती है
0: जी।
1: मैंने एक महिला होते हुए, एक माँ हूँ मैं और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप विमेन हैं एंड आपका एक नर्चरिंग का क्वालिटी इंट्रिंसिक है, मतलब वो आपसे कोई छीन नहीं सकता
0: जी,
1: है ना। और अगर एक एम्पावर्ड वुमेन होंगे तो आप अपने परिवार में ज़्यादा दे सकते हैं।
0: वाकई,
1: तो ये परिवार वालों के लिए भी मेरा मैसेज है कि देखिए, एक एम्पावर्ड वुमेन ही एम्पावर ज़्यादा कर सकती है आपके पूरे परिवार को। आप मतलब अगर मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को ये मैसेज दूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बहू जो आती है, जो एम्पावर्ड बहू होती है, वो आपके बेटे को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन को, सबको, सबके लिए ज़्यादा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है, डिसीशंस ले सकती है ऑन देयर बिहाफ। एंड एक माँ, एक वाइफ कभी किसी के खराब के लिए तो डिसीशंस लेगी नहीं, लेकिन अगर वो जानती है तो आपके लिए भी वो स्ट्रेंथ बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये यही सच्चाई है, यही मैंने अपने लाइफ में देखा है। एंड मैं बिलीव करती हूँ दैट इट इज़ टाइम कि वुमेन ये बात समझें, और जब उनको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो ये इसको एक लॉजिकली देखिए, कौन सी चीज़ में एडजस्ट करना है, क्या वो एडजस्टमेंट फैमिली के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है। अगर है एंड वो एडजस्टमेंट शायद मेन हो, वेमेन हो, सब लोग, हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली के लिए अच्छा होता है, लेकिन एडजस्टमेंट इन द नेम ऑफ यू नो डिपेंडेंसी इज नॉट एम्पावरमेंट एट ऑल। और एम्पावरमेंट जब वेमेन का नहीं होता तो परिवार का भी नहीं होता। और परिवार को अगर आगे बढ़ना है, सबको स्ट्रेंथ एक साथ होके अच्छा करना है, देन वुमेन का एम्पावर्ड होना, अवेयर होना, फाइनेंशियली लिटरेट भी होना एंड स्किल बिल्ड हो, कि एवरी वुमेन शुड हैव वन और टू स्किल्स जिससे वो कभी भी परिवार को ज़रूरत होता है, कुछ भी है, हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना पैसा खुद कमा रही है, खुद ग्रो कर रही है, खुद डिसीशंस ले पा रही है।
0: वाकई,
1: ठीक है, ये सबके भले के लिए है भावना जी।
0: भाई वाकई मैं ये मानती हूँ, क्योंकि ना कई बार आप ज़िंदगी में देखेंगे कि हम ना एक डिपेंडेंट ज़िंदगी जीते हैं, उसके पीछे कारण है, हमें सॉफ्टर जेंडर कहा जाता है, हमें वीकर जेंडर कहा जाता है, और ये कहकर हमें या तो चार दीवारियों में पैक कर दिया जाता है कि भाई बाहर निकल के क्या करोगे, ज़माना बहुत ख़राब है, वाई शुड यू गो आउट, हम कमा कर दे रहे हैं ना, डोंट वरी, तुम घर पर बैठी रहो। सो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इनफैक्ट जब शादी होती है ना, सो हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो ढेर सारा पैसा कमाता हो, इररिस्पेक्टिव कि वो उसकी इज्जत कर रहा है या नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि हम फिनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, व्हाई डोंट यू गिव योर चाइल्ड, योर डॉटर द फिनेंशियल लिटरेसी, सिक्योरिटी देखने की जरूरत ही नहीं, वो अपने लिए खुद कमाएगी एंड शी विल हैव अ सिक्योर्ड लाइफ एंड रादर शी विल हैव अ डिग्निफाइड हैप्पी लाइफ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ, फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी फेमिन एम्पावरमेंट। मुझे लगता है आज का एपिसोड एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी कहानी है, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है वर्तिका द्विवेदी जी की, क्या कहने। बट हमने इनके जिंदगी के बहुत सारे पन्ने पलटे हैं, हर पन्ने पर एक स्ट्रगल और हर पन्ने पर एक सीख, और इस सीख से ही आप जीवन में बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हार्डशिप्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन हार्डशिप्स आते ही इंसान बदल जाता है, या तो वो टूट जाता है या वो बन जाता है। सो आपको यही सीखना है कि आपने टूटना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई एक गोल होना चाहिए, जो शायद वर्तिका जी ने बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था। तहे दिल से धन्यवाद वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी हमारे सारे लिसनर्स को?
1: भावना जी, मैं ये बोलूँगी कि पर्पस, मकसद। लाइफ में अगर कोई मकसद हो तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारे रोल्स एज ए वुमेन मिलते हैं, नर्चरिंग रोल्स, पेरेंट्स ग्रो यू नो ओल्ड हो रहे, उनको देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड के लिए करना, परिवार वालों के लिए करना, ये सारी चीज़ें वुमेन में इनबिल्ट है। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा एक मकसद है जो आपको, कितना भी आप मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन आपको लगता है कि येस दिस इज़ समथिंग जो मुझे हैप्पीनेस देता है एंड मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, वो मकसद आपकी लाइफ में है क्या? वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मकसद आपको सारे कठिनाइयाँ जितने भी कुछ है उस सब कुछ से पार करा के ले जाएगा। वो मकसद आपको अपने से बड़ा होना चाहिए, समथिंग दैट रियली मैटर्स टू यू। लेकिन साथ साथ में डोंट फॉरगेट टू कीप बिल्डिंग स्किल, अप स्किल करना अपने आप को, सीखते रहना एंड आगे अच्छे से सबके साथ बढ़ते रहना।
0: बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, एंड डेफिनेटली वर्तिका जी की लाइफ अपने आप में एक पूरी इंस्पिरेशन की एनसाइक्लोपीडिया है। सो जहाँ पर लोग ऐसी चीज़ों से टूट जाते हैं, वहाँ पर न सिर्फ ये बन गई, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को वो सशक्त करती हुई आज एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: मुझे बहुत खुशी है भावना जी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और एक प्यारे से गाने के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले हफ्ते आपकी और मेरी होगी मुलाकात। टिल देन कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव प्रश्न।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उस मुद्दे पर बेहतर तरीके से तलाश सकें, नई सोच के साथ नई दिशाएं जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं और हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दे होते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हुए भी हम उन मुद्दों की उन बातों की अनदेखी कर जाते हैं या जाने अनजाने हमसे वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। दोस्तों, हर इंसान एक सपना लेकर के बड़ा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ाना, किसी को खेलना, तो किसी को दुनिया बदलने का सपना देखना। और वो दुनिया बदलने का जो सपना देखना है वो उसका स्वयं का अपना सपना होता है, या गाना गाने की हम बात करते हैं या पढ़ाने की या खेलने की बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है या बचपन से हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, अपनी युवावस्था में पहुँचते हैं, या हम एक सेटल जीवन की तरफ जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे आसपास खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम अपने सपनों को जमाने के सपनों की नज़र से देखने लगते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है सपनों और समाज के बीच की एक खामोश लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की इसी बात से, यानी सपने अपने या समाज के। बड़ी अपने आप में ज्वलंत समस्या है इस बात की कि जीवन हम जीते अपने लिए हैं, अपने हिसाब से जीने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज के बीच में रहना और इसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि समाज के जो देखने का नज़रिया है वो हावी हो जाता है हमारे अपने नज़रिए के ऊपर, यानी हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमसे बनवाना चाहती है, ना कि हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ होता है तो उसके पास अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अपनी सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, यानी सपने अपने या समाज के। और कमोबेश ये बात यदि हम अपने जीवन की सारी अवस्थाओं पर अप्लाई करें तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके मन में कोई ना कोई चाहत ना रहती हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, समाज में उसके आसपास का वातावरण बदलता है, तो ये जो सपने हैं, जो ये सोच है, वो परिवर्तित होने लगती है और एक प्रकार का दबाव भी कहीं ना कहीं ऊपर आने लगता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे, आपको भी याद होगा बचपन का वो समय कि जब सपनों में कोई डर नहीं था, यानी आप कुछ भी सोचते थे तो उसमें भय का कहीं भी कोई स्थान था ही नहीं। कोई बच्चा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, या कोई कहता था मैं डांसर बनूंगी, तो किसी को क्रिकेट भी पसंद था, किसी को पेंटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बात की पायलट बनूंगा, एक सोच किसी बच्चे के मन में आई कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उस समय उसको इस बात को कहते समय किसी प्रकार का भय नहीं था, उसको नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या होता है। तो वो एक बड़ी स्वतंत्र इच्छा होती थी, एक सपना होता था जिसको वो बड़े खुले मन से सबके सामने बोल देता था। लेकिन जैसे जैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ने लगता है तो एक सोच डेवलप होने लगती है समाज की, समाज के आसपास के लोगों की, कि इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, या इतनी पढ़ाई करके भी यही करोगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक समाज की सोच, समाज का एक दबाव बन जाता है कि यदि आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे। या फिर कंपैरिजन, तुलना होने लगती है आसपास के, कि फलाने के बच्चे को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उसने ये किया। तो इस प्रकार का जब वातावरण हमारे आसपास बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। यानी जो इच्छा उनके बचपन में मन में जागृत हुई, उन्होंने एक सपना देखा बिना किसी भय के, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बीता, एक उम्र हुई, युवावस्था आई, तो प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ले जाता है हमें अपने सपनों से दूर। और एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटने पर या उनको मार देने पर या दबा कर उनको समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम आज के समय की एक प्रैक्टिकल बात देखें तो एक बात जो बड़ी तय है कि ख्वाहिशों को अक्सर समझौते पहनाने पड़ते हैं, घर की उम्मीदों में खुद को छुपाना पड़ता है। हर कोई जी तो रहा है यहाँ, पर हर किसी को अपना सपना नहीं मिलता। एक बड़ी ही विषम परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में जब हम इस बात को कहने पर, एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यानी आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं समाज के, जो आसपास के वातावरण का जो दबाव है, वो मजबूर कर देता है आपको अपने सपनों से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सपने अपने या समाज के, इस मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे समाज के सभी बच्चों से, बड़ों से और बुजुर्गों से। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो थॉट हमारे दिमाग में हमारे जीवन, अपने करियर या अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ साथ। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो बदलाव का दौर शुरू होता है, वो होता है जब हम अपने करियर और कंपैरिजन की प्रेशर में आने लगते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, करियर सिर्फ एक करियर नहीं रह गया। जिस प्रकार से हम अपने प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, वो अपने आप में बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। यानी आप क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जॉब पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक आजीविका या पैसा कमाने का साधन नहीं रह गया, बल्कि उसका समाज में एक स्थान हो गया है स्टेटस सिंबल का। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं होता, लेकिन वो चुनते इसलिए हैं क्योंकि समाज में उस क्षेत्र को चुनना या उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में जाना एक सफलता का सूचक माना जाता है। यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को सफलता के मानकों से तोलती है, उससे तुलना करती है और उसको एक्सेप्ट करती है, वो युवा मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, चाहे उनका मन किसी और काम को करने में क्यों ना हो। इंजीनियरिंग हो गया, चाहे मेडिकल, सरकारी नौकरी, इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है

क्या वो जो सपना है इंजीनियर बनने का या मेडिकल का या सरकारी नौकरी का, क्या वो सपना आपका अपना है? क्योंकि अगर मंजिल अपनी नहीं होगी तो सफलता भी कहीं ना कहीं आपको अधूरी ही लगेगी। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार रखिए और हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो जुड़ा होता है हमारे सबके अपने सपनों से, यानी सपने आपके या समाज के। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था की हम बात करें, तो जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ जाता है और हम अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने ही जीवन के सोचे हुए सपनों से दूर जाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समाज के अंदर हमने जो तुलना का और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का जो एक वातावरण पैदा कर दिया है, वो हमारे दिमाग पर एक तरह का दबाव बना लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका हमारा चाहे मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें कॉलेज के, आप छात्रों को कई बार आप जाकर के आपने बात करते हुए सुना होगा कि उन्हें म्यूजिक पसंद था लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चे पढ़ते तो जरूर हैं वो, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। और जबकि उनके पेरेंट्स की इच्छा यही रहती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनको जीवन में खुशी प्रदान करे, आने वाले समय में उनका जब करियर बने तो वो खुशी दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसी खुशी की, उसी हैप्पीनेस की बलि इनडायरेक्टली वो उस पढ़ाई को करते हुए दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस नहीं थी। वो केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर वालों ने कहा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है या क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बहुत सारे युवा आज के हमारे जो जैन जी की हम बात करते हैं, वो इसी उलझन में रहते हैं कि आखिरकार हमारी चॉइस को हम एक्सेप्ट, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम कैसे अमली जामा पहनाएं बिना किसी सामाजिक दबाव के। यानी कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक विरोधाभास पैदा करना पड़ता है, ताकि वो यदि अपनी सोच को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, या वो अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनना चाहते हैं, या अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो उनको खुशी दे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विरोध का सामना करना पड़ता है और उस विरोध को झेलने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बिना मन के जीवन जीना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, साथ ही साथ हम पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है कि जब कभी भी हम इस तरह की बात बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, या आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप हमारी इच्छा के हिसाब से आप ये करो, तो एक थॉट उसमें कहीं, एक जो अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से जब इस तरह के थॉट आते हैं, तो वो एक थॉट एक दूसरे थॉट के साथ आता है। जब वो अपनी इस बात को कहते हैं बच्चों से, तो उनके मन में एक थॉट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है कि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन एक बेहतर जीवन बने, सफल जीवन बने, और हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य ही चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसमें और बच्चों के थॉट्स पे कंट्रोलिंग करने के बीच में बहुत ही महीन सी एक रेखा होती है। कभी कभी हम जाने अनजाने उस बेहतरी को तलाशते हुए कहीं ना कहीं उस रेखा को पार कर जाते हैं, और एक तरह का जो पेरेंट्स जो वातावरण पैदा कर देते हैं परिवार में, वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति में आ जाते हैं। यानी एक बड़ी समझने वाली बात है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के, फ्यूचर की सुरक्षा को लेकर के कुछ सलाह देते हैं या उसको समझाते हैं कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स का अनुभव उनको बता रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कब हम उस रेखा को पार कर जाते हैं और हम एक कंट्रोलिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो हमें खुद को नहीं पता चलता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप बच्चों को, जो पेरेंट्स अगर कोई सलाह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना समय आप उनको अपनी बात बोलते हैं, उतना ही समय उनको भी दीजिए उनको अपनी बात आपसे कहने का। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता और आपसी जो अपनी समझ वाला जो सुलह और समझ वाला जो रास्ता है, वो हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि बच्चे यदि अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, पेंटिंग, कुछ भी है, आप यकीन मानिए यदि वो खुश मन से उस काम को करते हैं, तो वो उस काम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जिसको वो बिना मन के कर रहे हैं। यानी हमें समझना पड़ेगा कि जिस काम को करने में बच्चों को खुशी मिलती है, उसमें वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ना कि उन चीज़ों को करने में जिनको में
उनको करने में खुशी नहीं मिलती। तो ये बात आज के पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लेकर के आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सपने अपने या समाज के, यानी बहुत सिंपल सा शीर्षक है। यदि हम इस टाइटल को सीधे से समझें तो कितना हकदार है समाज हमारे सपनों को डिसाइड करने का, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की कि जैसे जैसे समय बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का जो दबाव है वो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। जब हम देखने लगते हैं कि इस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है, और हमारी खुशी से ज़्यादा इस प्रोफेशन की या इस जो भी करियर की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता के कितना स्कोप है, यानी खुशी हमें मिलती है ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है या ये बहुत ज़्यादा सफलता वाला एक मानक नहीं है, तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं उन्हीं सपनों से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अपने जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने ना रह करके बल्कि हम केंद्रित हो जाते हैं समाज के दिखाए हुए या समाज के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं बताए हुए प्रैक्टिकल सपनों की ओर। तो दोस्तों, समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की अगर हम बात करते हैं, यदि हर व्यक्ति केवल वही करने लगे कि जो और लोगों को सही लगेगा, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ही नहीं होता। ये एक बड़ा कटु सत्य है हमारे समाज का। जितने भी लोगों ने अपने अपने इन क्षेत्रों में, चाहे वो लेखन की या कलाकारी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी केवल और केवल समाज की मान करके उस क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं किए, जबकि उनकी अंदर से एक आत्म इच्छा थी, उनका एक सपना था, तभी वो इन क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर पाए। ये हर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी आप किसी की भी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, नई सोच केवल जब आती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। यानी जब तक आप डिफरेंट सोचोगे नहीं तब तक आप डिफरेंट करोगे नहीं, और जो डिफरेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वही समाज में आपको एक उच्चतम स्तर पर लेकर के जाती हैं, आपकी एक पहचान अलग से बनाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपने बहुत सारे

वो किसी भी सूरत में छोड़ देना अपने आप में कोई हल नहीं है। हमें बहुत बेहतर प्रयास करके अपने आप को सिद्ध भी करना चाहिए। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं होता, यदि हमें समाज की सोच के अगेंस्ट जा करके अपने आप को प्रूव करना है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सपनों पर अपनी मेहनत भी उतनी करें ताकि हम ये उदाहरण एग्जाम्पल सेट कर पाएं कि हमारी जो सोच थी वो सही दिशा में थी और इस सोच के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाला परिवर्तन भी छिपा हुआ था। तो दोस्तों ये चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं सपने अपने या समाज के, यानी हमारे सपनों पर अधिकार हमारा ज्यादा है या समाज का, या किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जो सपनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार से समाज का जो दबाव है वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। आखिर इस सारी समस्या का जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसका आखिर समाधान है क्या, यानी कोई अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, किसी समाधान की दिशा की हम बात करें, तो आखिर वो हल है क्या? क्या समाज का ऐसा सोचना गलत है? नहीं दोस्तों, समाज का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन यानी संवाद। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि बच्चों के अपने थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है, उसको अमलीजामा पहनाने की उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं पेरेंट्स की सलाह, उनका अनुभव और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत

0: ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सक्सेस होने में। तो यहाँ पर यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है और आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलता है जिसमें आपके सपने भी अपने ही रहते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता भी समाज के हिसाब से ही पाते हैं, यानी आप समाज को अपने आप को एक सफल स्थिति में दिखाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो उस संवाद की आखिर है क्या बात, बच्चों को समझना, उनकी इंटरेस्ट को सुनना, यानी बच्चे जिस बात में रुचि से इंटरेस्ट से बात करना चाहते हैं उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट भी करना कि समाज के द्वारा बताए गए जो सफलता के मानक है, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट हैं, चाहे किसी का इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना या किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रोफेशन की हम बात करें, तो जो समाज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात भी पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से हम इस माहौल को देख रहे हैं कि अब तो कोई क्षेत्र अछूता रहा ही नहीं। आज आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखिए, गाना गाने वाले बच्चों ने कमाल किया हुआ है कि अपने अपने फील्ड में अलग से एक्सपर्टीज ले रखी है, कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के आइडिया के हिसाब से, चाहे वो पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट्स का या कुछ भी, उसमें कहीं भी किसी समाज की सोच आड़े नहीं आती। यानी जिस प्रकार से समाज में एक चर्चा रहती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अब जमाना बदल चुका है और इस आधुनिक जमाने में, इस जो मॉडर्नाइज युग, डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक स्पेस तैयार हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अपने कोई सपने चलते हैं, अपने कोई विचार चलते हैं और उन विचारों को एक मूर्त रूप वो दे सकते हैं और उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए लोग कर पाते हैं। वो समय और था जब हमारी पहुंच एक लिमिटेड क्षेत्र तक थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज हैं, हमारी जो थॉट है, उसकी एक्सेप्टेंस उस क्षेत्र में नहीं होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हम गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट के माध्यम से जब हमारी सोच, हमारे आइडियाज बहुत दूर दूर तक, दूर देशों तक पहुंच जाते हैं, तब हम लाइक माइंडेड लोगों को आकर्षित करते हैं अपने उस थॉट्स के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों के साथ साथ सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि अगर हम इसको दो लाइनों में समेटें इस बात को, तो हर सुरक्षित रास्ता खुशी तक नहीं जाता और साथ ही साथ हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। तो इस मुद्दे पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स का, समाज के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का या जो गाइड करते हैं लोग, उनका अनुभव और साथ में हमारे सपने, उनके बीच में यदि संवाद से कोई एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन से कोई रास्ता बीच का निकल पाता है, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके सपने भी आपके अपने ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और अब हम लेकर के चलते हैं कार्यक्रम को समापन की ओर। आपने आज इस सपने अपने या समाज के जो हमने मुद्दा आज नई सोच नई दिशाएं में आपके सामने रखा, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स पे चर्चा की। और कंक्लूडिंग अगर हम एक इसका नटशेल में कोई बात निकालें तो वो ये कि जो समाज का जो हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है, जो हमारे उनकी गाइडेंस है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर सपने हैं, जो उनके थॉट्स हैं, यदि हम उनको केवल इस कसौटी पर तय करेंगे कि सफलता का क्या कारण होना चाहिए, एक सफलता मिलती कैसे है, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है केवल वही सफलता है, तो आप यकीन मानिए हमारे समाज के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि अच्छे लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कुछ भी, जो एक नए तरह का जो परिवर्तन समाज में आता है वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि हम केवल पुराने विषयों पर ही चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड सेट मान लेंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है जब हम इस तरह की चर्चाओं को आपस में करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कहा था कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके थॉट्स पर नियंत्रण करना, इसके बीच एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए कहीं उनके सपनों पर या उनके ऊपर नियंत्रण ही ना करने लगें। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सपने देखना है, समाज के किसी भी प्रकार के दबाव को ना महसूस करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो वो सपने हैं, केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो इसका भावार्थ ये रहता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज का सपना देखते हो तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास भी उतने ही सीरियस होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मोड़ पर यदि हम बात करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, वो कोशिशें भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। तो आपको समझना चाहिए कि जो थॉट भी आपके दिमाग में आते हैं, यदि आप उनको कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो चूंकि वो सपने आपके हैं और उनको अमली जामा पहनाना, उनको सफलता की ओर लेके जाना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है, तो आपको पूरे प्रयास भी उस दिशा में करने की आवश्यकता होती है, ना केवल एक चीज के बारे में सोच लेना पर्याप्त होता है। तो यानी यदि आप बदलाव चाहते हैं अपने थॉट्स के साथ, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और सपने अपने या समाज के इस मुद्दे पर जिस प्रकार की चर्चाएं हमने की, उससे निश्चित रूप से आपको जरूर कोई ना कोई नई सोच के साथ एक नई दिशा मिली होगी और आपको लेकर के जाएगी वो एक बेहतर भविष्य की ओर। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। नमस्कार।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितनी अच्छी मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई,

0: हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का यह अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालू, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, यह मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रांग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था, हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थे। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था। निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था, जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे. जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की. जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी. तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी. इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है. लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है. कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है. 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए. तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए. इतना ज्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है. धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है. जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है. सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है. और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है. इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए. कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए. इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का. तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी. अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ. सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ. तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमलप्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूँ, कमलप्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमलप्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्री घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिससे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाए। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा, इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्त के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में चार एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए, वो कोई संत नकल होगा। संत की नकल ढांचों में बैठ जाती, तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे। यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पथ, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी भर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाएगा। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है। ये उपाधि नहीं है, उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी।
भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गया। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में, कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वही भगवान है, सब और भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या, यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा हूं, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई, मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालूं। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास गुरु ने कहा कि हम तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखेगा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच है।

इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा, यह अंगरखा क्यों फेंक रहे? उन्होंने कहा, सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है, ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे, अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतत्म का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए। पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोक ठोक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना, संस्कार कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो,
कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो, न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं। संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसने जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है, अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का, कि ईसाई का, कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी
वहां कुछ प्राण कहां है, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे, सब होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन
किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इंकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में कर ले तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसरुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफा चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया कोने में, कभी ये निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो।
चार स्त्रियों के साथ विवाह करना भी।

0: साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते। क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, न तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूं और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूं क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूं। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है। और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहां तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूं। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है, लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है
1: कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारों, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती, लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हां भी और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है, इसलिए हाँ, और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती, मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग ना खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग ना खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसरुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसरुद्दीन? उसने कहा मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे हैं।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने।

0: करने के लिए हमने ये कथा रागले कदासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागले कदासी जी से। जी रागले कदासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें श्राप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 हैं और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र हैं, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है। उनकी उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है। हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था, उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय कद्रु को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुँह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं, प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं। और इस श्राप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए, और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। मिला पत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। सभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्ववाद जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीन कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरत्कारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है, कि केवल वायु की कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे, आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती, तपस्या का फल तो हमारे पास भी है किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है, वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है, तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं, यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है, हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़े हैं, ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है, आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारु से कहिएगा, और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरूरतकारों ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों को अपराधी पुत्र जरूरतकारू हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरूरतकारों ने कहा मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा। जरूरतकारू अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरूरतकारू सोचने लगे मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरूरतकारों की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरूरतकारों ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरूरतकारू ऋषि अपनी पत्नी जरूरतकारू के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है जरूरतकारू ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरूरतकारू जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा सर्पिनी तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। जरूरतकार ऋषि ने कहा एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता, मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, सब सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
0: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी कहानी आप पूरी कीजिए।
1: जी तो ऋषि पत्नी जो थी उसकी पत्नी जो थी जरूरतकारू की जो पत्नी थी उसका नाम भी जरूरतकारू था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा, आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरूरतकारू ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरूरतकारू ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ, उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमशा बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूँगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जनमेजय इनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी बस्तियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी, आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख, शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, पितृकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
0: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी, हमें बताइए कि